फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की चौथी तिथि। तदनुसार 26 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होरमूज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ

0: अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107.7 MHz पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
2: और निराशा दो विपरीत मनोदशाएं हैं जो जन सामान्य तो क्या साधु संतों को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहती। हम जो आशा करते हैं, आकांक्षा पाल कर रखते हैं, उसकी पूर्ति नहीं होने से हमें निराशा होती है। जिस मात्रा में आशा, आकांक्षा या अपेक्षा रहेगी, उससे वंचित हो जाने पर हमें उतनी ही अधिक हताशा, निराशा और कभी कभी ग्लानी की पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है। व्यक्ति की मनोदशा कभी कभी इस सीमा तक बिगड़ जाती है कि वह मानसिक संतुलन खो बैठता है, विक्षिप्तावस्था को प्राप्त कर जाता है और कभी कभी आत्महत्या जैसे पाप भी कर बैठता है। सबसे प्रिय वस्तु या प्रिय परिजन का विछोह भी हमें दुखित करता ही है। दुख यदि सहन की सीमा से अधिक हो जाए तो भी कोई अप्रिय घटना हो जाती है। को टालने या उससे अपने को बचाए रखने का मार्ग ढूंढना आज के तनावग्रस्त जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि हमें किसी व्यक्ति विशेष, चाहे वह हमारा अपना ही क्यों ना हो, के प्रति बहुत अधिक लगाव ना हो, जरूरत से अधिक सानिध्य न रखा जाए और मोह की सीमा तक हम उसके प्रेम पाश में ना रहें, तो शायद उसका विछोह हमें उतना अधिक सालने वाला सिद्ध नहीं होगा कि हम अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठें। जहां तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है, उसकी प्रगाढ़ता को कम नहीं किया जा सकता, परंतु यदि आसक्ति की सीमा तक हम ना बढ़ें तो भी किसी संबंधी के निधन पर दुख की सीमा कम हो सकती है। या फिर यह मानकर चलें कि एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना है, कोई पहले कोई बाद में। जीवन यात्रा में अनेक साथी मिलते हैं, नियत समय स्टेशन आ जाता है और वे उतर जाते हैं, नए सहयात्री मिलते हैं और गाड़ी आगे बढ़ती ही जाती है। जीवन को सहज रूप में लेने वालों के लिए सुख और दुख समान रूप से आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति दुख के अवसर पर अधिक दुखी नहीं होता और सुख का अतिरेक भी जिसे प्रभावित नहीं कर पाता,

0: वही अपने को संभाल भी सकता है। ऐसे व्यक्ति वे ही होते हैं जो लगभग निर्मोही कहलाते हैं या जो निष्प्रिय जीवन व्यतीत करते हैं। आसक्ति की सीमा तक किसी चीज या व्यक्ति में लगाव नहीं होना चाहिए। भारतीय जीवन दर्शन का भी यही आदर्श है कि सम विचार रखा जाए। आज परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकने वाले छात्र, प्रेम में असफल प्रेमी, व्यापार में घाटा उठाने वाले व्यापारी या सट्टे जुओ में हार जाने वाले जुआड़ी या तो आत्महत्या कर लेते हैं या किसी प्रतिद्वंदी की हत्या कर डालते हैं। यह स्थिति इसलिए आती है क्योंकि आशाएं, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं। नहीं होने से मन को बड़ा झटका लगता है जिसे सामान्यतः बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपेक्षाएं सीमित हों तो शायद निराशा कम होगी। महत्वाकांक्षाएं मनुष्य की तरक्की की प्रथम सीढ़ी हो सकती हैं, परंतु मात्र आकांक्षाएं ही फलवित नहीं हो सकती, उसके अनुरूप कर्म भी जरूरी है। यदि गीता का यह मूल मंत्र पकड़ लिया जाए कि कर्म किए जाओ, फल की आशा भगवान पर छोड़ दो, तो भी मनुष्य निराशा रूपी विकृत मनोदशा से बच सकता है। कर्म हमारे हाथ में है, फल की प्राप्ति स्वतः होगी। किन्हीं कारणों से फल की प्राप्ति नहीं हुई तो भी हमें कर्म करते रहना है, निराश हुए बिना। कभी न कभी तो सफलता हमारे पैर चूमेगी। इस धारणा का व्यक्ति कभी बहुत अधिक दुखी या निराश नहीं होगा। आस्था और विश्वास भी सतर्कतापूर्वक होना चाहिए। अंधश्रद्धा या भक्ति कभी भी उचित नहीं मानी गई। निराशा और गहन दुख से बचने के लिए आँख कान खुली रखकर हम अपने आसपास के लोगों से व्यवहार करें, आज के समय की यही मांग है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये कार्यक्रम संपन्न होता है FM बैंड पर। यह आकाशवाणी का रैगर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे पंडित जसराज द्वारा गाए भजनों को।

0: सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत के महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नोवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नोवेलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नोवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नोवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli jail mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad jail mein hua. Vande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नमक जो नोवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज आपने सुना पंडित जसराज को, और इसके साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कृषि चर्चा, जिसमें आज चर्चा का विषय है जैव उर्वरक के लाभ।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जुहार। कृषि के लागत ला घटाए बर, भुइयां के उत्पादकता ला बढ़ाए बर और बढ़त प्रदूषण ला देखत हुए संगी हो विषय विशेषज्ञ मन नाना प्रकार के तकनीक ला अपनाए बर कहत हैं। ऐसने में संगी हो बायो फर्टिलाइजर, जो ला जैव उर्वरक भी कहा जाते, यह आज के समय में बहुत ही उपयोगी लाभदायक होते, जो हर माटी में मिलके बीजा के संग में मिलके माटी के उपजाऊ ताकत ला प्राकृतिक रूप ले बढ़ाए के काम करते। हमन रासायनिक खाद डालथन यूरिया DAP, एकर जगह मा ये जो राइजोबियम होते, एजेक्टोबैक्टर होते, एजो स्पेरिलियम होते, PSB कल्चर होते, यानी जैव उर्वरक जोन होते और प्राकृतिक रूप ले पौधा ला पोषण प्रदान करते नाइट्रोजन फास्फोरस। तो ऐसने में संगी हो देखा जाए तो हमार वायुमंडल मा बहुत सारा सूक्ष्म जीव हावे और नाइट्रोजन के भी उपलब्धता हावे। हमार वायुमंडल मा 78% नाइट्रोजन हावे। तो संगी हो ये ला पौधा ग्रहण नहीं कर पाए, ये ला कैसे पौधा जड़ के माध्यम से प्राप्त करी, एकर बर जैव उर्वरक के उपयोग किए जाते। जैव उर्वरक पौधा ला नाइट्रोजन के आपूर्ति बर सहायक होते। जीवाणु खाद कई प्रकार के होते, जो ला जैव उर्वरक भी कहा जाते। राइजोबियम, जो ला की चना, अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, दलहनी फसल बर लाभकारी होते। ये मन का करते जीवाणु, ये जीवाणु का करते दलहनी फसल के जड़ में गांठ बना के हवा के नाइट्रोजन ला सोखते और पौधा ला देते। एजेक्टोबैक्टर और एजो स्पाइरिलियम एयर भी होते संगी हो, जो ला की धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, सरसों और भाजी सब्जी मा उपयोग किए जाते। ये बिना गांठ वाला फसल हावे, ये हर का होते माटी मा रह के नाइट्रोजन के आपूर्ति ला करते। एक होते संगवारी हो PSB जैव उर्वरक, ये हर सबो फसल बर उपयोगी होते। माटी मा जम चुके जोन अघुलनशील तत्व हावे, फास्फोरस ला भी घोल देते और ओला सोखे के लायक बनाते, एकर से पौधा ला भी उपलब्धता हो जाते फास्फोरस तत्व के। ऐसने संगी हो नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाते एजोला, ये विशेष रूप से धान के फसल बर लाभकारी होते। खेत मा कम पानी भर के इला उपयोग किए जाते, यह नाइट्रोजन के स्तर ला बढ़ाते, यानी नमी रहना चाहिए खेत में, एकर भुरकाव करिए तो यह धीरे धीरे फैल जाते और भुइया में उत्पादकता ला, ओकर गुणवत्ता ला, माटी के स्वास्थ्य ला भी सुधारे के काम करते। संगी हो जो जैव उर्वरक होते यार कतका लाभकारी होते, बहुत ही ज्यादा लाभकारी होते संगी हो। अगर बात करते हैं जैव उर्वरक के तो लागत में कमी करते। रासायनिक खातु यूरिया DAP के खपत हर बढ़ा थे, ऐसने में ओकर लागत ला, ओकर उपयोग ला कमती करे मा यहर सहायक होते। एकर से किसान के पैसा भी बांच सका थे, माटी के सेहत मा भी सुधार होते। कैसे सुधारते, माटी मा नमी हर लंबा समय तक बने रही थे और नमी बने रहे कारण से फसल के उर्वरता भी बढ़ते और देखा जाए तो पैदावार मा भी 10-15% तक बढ़ोतरी होते, ऐसे विशेषज्ञ मन कहते। और हमन जानत हन कि आज के दौर मा आता धुर्रा रासायनिक खातु के उपयोग हुआ थे, एकले पर्यावरण भी प्रदूषित हुआ थे। ऐसने में जैव उर्वरक जोन होते संगी हो यार पर्यावरण पर लाभकारी होते, एकर कछु नुकसान हमर फसल ला या हमर भुइया ला नहीं पड़े। तो आप मन ए जो स्पेरिलियम है, एजेक्टोबैक्टर है, राइजोबियम जीवाणु है या PSB है, ये मन के उपयोग अलग अलग तौर तरीका से कर सकते हो। एला बीज उपचार मा, सीड ट्रीटमेंट मा कर सकते हो। बीज अमृत या गुड़ के घोल मा जैव उर्वरक ला मिला के भी बीज ला मिला के ओला छाव मा सूखा के बुआई कर सका था। अगर जड़ ला उपचार करना चाहता, रूट डीप करना चाहता, तो रोपा वाला जो फसल है जैसे धान है, मिर्चा है, पताल है, ओकर जड़ ला 20-30 मिनट तक बोर के ओला भी आप मन लगाइया सुखाए के बाद हल्का, तो संगवारी हो एकर से भी फसल ला सुरक्षा और लाभ मिलते। माटी में भी डालिया तो यार भी लाभकारी होते। कभू कभू आप मन किसान संगी मन करते हैं वर्मी कम्पोस्ट केचुआ खाद के संग में भी मिला के ओला छिड़काव करते हैं तो वो हर भी लाभकारी हावे। तो संगी हो हमन कहना चाहबो कि आप मन जो है जैव उर्वरक के उपयोग कर जेकर ले भुइया में सूक्ष्म जीव या जीवित जीवाणु फफूंद और शैवाल मन के वृद्धि हुई जो हर माटी के सेहत और स्वास्थ्य पर वरदान साबित हुई।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, जिसमें चर्चा का विषय था जैव उर्वरक के लाभ। इसी के साथ कृषि चर्चा समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।

कुछ ही पलों के पश्चात 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान की 146वीं कड़ी। देश गान आप सुनेंगे 6:50 पर, संस्कृत समाचार 6:55 पर, 7 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रेश बॉलीवुड कार्यक्रम का वक्त होगा 7:05 पर। 7:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झरूखा, जिसमें चर्चा का विषय होगा परिवार नियोजन का निर्णय, सुरक्षित और खुशहाल जीवन का आधार विश्व गर्भ निरोधक दिवस। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे बांदर आप सुनेंगे 7:45 पर। 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह आप सुनेंगे 8:30 पर। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे और पुनः 12 बजे। इसके पश्चात आप पुनः विविध भारती कार्यक्रम सुनेंगे 1:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:10 पर। फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे 10:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप पुनः सुन पाएंगे 11:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। 1:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। 1:20 पर आप पुनः सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गुट। प्रायोजक होंगे CFN विभाग सरगुजा। पॉप टाइम आप सुनेंगे 5:10 पर। वनिता विहार कार्यक्रम का वक्त होगा 5:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे 7:30 पर। डेली हाइलाइट्स कैप्सूल्स एशियन गेम्स 2026 आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सूर्यामिनी कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम विवरण आप पुनः 7:55 पर सुन सकेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 146वीं कड़ी। गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातःकाल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुई और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथे पन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवठरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान की 146वीं कड़ी। गायक कलाकार थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह। इसी के साथ रामचरितमानस गान संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। 6:50 हुए, लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। गीतकार थे वीरेंद्र मिश्र। और इसी के साथ देशगान अब समाप्त होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत और 7 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। मेक इन इंडिया अभियानस्य द्वादश वर्षे सम्पूर्णे सति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अस्याः योजनायाः अभूतपूर्वाः उपलब्धयः सम्प्रख्यापिताः। सामाजिकान्तर्जालीयपटले एकं सन्देशं यच्छन् प्रधानमन्त्रिणा एतत् प्रोक्तं यत् अभियानेनानेन भारते स्वदेशी निर्माणं, वैदेशिक निवेशः, निर्यातः च भूरिशः सम्प्रवर्धितः। तेन प्रोदीरितं यत् एषः परिवर्तनप्रवाहः सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु प्रत्यक्षीक्रियते। आधारभूतसंरचना नवोन्मेषयोः बलेन भारतस्य निरन्तर समृद्धिः एव मेक इन इंडिया इत्यभियानस्य मुख्यमुद्देश्यमस्ति। आकाशवाण्याः लोकप्रिये मन की बात इति मासिक प्रसंगे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः राष्ट्रस्य जनैः सह आत्मीयं विचार विनिमयं विधास्यति। अष्टत्रिंशदुत्तर शततम प्रसंगस्य कार्यक्रमस्यास्य समग्र देशे दूरदर्शन आकाशवाणी जालपुटेन सह डिजिटल माध्यमेषु साक्षात् प्रसारणाय सर्वप्रबन्धः समनुष्ठितः। हिन्दीवाचनानुपदमेव समस्त प्रादेशिक भाषाष्वपि अस्य रूपान्तरणम् आकाशवाणी केन्द्रैः प्रसारयिष्यते। उत्तरप्रदेश प्रशासनम् आयुष्मान योजना नियमानाम् उल्लङ्घनं कुर्वताम् चिकित्सालयानाम् उद्दिश्य कठोरं कार्याचरणं विधास्यति। एतदर्थं राज्य स्वास्थ्य एजेंसी इति संस्था चतुः सदस्यीयं निरीक्षण दलम् अरचयत्। अवधेयं यत् इदं दलं पञ्जीकृत चिकित्सालयानां परीक्षणं प्रारभत। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सम्प्राह यत् संयुक्त राष्ट्र संस्थायाः परिष्काराय पाठाधारित वार्ता अतीवावश्यकी वर्तते। न्यूयॉर्क इत्यत्र संयुक्त राष्ट्र महासभायां भाषमाणः विदेशमन्त्री अवोचत् यत् पाठम् अन्तरेण क्रियमाणा वार्ता केवलं समय यापनमेव अस्ति। परिष्कार विरोधिनः अस्याः संस्थायाः दुरुपयोगं कुर्वन्ति इत्यपि असौ स्पष्टम् उक्तवान्। जलसुरक्षा सर्वैः नागरिकैः प्रशासनेन उद्योगैः च सहभागितां विधाय एव साध्यते इति जलशक्ति मन्त्रिणा सी आर पाटिलेन सबलं प्रोक्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां नवम भारत अन्ताराष्ट्रिय जल सप्ताहस्य समापन सत्रे सम्भाषमाणेन मन्त्रिणा एतत् ख्यापितं यत् जल संरक्षणाय जनसहभागिता अतीवावश्यकी वर्तते। मन्त्रिणा सविशेषं प्रोदीरितं यत् वैश्विक सहयोगेन एव जल सम्बद्ध समस्यानां परिहारः सम्भविष्यति। जल संरक्षणं न हि केवलं एकस्य कर्तव्यम्, प्रत्युत प्रत्येकस्य उत्तरदायित्वम् इत्यपि असौ सबलं न्यगादीत्। उत्तरप्रदेशे प्रादुर्भूतया अतिवृष्ट्या जनजीवनं संजातम् अस्तव्यस्तम्। आसन्नां भीषणवृष्टिं विलोक्य प्रशासनपक्षतः बहुषु जनपदेषु पाठशालाः पिहिताः सन्ति। चक्रवातप्रभावेन राजधान्यां लखनऊ नगर्याम् अविरतं जलवृष्टिः प्रचलति। अत्रावधेयं यत् रविवासरं यावत् पूर्व्योत्तरप्रदेशे अतिभीषणा वृष्टिः, विद्युत्पातः, तीव्रसमीरश्च सम्भविष्यतीति सञ्चेतनाम् अयच्छत् ऋतुविज्ञानविभागः। नागोया एशियाई क्रीडासु भारतस्य पदकानां संख्या 23 सम्प्राप्ता। लक्ष्यभेदस्पर्धायां कमलजीत सुरुचि युग्मेन स्वर्णं, गुलवीर सिंहेन च रजतपदकं प्रासाधि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रभृतयः सर्वेभ्यः विजेतृ क्रीडकेभ्यः वर्धापन सन्देशम् अयच्छन्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया टालने के समान होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर रैप्चर्स एंड रैम्पर्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर मंत्री स्तरीय सत्र में ये बात कही। विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बरबुंडा की ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में श्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने नेपाल चीन सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर अभियान के आरंभ होने का स्वागत किया है। इस अभियान की घोषणा 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के नाविकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह अभियान समुद्री सहयोग को मजबूत करता है और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की साझा प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज वर्षा से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज वर्षा हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। राहत आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी श्रृंखला में हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरोद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए फ्रेश बॉलीवुड कार्यक्रम। नए सुरों की नई रवानी, नए गीतों की नई कहानी, बॉलीवुड के ताजा रंगों से सजी है आज ये संगीत सुहानी कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म पुष्पा द राइज का ये गीत जिसे गाया है जावेद अली ने।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: श्रोताओं, धुन नई है अंदाज नया है, पर बात दिल की ही है। लीजिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म धड़क 2 से, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल ने।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ, जरूर। आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
4: फिल्मी संगीत की तस्वीर में एक नया रंग जोड़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत। पेश है अगली धुन फिल्म अतरंगी अतरंगी रे से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और साशा तिरुपति ने। सुनिए फिल्म अतरंगी रे का ये गीत।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान व्यापार

0: गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड और नई फिल्म गीतों के सफर में आपको ले चलते हैं और आपको सुनाते हैं फिल्म आंखों की गुस्ताखियां, कई गीत जिसे गाया है विशाल मिश्रा ने।

अभी आप सुन रहे थे कथालिका निरमिल्लई के गीत को आपने अभी सुना, जिसे गाया था आदित्य आर के और अलेक्जेंड्रा जॉय ने।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड का नए फिल्मी गीतों का सफर अब थमता है और इसके साथ समाप्त होता है कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड, इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम झरोखा।

नमस्कार, सुप्रभात मित्रों, झरोखा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी रेडियो मित्र दिनेश्वरी। श्रोताओ, छोटा परिवार, खुशियों की बहार, सुखी हो जीवन, संवरता संसार, माँ स्वस्थ रहे, बच्चा मुस्काए, हर आंगन खुशियों से जगमगाए। मित्रों, परिवार सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं बल्कि सपनों, जिम्मेदारियों और उम्मीदों से जुड़ी एक खूबसूरत दुनिया है और इस दुनिया को स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखने में परिवार नियोजन की बड़ी भूमिका है। मित्रों, परिवार नियोजन का मतलब केवल यह तय करना नहीं कि परिवार में कितने बच्चे हों, इसका अर्थ है बच्चों के जन्म के बीच उचित अंतर रखना, गर्भधारण की योजना अपनी परिस्थितियों और स्वास्थ्य के अनुसार बनाना तथा परिवार के बेहतर भविष्य के लिए सोच समझ कर निर्णय लेना। गर्भ निरोध के आज कई सुरक्षित और प्रभावी विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपर टी, नसबंदी सहित आधुनिक विधियां अपनाई जा सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और जरूरत अलग होती है, इसलिए गर्भ निरोधक विधि चुनने से पहले डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी से उचित सलाह लेना जरूरी है। लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करने के लिए ही हर वर्ष 26 सितंबर को पूरे विश्व में विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है, यानी आज के दिन 26 सितंबर को मनाया जाता है ये दिवस। और इस वर्ष इस दिवस की थीम है अ चॉइस फॉर ऑल, फ्रीडम टू प्लान, पावर टू चूज, सभी के लिए एक विकल्प, योजना बनाने की स्वतंत्रता, चुनने की शक्ति। मित्रों, पहली बार यह दिवस वर्ष 2007 में मनाया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भ निरोधक साधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। छोटा परिवार, जहां सभी बच्चों की बराबर देखभाल, उन्हें प्यार और पोषण, सभी की पूर्ति संभव है, वहीं बड़े परिवार में ये सब बच्चों को नहीं मिल पाता। परिवार नियोजन में महिला एवं पुरुष दोनों की भागीदारी जरूरी है, साथ ही गर्भधारण के बीच उचित अंतर माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए परिवार नियोजन को किसी झिझक या संकोच से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये सीधा जिम्मेदारी, समझदारी और स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। सही जानकारी, सही सलाह और सही समय पर लिया गया निर्णय परिवार के आज और आने वाले कल को बेहतर बनाता है। मित्रों, परिवार नियोजन के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि परिवार नियोजन का निर्णय सुरक्षित और खुशहाल जीवन का आधार है। अब चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

खुश रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अब कार्यक्रम झरोखा से रिडनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी केंद्र रायगढ़।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झरोखा। ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए कविता वासनिक और प्रभु सिन्हा को।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

कार्यक्रम बाजे मांदर में आज आपने सुना कविता वासनिक और प्रभु सिन्हा द्वारा गाए लोकगीतों को। इसी के साथ संपन्न होता है लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। FM बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे।

कुछ ही देर में सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह आप सुनेंगे 8:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। 9:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11:00 12:00 और पुनः 1:10 पर। ये कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप पुनः सुन सकेंगे 11:55 पर। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:10 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:00 11:00 और 12:00 पुनः 1:20 पर आप सुनेंगे ये कार्यक्रम 1:20 से शाम 5:00 तक। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 11:55 पर। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारे हाथ है हमारे गोठ, जिसके प्रायोजक होंगे सीएफएन विभाग सरगुजा। 5:10 पर आप सुनेंगे पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम वनिता विहार। कार्यक्रम का वक्त होगा 5:30 पर, जिसमें आपस की बात होगी। जागरूकता से ही सुरक्षा पाएं, अनचाहे गर्भ की चिंता दूर भगाएं, विश्व गर्भ निरोधक दिवस। चर्चा में होगी खान पान सुधार, व्यायाम अपनाएं, अपने दिल को उम्र भर धड़काएं। शासकीय योजना में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। हिंदी में समाचार शाम 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:10 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का वक्त होगा 7:30 पर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम का वक्त होगा 8:00। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:00। 10:00 आप सुनेंगे डेली हाइलाइट्स कैप्सूल्स एशियन गेम्स 2026। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। सूर्यामिनी कार्यक्रम का वक्त होगा रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और 11:05 पर। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। पुनः आप कार्यक्रम संबंधी जानकारी सुबह 10:00 प्राप्त कर सकेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 8:00 को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
2: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 4 धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉ जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाओ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैफरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
7: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो। ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई है। पहली, जल संरक्षण से जल भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
8: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो कीन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी, गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्योर एंड सेफ गरिमा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
1: डॉक्टर की सलाह में सुनिए हृदय रोग कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर सुमंत शेखर पाढ़ी से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है पंकज मेश्राम।

0: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को पंकज मेश्राम का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारी बातचीत का विषय है हृदय रोग कारण लक्षण और उपचार। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमंत शेखर पाढ़ी साहब, जो कि वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: और दिल की जब हम बात करते हैं तो आपसे सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि दिल हमारा किस तरह काम करता है।
1: दिल जो है बेसिकली एक पंप है जो मसल्स में बना होता है, और दुनिया में सबसे एफिशिएंट जो पंप होता है वो हार्ट होता है। तो और ये पंप जो है एवरेजली एक नॉर्मल एडल्ट में 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है और ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट करता है। तो राइट पार्ट जो है वो इम्प्योर ब्लड को फेफड़ा में भेजता है साफ होने के लिए, और लेफ्ट पार्ट सेम ब्लड जो साफ होके लंग से आता है वो ऑल ओवर बॉडी को सप्लाई करवाता है। तो ये एक पंप है जिसका जो दीवार है जो है वो मसल्स में बना होता है और एक पंप की तरफ काम करता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पंप एवर मेड इन वर्ल्ड।
0: जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो दिल है उस पर दबाव किस वजह से बनता है।
1: देखिए, जैसा मैं बताया जो पंप है उसका पंप में बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं। जैसा जो दीवार है वो मसल्स में बना होता है, उसको काम करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए जो खून का नली है वो ब्लड सप्लाई करता है। दूसरा है कि जो दोनों साइड का जो रहता है राइट एंड लेफ्ट में बताया प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, दोनों सेपरेट होकर रहना चाहिए, तो वो सेपरेशन भी होना जरूरी है, दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, मतलब एक साइड से ब्लड दूसरा साइड में जाना चाहिए, रिटर्न नहीं आना चाहिए। तो उसी के लिए दीवारें रहता है, वाल्व्स रहता है और मसल काम करता है। ये तीनों में से कोई पार्ट अगर खराब होता है तो उसमें स्ट्रेस आता है। जैसा मान लीजिए कि खून का नली में चोक होता है, नॉर्मली लोग हार्ट का प्रॉब्लम मतलब वही समझते हैं कि खून का नली में चोक होना है करके, और जब चोक हो जाता है किसी वजह से तो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर आता है। कभी कभी वाल्व्स वगैरह लीक होना शुरू हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर वाल्व खुलता नहीं है तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, या लीक करता है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, एफिशिएंसी कम हो जाता है। कभी कभी हार्ट में इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है जो हमारा धड़कन को रेगुलेट करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कभी फॉल्ट होने से हार्ट बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। जैसा बैठने के टाइम में हार्ट रेट 60-70 होना चाहिए, किसी कारण के वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट होता है और 180-190 तक चला जाता है। तो ये सब कारण है जो उसके ऊपर हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है और अलग अलग बीमारियां करता है।
0: जी, आपने ये भी कहा कि जो दिल के दो हिस्से हैं अलग अलग, दोनों हिस्से बराबर काम करने चाहिए, और जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो एक से दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर दूसरी तरफ चला जाए रक्त तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है?
1: उसमें दो प्रॉब्लम होता है। ये राइट साइड का जो पार्ट है वो लो प्रेशर एरिया रहता है, तो अगर मान लिए कि कोई छेद है हार्ट में तो क्या होता है कि लेफ्ट साइड का जो एरिया से प्रेशर और ब्लड ज़्यादा चला जाता है लेफ्ट साइड में। तो मान लीजिए कि 1 मिनट में मेरा हार्ट में या कोई नॉर्मल एडल्ट का हार्ट में 5 लीटर ब्लड जाना चाहता है पर मिनट, तो वो छेद होने से वो 10 लीटर हो जाता है, तो हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है। अगर 10 लीटर ब्लड जाता है तो उसको बॉडी रजिस्ट करना चाहता है, फेफड़ा का एरिया जो भसल से रजिस्ट करना चाहते हैं उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो राइट साइड में जो लो प्रेशर एरिया उसका प्रेशर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो नुकसान करता है। तो ये जो टाइप का है ये एक कुछ जन्मगत रोग रहता है जो हार्ट का मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम रहता है, जिसको हम कॉमनली हार्ट का छेद बोलते हैं। छेद वगैरह होने से इस टाइप का प्रॉब्लम होता है, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और ये उसको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं जो पैदाइशी रहता है।
0: जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि हम हृदय रोग की बात करें तो आज जिस तादाद में ये बीमारी दिखाई दे रही है, क्या वजह आप मानते हैं इसकी?
1: लाइफस्टाइल जो है हमारा बहुत ख़राब हो गया है ना, और लाइफस्टाइल जो है वो खाने पीने से लेके एक्टिविटी से लेके लाइफस्टाइल से लेके रात को माने नींद को लेके ये सभी फैक्टर अफेक्ट करने लगता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप घर में जो खाना खाते हैं सुबह से लेकर शाम को खाने तक हमारा कैलोरी 100 किलो कैलोरी बनता है और हमारा एक्टिविटी में वो 80 किलो कैलोरी खर्चा होता है, तो बाकी जो 20 कैलोरी कैलोरी जो जमा हुआ वो क्या करेगा? नुकसान करता है। तो प्रैक्टिकली वही प्रॉब्लम होता है, हमारा जो बॉडी में अननेसेसरी चीज़ इनटेक बहुत ज़्यादा है, बाहर नहीं निकल पाता है या अप्रोप्रिएटली नहीं निकलने से प्रॉब्लम करता है। तो उसके लिए हमारा जो इनटेक है वो भी एक रेस्पॉन्सिबल है और आउटपुट जो है वो भी एक रेस्पॉन्सिबल, आउटपुट कम होने लगा है, इनटेक अननेसेसरी और जो नेचुरल चीज़ नहीं है, हम खाना नहीं खा पाते हैं और हमारा एनवायरमेंट के लिए जो अप्रोप्रिएट नहीं है वो इनटेक बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होता है।
0: डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हृदय रोग के जो कारण बताए जाते हैं उसमें एक कारण ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर को हम हृदय रोग के साथ कैसे जोड़कर देख सकते हैं?
1: हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है, जैसा कॉमनली जो हार्ट अटैक टाइप का प्रॉब्लम होता है, तो उसका देखिए मेन 9 कारण होता है। उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 नॉन मॉडिफाइबल कॉज हैं, जैसे एज एंड फैमिली हिस्ट्री, 2 पार्शियली मॉडिफाइबल है जो डायबिटिक एंड ब्लड प्रेशर, और कुछ मॉडिफाइबल कॉजेस जैसा है मोटापा है, इनएक्टिविटी है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, ये सब कारण की वजह से होता है। ना ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा रहता है तो हार्ट का डिमांड बढ़ जाता है। मान लीजिए कि किसी आदमी का बीपी 120 रहना चाहिए लेकिन 160 रह रहा है, तो हार्ट को 120 ब्लड प्रेशर जनरेट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन पर मिनट हर सेकेंड हर मोमेंट में हम उसको 160 बीपी जनरेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर हार्ट का प्रेशर माने लोड बढ़ जाएगा, वो एक प्रॉब्लम होता है। उसके अगर आउटपुट बढ़ जाता है, माने जो सप्लाई है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। ओवर द पीरियड धीरे धीरे क्या होता है कि हार्ट का मसल मोटा हो जाता है और वो डिमांड बढ़ाता है, रिलैक्सेशन कम हो जाता है, तो ओवरऑल ये आपको नुकसान हर तरफ से करता है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर जो है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना जरूरी है और कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ हार्ट।
0: जी, इसके साथ साथ शुगर की भी समस्या जिसे है उसे भी इस बात का खतरा बना रहता है कि दिल पर कहीं ना कहीं उसका दबाव लगातार बनता जाएगा या बढ़ता जाएगा।
1: हाँ, शुगर एक प्रॉब्लम है जो बॉडी का हर सिस्टम को नुकसान करता है, सर के बाल से लेकर नाखून तक एरिया है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ शुगर नुकसान नहीं करता है। तो शुगर भी अप्रोप्रिएटली एडिक्वेटली कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ मिथ्स है, मिथ्स मतलब क्या है कि बहुत लोगों का एक आइडिया है कि चलो मैं डायबिटिक हूँ तो 200 शुगर मेरा चलता है, लेकिन क्या है कि नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान का खाली पेट का 110 के आसपास और खाना खाने के बाद 140 के आसपास शुगर होना चाहिए। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट का एक आइडिया रहता है मैं डायबिटिक हूँ तो 200 शुगर मेरा नॉर्मल है करके, वो गलत फहमी है। जैसा दिमाग है, ये एक टाइप का दिमाग जैसा नुकसान करता है वैसा नुकसान करता है, हर रोज़ हर मिनट हर सेकंड कुछ कुछ नुकसान करता है, और दिमाग का जब नुकसान समझ में आता है हमारे पास और कुछ करने लायक नहीं होता, इट बिकम्स ए इरिवर्सिबल डैमेज। तो शुगर भी उस टाइप का प्रॉब्लम करता है। इनिशियल स्टेज में जो 200 शुगर है इमिडिएटली कुछ हमको समझ में नहीं आता है कि क्या नुकसान कर रहा है, लेकिन जब नुकसान करता है तब कि कोई स्ट्रोक लेके आता है, कोई अटैक लेके आता है, कोई किडनी फेलियर लेके आता है। तो शुगर एक बीमारी है जिसको लिए बहुत सजग रहना जरूरी है और उसको जैसे भी हो ठीक करना, कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है।
0: जी, और जिन्हें ये दोनों ही प्रॉब्लम है, दोनों ही समस्याओं को लेकर जी रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी?
1: सर, ये जो शुगर एंड बीपी है उसको ठीक करने के लिए हमारे पास 3 पिलर है। एक डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड एक्सरसाइज और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, और तीसरा मेडिसिन। ये तीनों अप्रोप्रिएटली एडिक्वेटली बैलेंस होगा तब जाके चीज़ें कंट्रोल में आता है। और चौथा है कि बीच बीच में उसको चेक करके कंट्रोल करना भी जरूरी है कि भाई वो आपका जो बीपी एंड शुगर है वो ठीक लेवल में रह रहा है नहीं रह रहा है। तो डाइट में ऐसा नहीं है कि बहुत आपको साधु जैसा बनना है, नॉर्मल खाना खाइए, लो कैलोरी खाइए, ऑयली चीज़ से दूर रहिए, कार्बोहाइड्रेट डाइट से दूर रहिए। ये जो हमारा पेरेंट्स भी बोलते थे, उनका दादा परदादा भी बोलते थे कि खाने के टाइम में आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितना होगा उतना अच्छा है, उसमें कैलोरी कम रहता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है, फाइबर डाइट रहता है जो कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर को कंट्रोल में रखता है। तो एवरेजली अगर मान लीजिए कि आपका वेट जितना है, लेट अस से कि आपका वेट 70 किलो है, तो 70 × 5 मतलब 300-500 ग्राम का जो रॉ वेजिटेबल्स फ्रूट्स डेली एक बार लेना जरूरी है। उससे ज़्यादा ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, तो एवरेजली लेकिन कम से कम आपको इतना लेना ही जरूरी है। और उसके साथ जैसा बताया कि लो सॉल्ट एंड लो ऑयल चीज़ जिन चीज़ खाना बहुत ज़रूरी है
0: जी। इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि थायराइड अगर किसी को है तो वो भी दिल पर अपना प्रभाव छोड़ता है सर?
1: हाँ, थायराइड एक हार्मोन है जो कि बॉडी का हम एक एनर्जी हार्मोन मान सकते हैं। थायराइड डेफिशिएंसी होने से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हार्ट को नुकसान करता है। तो जो भी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड हार्मोन अगर कम हो रहा है वो भी नुकसान करता है, और ज़्यादा भी है तो भी वो नुकसान करता है। तो उसको भी आपको प्रॉपर सलाह लेके, उसका मेडिसिन लेके उसको कंट्रोल में रखना जरूरी है
0: जी। हमारी ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम के इस मुकाम पर आपके पसंद के एक गीत की बारी है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा गीत आपने पसंद किया है?
1: पुराना गाना है खानदान का, लता मंगेशकर का, तू ही मेरे मंदिर तू ही मेरी पूजा करके, एक बहुत अच्छा गाना
0: जी, सुना सुनील दत्त साहब और नूतन जी की फिल्म थी। तो आइए आपकी पसंद पर ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद पुनः एक बार डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुमंत शेखर पाढ़ी साहब, जो कि वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और आज की हमारी बातचीत का विषय है हृदय रोग कारण, लक्षण और उपचार। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी हम अपने दिल की बात करते हैं तो दिल पर जो दबाव पड़ता है उसमें तनाव एक बहुत बड़ा कारण होता है। और आज जिस तरह हमारी जीवन शैली है और बहुत सारे लक्ष्य हैं हर व्यक्ति के पास, जिसे पाने की वो कोशिश में लगातार जुटा रहता है, सुबह से शाम तक भाग दौड़ करता है, तो तनाव को अपने आप से दूर रख पाना भी कई बार कठिन होता है। तो इस तनाव भरे जीवन में हम अपने दिल का ख्याल कैसे रखें?
1: तनाव जो होता है आज के दिन में हर आदमी को है, और वो अनफॉर्चुनेटली जितना तनाव आप रहता है वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उतना काम करता है और हार्ट के ऊपर उतना स्ट्रेस डालता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तनाव को आप एलिमिनेट तो पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना कम कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेरे ये मानना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तनाव कम करने के लिए, अपना फैमिली के साथ टाइम बताइए। अपना जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, इनके साथ आपको टाइम बिताइए, क्वालिटी टाइम बिताइए, और डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा उसमें। दूसरा है कि हफ्ते में एक बार तो ऐसा आप टाइम बनाइए जैसा थोड़ा बहुत आउटडोर एक्टिविटी होना ज़रूरी है। आउटडोर एक्टिविटी का ये मतलब नहीं है कि आप हर संडे को जाके होटल में खाना खाइए, नहीं बोल रहा हूँ। जो आप रूटीन काम करते हैं उसके अलावा, जिसका अगर कुछ कहीं गार्डनिंग हो सकता है, कहीं खेल सकते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कोई बैडमिंटन खेल सकते हैं, या कोई समाज सेवा कर सकते हैं, या कोई अनाथाश्रम या वृद्धाश्रम में जाके कुछ टाइम अगर बिता सकते हैं, तो ये सब आपको तनाव से बहुत दूर रखता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज के दिन में हर आदमी को बोलता हूँ, क्वालिटी ऑफ स्लीप आपका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। और क्वालिटी ऑफ स्लीप का सबसे बड़ा शत्रु है जो रात को सोने से पहले 2-3 घंटा पहले टीवी और कंप्यूटर देखना। तो ये सब हमारा जो टीवी एंड कंप्यूटर जो होता है, और पर्टिकुलरली स्क्रीन जितना आँख के पास रहता है, वो हमारा स्लीप को उतना डिस्टर्ब करता है। और हमारा क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा नहीं होने की वजह से हमारा जो नींद का जो मेन पर्पस है, बॉडी को काम करना, वो नहीं हो पाता है। तो सुबह उठ के आप कभी फ्रेश महसूस नहीं कर सकते।
0: तनाव को दूर करने में मेडिटेशन या ध्यान या योग कितनी मदद कर सकता है?
1: वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका जो योग और मेडिटेशन है, हम हर जो ओपीडी में आते हैं हमारे पेशेंट, उनको ही बोलते हैं कि 24 आवर में 45 मिनट अपने पास अपने लिए ज़रूर आप खर्च करिए। 24 घंटे में आधा घंटा एनी फॉर्म ऑफ ब्रिस्क, माने एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, जो सबसे इजीएस्ट एंड कॉमनेस्ट है, ब्रिस्क वॉक है, और 10-15 मिनट थोड़ा सा आप कुछ भी योगा या मेडिटेशन करिए। तो ये आपका दोनों तरफ से हेल्प करता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स जैसा डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सबको कम करता है। हार्ट को कुछ हार्मोनल बेनिफिट मिलता है जो प्रोटेक्शन रहता है, और कामनेस एक आता है, तनाव दूर करता है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये सिंसियर सलाह यही रहेगा कि जो भी आदमी है 24 आवर, और नेसेसरी नहीं है कि लोग समझते हैं वॉक मतलब मॉर्निंग 5 बजे उठ के 4 बजे, वो जरूरी नहीं है, हर आदमी कर नहीं सकता है और इसके पीछे नहीं भाग सकते हैं। आपका दिनचर्या के हिसाब से, आपका प्रोफेशन के हिसाब से आपको टाइम निकालना है। 24 घंटे में एनी टाइम आप कर सकते हैं, अगर सुबह कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एनी टाइम आपको निकाल सकते हैं, ये सब करना जरूरी है।
0: जी, हमारा खान पान, हमारा आहार कैसा हो?
1: आज के दिन में सबसे ख़राब चीज़ वही है ना, हम बहुत सारा वेस्टर्नाइज्ड सोसाइटी को, वेस्टर्न सोसाइटी को देख के अपना जो बेसिक खाना खान पान था उसको हम डेफिनेटली छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल खाना होता है वो रीजन बेस्ड रहता है। जैसा आप देखेंगे उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में पखाल खाते हैं, पानी के साथ, वो चावल के साथ उसको खाते हैं, और उस संबंधित चीज़ें जो बनावट है वो खाते हैं। साउथ में जाएंगे तो उनको इडली और डोसा संबंधित ये रहता है, क्योंकि वहाँ गर्म ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल खाना, जो रीजनल वेरिएशन आता है, वो अपना रीजन का एनवायरनमेंट को देख के, मौसम को देख के बनाया था, और उस वो हमको हेल्प करता था। अनफॉर्चुनेटली ये यूनिवर्सलाइजेशन होने की वजह से पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब करने से हमको क्या होता है, जो ट्रेडिशनल खाना हमको रीजनल एनवायरनमेंट चेंजेस से जो हमको प्रोटेक्शन देता था हो नहीं पा रहा है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब बहुत हाई कैलोरी एनर्जी डाइट्स रहते हैं, है ना, चीज़ है उसमें ऑयल का जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है वो सब बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहुत ज़्यादा कैलोरी इंटेक होने की वजह से वो बहुत सारा माने चीज़ों में गड़बड़ करता है, बॉडी में शुगर और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ावा करता है। तो खाना सिंपल होना चाहिए, लेस ऑयली और लेस सॉल्टेड होना चाहिए। बहुत सारे अमाउंट जो है अप्रोक्सीमेटली 250-300 ग्राम तक आपका जो रॉ वेजिटेबल्स रहता है, फ्रूट्स रहता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली जो हमारे लिए बना नहीं है, हमारा बॉडी को सूट नहीं करता, उसको पूछे नहीं भाग के, हमारे जो प्रीवियस ट्रेडिशनल फूड अगर लेते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत बेनिफिट देता है।
0: जी, अब हम उपचार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, यदि किसी को एक बार हृदय रोग हो जाए तो उसका उपचार किस तरह से संभव है?
1: हृदय जो रोग जो हम कॉमनली समझते हैं, किसी को अटैक होता है अगर हार्ट का खून का नली में बंद होकर आता है, लेकिन लोगों को एक बहुत ज़्यादा गलतफहमी है कि एक बार किसी को अटैक हो जाता है तो उसका लाइफ वहाँ ख़त्म हो जाता है। वैसा नहीं है, अगर अप्रोप्रिएट एडिक्वेट टाइम पे इलाज किया जाता है और जो आज के दिन में जो पॉसिबल है, जैसा किसी का एंजियोप्लास्टी का रिक्वायरमेंट है, किसी को बाईपास का रिक्वायरमेंट है, किसी को मेडिकेशंस का ज़रूरत पड़ता है, अगर ये अप्रोप्रिएट एडिक्वेट लेते हैं और जैसा बताया लाइफस्टाइल को अपना प्रॉपरली मेंटेन करके रख सकते हैं, तो उस उम्र का जो आदमी जो जो काम कर सकता है वो सब आराम से कर सकते हैं, अगर स्वस्थ अपने आप को रख सकते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है आज के दिन में। और ये जो इलाज है, एक ज़माने में जैसा 10-15 साल पहले में आपको खाली मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल होता था, आज के दिन में हर जगह पर अवेलेबल है, इवन टू टायर सिटीज़ में भी अवेलेबल हैं। खाली आपको चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना है और अप्रोप्रिएट सलाह लेना है और सलाह को फॉलो करना है। खाली आप सलाह ले लेंगे और लेकिन उसको अगर दिनचर्या में उसको फॉलो नहीं करेंगे उसका कुछ फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन दिमाग में ये रखेंगे डेफिनेटली कि आप ऐसा कोई कंडीशन में नहीं

0: गुजर रहे हो कि जो आप कुछ करने लायक नहीं रहते हो, वो दिमाग से डेफिनेटली निकालना है।
1: जी, ऐसा कहा जाता है कि 40 वर्ष के बाद हमें हर साल कम से कम एक बार अपने शरीर का पूरी जांच करवानी चाहिए। हृदय रोग के बारे में भी ऐसा ही कहा और सुना जाता है, इस बारे में हम आपकी राय जानना चाहेंगे।
0: देखिए, ऐसा है कि एक मिथ है कि होल बॉडी चेकअप है ना, लोगों को लगता है कि हम एक्स जगह पे गए, वाई जगह पे गए और होल बॉडी चेकअप कर लिए, सब ठीक है तो मेरा सब ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन या चेकअप आज तक नहीं बना है कि जो प्रेडिक्ट कर सकता है ये अभी अगर ठीक है तो आपको कल या परसों प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट अस से कि आज मैं कंप्लीट जांच किया हूँ, सब ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कल मुझे अटैक नहीं होगा करके, है ना। तो ये गलतफहमी में नहीं रहेंगे कि मैं मेरा अभी कंप्लीट हेल्थ चेकअप है, सब नॉर्मल है, तो मतलब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हेल्थ चेकअप जो होता है टारगेटेड होना चाहिए। टारगेटेड इन द सेंस कि मान लीजिए कि मुझे 40 से ज़्यादा है और मैं कुछ सेंट्रल इंडिया में रहता हूँ तो थायराइड का प्रॉब्लम ज़्यादा होने का संभावना रहता है। तो बेसिकली मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, शुगर कैसा है, थोड़ा बहुत किडनी का हालत कैसा है, ये सब हर 6-6 महीने में एक बार जानकारी होना चाहिए। अगर मैं ऑलरेडी कोई बीमारी से ग्रस्त हूँ, अगर मैं डायबिटिक हूँ तो उसके संबंधित जो फास्टिंग कैसा रहता है, पीपी शुगर कैसा रहता है, HbA1c कैसा है, उसे मदद में देखूँगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो इन्वेस्टिगेशंस है, चेकअप होता है, वो पर्सन सेंट्रिक होता है। जैसा मान लीजिए कि मैं अगर बहुत एक्टिव हूँ, हेल्दी हूँ, 3-4 किलोमीटर आराम से चल पाता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत नहीं है। मेरा अगर कोलेस्ट्रॉल एक बार मुझे पता चलता है 6 महीने में एक बार, तो सफिशेंट है। और शुगर और बीपी को थोड़ा सा बीच बीच में इसीलिए हम चेक करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर चेक नहीं करते हो नहीं पता चलता है। हाँ, लेकिन अगर कोई सिम्टम है आपको, जैसा मान लीजिए चलने के टाइम में जल्दी सांस फूलता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, कोई छाती में जकड़न हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये सब जो सिम्टम है उसको एग्रेसिवली इन्वेस्टिगेट करना और प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है।
1: जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, महिलाओं और पुरुषों में हृदय रोग के संकेत अलग अलग होते हैं?
0: हाँ, उसका दो इश्यूज है कि यूजुअली फीमेल्स जो हैं मेनोपोज से पहले, वो थोड़ा सा फीमेल हार्मोन के वजह से प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रॉम हार्ट अटैक। मेनोपोज के बाद वो प्रोटेक्शन इफेक्ट खत्म हो जाता है। दूसरी बात है कि जो फीमेल्स में जो सिम्टम होता है हार्ट अटैक का, जो सिम्टम होता है बहुत टाइम एटिपिकल रहता है, जो सा हम किताब में पढ़ते हैं या टीवी कंप्यूटर में देखते हैं उस टाइप का नहीं रहता है, कुछ एटिपिकल सिम्टम्स रहता है।
1: जैसे
0: कि मान लीजिए कि आपको पेन होता है, तो क्लासिकल सिम्टम हम जैसा बताए थे, छाती में पेन होता है, कान की तरफ से रेडिएट करता है, जॉ की तरफ रेडिएट करता है, स्वेटिंग होता है, इस टाइप का सिम्टम्स मेल्स में ज़्यादा रहता है, फीमेल्स का कम रहता है। और इंडियन सोसाइटी में और एक सबसे बड़ा इशू क्या है कि फीमेल्स इस चीज़ को इग्नोर जल्दी करते हैं कि नहीं ये मेरा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल ये रहता है, अपने आप को इग्नोर करके रखना, अपना सिम्टम्स को दबा के रखना, किसी से डिस्कस नहीं करना, वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो यस, फीमेल्स में इवन दो हार्ट का प्रॉब्लम मेनोपॉज से पहले कम होता है, लेकिन फीमेल्स में अगर हार्ट का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा सीरियस एंड सीवियर होता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल्स का जो हार्ट का खून का नली छोटा रहता है, नैरो रहता है, फ्रेजाइल रहता है, तो उसको ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट रहता है एज कम्पेयर टू मेल्स में, जिनका खून का नली, हार्ट का खून का नली थोड़ा सा बड़े रहते हैं। तो यस, प्री मेनोपोज में फीमेल्स में सिम्टम कार्डियक इश्यूज कम रहता है, लेकिन होता है तो सीवियरिटी ज़्यादा रहता है, उसको ट्रीटमेंट करना, इलाज करना डिफिकल्ट रहता है।
1: जी, आप हमारे श्रोताओं को दिल की बीमारियों से हम दूर रहें, लंबे समय तक हम स्वस्थ जीवन जिए, इसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: लेकिन मैं पहले जैसा बताया था, आपका लाइफस्टाइल ठीक होना बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमंत शेखर पाड़ी साहब, आज आपने हृदय रोग कारण लक्षण और उपचार इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप हृदय रोग कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर सुमंत शेखर पाढ़ी से पंकज मेश्राम की बातचीत सुन रहे थे।
3: विविध भारती के कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है।

ज्योति नूरा को आप सुन रहे थे। राजशेखर का लिखा ये गीत था, कृष्णा सोलो की तर्ज थी, फिल्म थी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। श्रोताओ, जाने मानी अभिनेता लेखक निर्माता और निर्देशक देवानंद की आज जन्म जयंती है। भारतीय सिनेमा की परिकल्पना शायद देवानंद के बिना नहीं की जा सकती, जिन्होंने फिल्म दुनिया के शुरुआती दौर को एक नई पहचान दी और लगभग 6 दशकों से भी ज्यादा फिल्मों में सक्रिय रहे। उनकी स्क्रीन अपीयरेंस की बात करें, उनकी ड्रेसिंग सेंस की बात करें, स्टाइल की बात करें या फिर उनकी डायलॉग डिलीवरी, आज भी सभी के जहन में ये सब बातें ताजा हैं। 6 दशकों से ज्यादा के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने बेशुमार फिल्में की। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया। 1946 में देवानंद ने प्रभात फिल्म्स की हम एक हैं में मुख्य भूमिका से फिल्मों में शुरुआत की। 1948 की फिल्म जिद्दी बेहद सफल हुई। फिल्म बाजी 1951 में आई और इसी फिल्म ने उन्हें एक व्यापक पहचान भी दिलाई। फिल्म जाल, टैक्सी ड्राइवर, पेइंग गेस्ट, हम दोनों, सीआईडी, जब प्यार किसी से होता है, प्रेम पुजारी, हीरा पन्ना, गाइड और तमाम फिल्में जिनमें वैजयंतीमाला, साधना, नूतन, नलिनी जयवंत, वहीदा रहमान और कभी मुमताज भी साथ साथ नजर आई। फिल्म विद्या, जीत, शायर, अफसर, ये फिल्में अभिनेत्री सुरैया के साथ यादगार रहीं। अभिनेत्री कल्पना कार्तिक उनकी शरीके हयात बनी। दिसंबर 2011 को दिग्गज अभिनेता देवानंद ने इस असार संसार को अलविदा कहा।

0: आयुष्मती गीता मैट्रिक पास, इस फिल्म का गीत आपने सुना देखा भरद्वाज की आवाज में, संजीव आनंद झा का लिखा और स्वरबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे।
1: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए।

संजू फिल्म का ये गीत आपने सुना, सोनू निगम सुनिधि चौहान की आवाजें थी, पुनीत शर्मा का लिखा ये गीत था, रोहन रोहन की तर्ज थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: تشنگی اس فلم میں آپ نے سنا مندکنی ورا کی آواز، منظر بلیاوی کے بول تھے، گوفی کا سنگیت تھا۔
1: ایک ولکشن گائک،
2: ارے او رے،
1: سنگیت کے سادھک،
2: او رے پتھکوا مت جئیو تو برنداون کی،
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर।

तमाशा फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहित चौहान की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था। और इसी गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे संगीता श्रीवास्तव के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ लेते हैं कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक ऐसे अभिनेता को नमन जिसने पश्चिम के मशहूर अभिनेता ग्रेगरी पैक की शैली को अपनाया, उसमें अपनी थोड़ी सी अदा मिलाई और बनाई अपनी एक सदाबहार अदा।
1: बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है।
0: एक ऐसा हीरो जिसने तकरीबन 4-5 दशक तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया।

गुरुदेव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को शंकरगढ़ गुरदासपुर में हुआ था। आज ये जगह पाकिस्तान का हिस्सा है। पिता पिशोरीलाल आनंद एक जाने माने वकील हुआ करते थे। तीन भाई थे, चेतन आनंद, देव आनंद और विजय आनंद। चेतन आनंद अपनी पढ़ाई खत्म करके मुंबई आ गए थे और फिल्मों और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए थे। देव आनंद ने अपनी स्कूली पढ़ाई की डलहौजी के सेक्रेड हार्ट स्कूल में। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो धर्मशाला गए और वहां से चले गए लाहौर, जहां उन्होंने इंग्लिश में बीए ऑनर्स किया। 40 के दशक में देव आनंद मुंबई

0: जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
1: यहाँ उन्हें काम मिला मिलिट्री सेंसर ऑफिस में, इसके बाद एक और छोटी सी नौकरी। लेकिन इस बीच अशोक कुमार की अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्में देखने के बाद उनके मन में महत्वाकांक्षा पैदा हुई फिल्म कलाकार बनने की। एक दिन धड़ल्ले से वो प्रभात स्टूडियोज में घुस गए और काम की मांग की। आखिरकार सन 1946 में प्रभात फिल्म्स की पेशकश हम एक है में उन्हें काम मिल गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई। दोनों दोस्त बन गए, एक दूसरे से वादा किया जब वो कामयाब बन जाएंगे तो एक दूसरे के लिए फिल्में बनाएंगे। आगे चलकर दोनों ने ये वादा पूरा किया। देव आनंद ने अपने करियर के शुरुआती दौर में सुरैया के साथ कई नायिका केंद्रित फिल्में की। देव आनंद और सुरैया 7 फिल्मों में एक साथ नजर आए। सन 1948 विद्या, सन 1949 जीत, सन 1949 में ही आई शायर, 1950 में ही आई नीली और अफसर नाम की फिल्में। सन 1951 में आई सनम और फिर दो सितारे। दो सितारे सुरैया और देवानंद की एक साथ की गई आखिरी फिल्म थी। सन 1949 में देव आनंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स नामक फिल्म कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी की पहली फिल्म थी अफसर। इसके बाद फिल्म बाजी बनाकर उन्होंने गुरुदत्त से किया वादा निभाया। इस फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे।
2: सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन मल होर भूल भल सोना ना।
1: कलाकार थे देवानंद, गीता पाली और कल्पना कार्तिक। कल्पना कार्तिक के साथ देवानंद की बेहतरीन जोड़ी जमी। सन 1952 में आई आंधियां, फिर टैक्सी ड्राइवर।

0: 9211।
1: आँखों में क्या थी
2: पहला बादल,
1: बादल में क्या थी
2: किसी का आंचल।
0: जब टैक्सी ड्राइवर हिट हो गई तो देवानंद और कल्पना कार्तिक ने सन 1954 में शादी

अपनी खास अदा के लिए देव आनंद जाने जाते हैं। कहते हैं कि जिस रास्ते से देव आनंद गुजर जाया करते थे, खास तौर पर अपनी ट्रेडमार्क काली पोशाक में, तो लड़कियां उफ उफ कर

बात ये है कि देव आनंद की फिल्मोग्राफी बेहतरीन गानों और शानदार संगीत की एक सुरीली यात्रा भी है। आइए फिल्म दर फिल्म देव आनंद की फिल्मों के गाने सुनें और कुछ संवाद भी। सन 1955, मुनीम जी, निर्देशक सुबोध मुखर्जी।

आनंद के छोटे भाई विजय आनंद ने सन 1957 में बनाई 9-2-11 और इस तरह से उन्होंने निर्देशन की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इस फिल्म की हीरोइन थी कल्पना कार्तिक।

सन 1963 विजय आनंद का निर्देशन तेरे घर के सामने। बड़ा नटखट है समा हर नजारा।

0: सन 1965 देव आनंद और विजय आनंद की कल्ट फिल्म गाइड।
1: आज मैं कितनी आजादी महसूस कर रहा हूँ, जिस्म जैसे मांगे करना भूल गया, मन तड़पना तड़पाना भूल गया, जीवन आज जैसे मुट्ठी में है, मौत जैसे खेल है। अभी बेजान होकर गिर पड़ूंगा, तब देखोगे, लगता है आज हर इच्छा पूरी होगी, पर मजा देखो, आज कोई इच्छा ही नहीं रही, कम से कम जीने की इच्छा तो ना जाने दो। जिंदगी पिघल कर प्रकाश बन गई और सच्चाई मेरा रूप है, तन रहे न रहे मैं रहूंगा।

बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। मैं कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। कभी गुस्से में बुरा भला क्या जाए करूँ तो बुरा मत लाना। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है, लेकिन जब उतरता है

0: देव आनंद और विजय आनंद की जोड़ी की बेमिसाल फिल्म साल 1967 ज्वेल थीफ।
1: क्या हुआ तुम्हें सारी रात तुम मेरे साथ रहे हो? मैं कहीं पी तो नहीं ली तुमने? रात को 9:30 बजे का शो हम दोनों ने साथ देखा, उसके बाद होटल में जाकर सो गए।
2: इसकी बात कर रहे हैं आप? पूना की गाड़ी के बाद आज पहली बार तो आपसे मिल रहा हूँ।
1: पीना है तुम्हें, हुआ क्या है? पुणे से कलकत्ता हम लोग साथ आए हैं, होटल में डबल रूम बुक किया, पल भर के लिए भी तो साथ नहीं जुड़ा हम दोनों।
2: कितने बजे तक मैं आपके साथ?
1: तुम सो रहे थे बस मैं निकला है।
2: क्यों? के साथ आपने 2 दिन बिताए हैं वो अमर है।
1: अमर?
2: अमर
1: उसने फिर धोखा
2: दिया। ओके बात
1: अच्छी मालूम होगी। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है।
2: अपने आप को जितना चालाक समझते हो उतने बेवकूफ अमर।
3: रात अकेली है बुझ गई दिल।
0: 1970 में आई जॉनी मेरा नाम, निर्देशक थे विजय आनंद।
4: तुम्हारा क्या नाम?
5: जॉनी।
4: अरे तू इंसान है या हैवान?
5: तो क्या नाम है तुम्हारा?
4: पहले जरा कानों की महल ने फिलवाई है, एक ही बात को बार बार दोहराने का आदि नहीं हूँ मैं। एक बार और बता, फिर इसके बाद नहीं पूछेंगे।
5: जॉनी।
4: मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे आपने हमें 10,000 रुपए दिलवाए। अगर मालूम होता कि जिन भूतों से वास्ता पड़ेगा तो आप कभी दूर से सलाम करके रफू चक्कर हो जाते।
5: हर झगड़ा प्यार और मोहब्बत से निपटाया जा सकता है। आप मेरी मुरम्मत करवाते चले जा रहे हैं, मैं आपको दिल में गाली देता जा रहा हूँ। क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मुरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं और बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठ कर सब फैसले कर लिए जाए।
0: इसके बाद 1971 में तेरे मेरे सपने।
6: डॉक्टर जगन, क्या आप यही डॉक्टर जगन्नाथ कोठारी हैं? MBBS बॉम्बे, MRCOG लंदन।
7: मेडिकल हूज हूँ। इसके साथ तुम क्या करो?
6: इनके साथ मैं काम करता हूँ, उनके बारे में जान लेना पसंद करता हूँ।
7: उनके बारे में जान लेने से बेहतर है डॉक्टर आनंद उनको जान लेना। घबराओ नहीं, बहुत वक्त मिलेगा, जान जाएंगे हम एक दूसरे को।
6: मेरे लिए अभी ये जान लेना बहुत जरूरी है। ठर्रे की बदबूदार बोतल देखता हूँ तो MRCOG लंदन समझ में नहीं आता।
7: आनंद, मैं इसे बिल्कुल जरूरी नहीं समझता कि ये तुम्हारी समझ में आए। MRCOG सिर्फ 5 अक्षर हैं जिनका कोई मतलब नहीं, और ये ठर्रे की बोतल एक हकीकत है मेरे लिए, समझे।
0: और 1973 में विजय आनंद के निर्देशन में देव आनंद ने की छुपा रुस्तम।

बात चल रही है देव आनंद की कुछ बेमिसाल फिल्मों की। सन 1958 में आई राज खोसला के निर्देशन वाली 16 साल, हीरोइन थी वहीदा रहमान।

सन 1958 में मधुबाला और नलिनी जयवंत के अभिनय वाली काला पानी, निर्देशक राज खोसला।

नासिर हुसैन के निर्देशन वाली सन 1961 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है, हीरोइन आशा पारेख।

0: है दिया।
1: युग बदलते चले गए, हीरोइनें बदलती चली गईं, लेकिन देव आनंद की शोखी, उनकी चंचलता और बॉक्स ऑफिस पर उनका जादू कायम रहा। सन 1961 में आई वॉर फिल्म हम दोनों, निर्देशक अमरजीत, हीरोइनें नंदा और साधना।
2: अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं।
1: सन 1962 में आई शंकर मुखर्जी की फिल्म बात एक रात की, हीरोइन थी वहीदा रहमान।

0: अमरजीत ने सन 1965 में देवानंद और तीन हीरोइनों के साथ एक नायाब फिल्म बनाई तीन देवियां। ये हीरोइनें थीं सिमी गरेवाल, नंदा और कल्पना मोहन।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।
2: ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ।
3: गोड़ में ठूठी बाहरी, पाँव में जंजीर, नाक में भेलवा कौड़ी बांध के 6 महीना के कैदी में छाया घर छाया कोरी के हिरल बंद कर दी।

नहीं करे कथे गीतकारी ऊपर नक 50 भाई तीन मूर्ति दुने त्रोत बासिंग करे विचार कथे भैया।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप बांस गीत सुन रहे थे। कलाकार थे जगत राम यादव और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराय पाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के दक्षिण और मध्य इलाकों में लगातार हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर, अनेक क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। बारिश की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आज प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया और मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को पूरी सतर्कता के साथ राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने आज प्रदेश के सभी

0: राजकीय अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव, नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि तथा आवागमन में कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में स्कूली बच्चों को किसी प्रकार का जोखिम न उठाना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर के विद्यालयों में अवकाश रखने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को पूरी सतर्कता के साथ राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जल स्तर बढ़ने या बाढ़ की आशंका की स्थिति में लोगों को समय रहते सचेत किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। भारी बारिश के कारण इंद्रावती, महानदी, खारून और शिवनाथ सहित विभिन्न नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है तथा राज्य के कई शहरों और नगरों की निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। धमतरी स्थित गंगरेल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं और यहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे महानदी का जल स्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नदी किनारे के कई गांवों में पानी घुसने की खबर है। राज्य में भी त्रिवेणी संगम पर लगातार पानी की आवक होने से तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है। राज्य बस स्टैंड में 4 फीट तक पानी भर गया है। वहीं निचली बस्तियों में पानी भरने के कारण लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच राजधानी रायपुर में खारून नदी उफान पर है। महादेव घाट में पुल के 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। नदी किनारे के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भिलाई की निचली बस्तियों में जल जमाव हो गया है। रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर सोनारपाल के पास करीब आधा दर्जन ट्रकों के चालक और परिचालक सड़क पर कई फीट पानी भर जाने के कारण फंस गए थे। इन्हें राहत और बचाव दल ने सुरक्षित निकाला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सेवा और समर्पण से ही सशक्त समाज का निर्माण होता है। वे कल रायपुर में अंत्योदय सेवा वंदन पर्व और वीरगाथा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नागरिकों, पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन पर आधारित नमो सेवा गाथा का मंचन हुआ। लोक कला और देशभक्ति की प्रस्तुतियां भी दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रायपुर जिला प्रशासन के प्रोजेक्ट राहत, प्रोजेक्ट ध्वस्त और एआई आधारित नवाचारों का शुभारंभ किया। बेमेतरा में 26 और 27 सितंबर को 2 दिवसीय प्रांतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर के साहित्यकार, विद्वान, भाषा विशेषज्ञ और राजभाषा से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श होगा। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा ने कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट कर उन्हें सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के दक्षिण और मध्य इलाकों में लगातार हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर, अनेक क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। बारिश की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आज प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया और मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को पूरी सतर्कता के साथ राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 में घस पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं, सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना जो आज हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे 10:10 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर। 11 बजे आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। पुनः आप विविध भारती कार्यक्रम सुन सकेंगे 12 बजे और 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 11:55 पर।

1:10 पर आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गुट। प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सरगुजा। पॉप टाइम पॉप गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। वनिता विहार कार्यक्रम का वक्त होगा 5:30 पर, जिसमें आपस की बात का विषय होगा जागरूकता से ही सुरक्षा पाएं, अनचाहे गर्भ की चिंता दूर भगाएं, विश्व गर्भ निरोधक दिवस। आपस की बात का विषय होगा जागरूकता से ही सुरक्षा पाएं, अनचाहे गर्भ की चिंता दूर भगाएं, विश्व गर्भ निरोधक दिवस। साथ ही चर्चा होगी खान पान सुधारें, व्यायाम अपनाएं, अपने दिल को उम्र भर धड़काएं। शासकीय योजना में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:10 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:45 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। गैर फिल्मी गीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 8:30 पर। समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप रात्रि 10 बजे सुनेंगे डेली हाईलाइट कैप्सूल्स एशियन गेम्स 2026। रात्रि 10:20 पर आप सुनेंगे विविध संगीत का कार्यक्रम। 10:30 पर आप सुनेंगे सूर्यामिनी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम। 11 बजे रात्रि आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: सूचना सुनिए। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज रायगढ़ अंतर्गत अस्थायी प्रशिक्षक इम्पैनल किए जाने हेतु सूचना। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी रायगढ़ अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशंस कोर्स में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु एक पूर्णतः अस्थायी प्रशिक्षक इम्पैनल किया जाना है। उक्त कोर्स हेतु आवश्यक योग्यता, अनुभव एवं प्रपत्र संबंधी जानकारी हेतु कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है। इच्छुक योग्यताधारी आवेदक दिनांक 28 सितंबर तक आवेदन सीधे कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं। CITS सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियन, TOT SSC ओनली इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशंस प्रमाण पत्रधारी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त सूचना निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित। सूचना एक बार फिर से सुनिए। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज रायगढ़ अंतर्गत अस्थायी प्रशिक्षक इम्पैनल किए जाने हेतु सूचना। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी रायगढ़ अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशंस कोर्स में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु एक पूर्णतः अस्थायी प्रशिक्षक इम्पैनल किया जाना है। उक्त कोर्स हेतु आवश्यक योग्यता, अनुभव एवं प्रपत्र संबंधी जानकारी हेतु कार्यालय की सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है। इच्छुक योग्यताधारी आवेदक दिनांक 28 सितंबर तक आवेदन सीधे कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं। CITS सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियन, TOT SSC ओनली इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशंस प्रमाण पत्र धारी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। सूचना समाप्त हुई। सूचना सुनिए। नवोदय विद्यालय में क्लास 9th और 11th के लिए एप्लीकेशन जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट के जरिए खाली सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। कक्षा 9वीं और 11वीं में सेशन के कक्षा 9वीं और 11वीं में सेशन 2027 से 28 के लिए एडमिशन होगा। कैंडिडेट नीचे दिए गए लिंक पर जाकर फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 9वीं के लिए वेबसाइट है https://cbseitms.nic.in/2026/nvsi6_9। कक्षा 9वीं के लिए वेबसाइट एक बार फिर से सुने https://cbseitms.nic.in/2026/nvsi6_9। कक्षा 11वीं के लिए cbseitms.nic.in/2026/nvsxi_11। cbseitms.nic.in/2026/nvsxi_11। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 तक है। प्रोस्पेक्ट्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उपलब्ध है। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधी जानकारी एवं सूचना। कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 10:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में आइए सुनते हैं कुमार सानू और आस्था गिल को।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: अगला गीत सुनिए जिसे गाया है राज बर्मन ने।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन,

0: समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

गजेंद्र वर्मा को अभी आपने सुना। अगला गीत कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनिए, जिसे गाया है साज भट्ट ने।

0: इस खूबसूरत से गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
1: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
2: प्योर एंड सेफ गरिमा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे सभी श्रोता साथियों को डिनेश्वरी का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता साथियों, यही वो कार्यक्रम है जहां हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद के गीत और साथ ही शामिल करते हैं आपके ईमेल्स और आपके खत आपके पसंदीदा गीतों के साथ। कार्यक्रम आपकी फरमाइश शुरू करते हैं और सुनते हैं फिल्म जब जब फूल खिले का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव।

सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा। इसी गीत को सुना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। और अगला गीत सुनिए रोटी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार गुंजेश, रिया रानी कुमकुम, साक्षी बुल्की वाली फिलनाझा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और ये फिल्म है महबूब की मेहंदी। इस गीत को सुनना चाहते हैं दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी, नर्मदा धाम सुरसूली बालोद से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव, योगेश यादव, चांडूर बिस्वा तालुका नांदुरा जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से नारायण खड़ से, रक्षा खड़ से ललिता संजना, गणेश कार्तिक खड़ से मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल

0: विज्ञापन आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: अगला गीत सुनिए जो है फिल्म आंसू बन गए फूल से, जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। गोविंद मुनीश ने इस गीत की शब्द रचना की है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हटरी चौक भिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रजनी प्रियंका रेणु देवांगन। फुटानी चौक नरहन स्टेट से फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन पराशर, बेबी आराध्या, ललन मिश्रा। मिश्र मोहल्ला नरहन बाजार से बीके मिश्रा, गुंजन पराशर, अमित सुमित, छोटू लल्लू पंडित। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपा ढींगिया। इसी गीत को सुनना चाहते हैं इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा। लाल टंकी चौक रायगढ़ से चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्य, मनोज, मुकेश और अंकित साहित्य। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

श्रोता साथियों, कार्यक्रम से जाने का वक्त हो चला है, लेकिन जाने से पहले आपको अपना पता बताते हुए चलते हैं। हमारा ईमेल पता है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा, केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़, पिन कोड 9601। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा, केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़, पिन कोड 9601। अब कार्यक्रम आपकी फरमाइश से डिडनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी केंद्र रायगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम समाप्त होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।
1: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए।

0: मैटिनी शो। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हास्य कलाकार उदय सिंह दहिया से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस समय हमारे स्टूडियो में हैं उदय दहिया, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जाने माने कॉमेडी आर्टिस्ट हैं। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत धन्यवाद यूनुस जी, और विविध भारती जो कि हमारे बचपन से हमने इसको सुना।
1: बिल्कुल,
2: और जब सुनते थे तो कभी सपने में सोचते थे कि क्या हमारी आवाज भी यहाँ पर सुनाई देगी,
1: और आज आ रही है।
2: और आज आ रही है तो एक सपना साकार हो रहा है।
1: जब आपने बचपन का जिक्र किया तो चलिए फिर बचपन में चलते हैं
2: जी।
1: तो कहाँ आपका बचपन बीता था और कैसा था आपका बचपन?
2: बचपन बड़ा मजेदार था। कारण ये है कि पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे।
1: हाँ।
2: तो अलग अलग शहरों में ट्रांसफर होते थे।
1: हाँ।
2: तो एक ही शहर नहीं, बहुत सारे शहर।
1: बहुत सारे शहरों वाला बचपन है
2: जी। जी,
1: जैसे?
2: जैसे मेरा जन्म हुआ मध्य प्रदेश के इटारसी शहर में।
1: बताओ।
2: फिर पिताजी का ट्रांसफर हो गया भोपाल,
1: तो भोपाल आ गए।
2: फिर भोपाल से ट्रांसफर हो गया रायसेन।
1: लो,
2: तो ऐसे शहर बदलते रहे, ऐसे 5-7 शहरों में बदल के फिर हम लोग, अब नर्मदापुरम हो गया, पहले नाम होता था होशंगाबाद
1: जी।
2: तो उसमें एक कस्बा है, तहसील प्लेस है, पिपरिया।
1: हाँ।
2: वहां मेरा ज्यादा लॉन्ग टाइम बीता है।
1: अच्छा, पिपरिया यानी पचमढ़ी जाने के रास्ते वाली
2: जी। बिल्कुल, पचमढ़ी का मुख्य द्वार।
1: क्या बात है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बुंदेलखंड से ताल्लुक है आपका।
2: हाँ जी, बिल्कुल है। क्योंकि बुंदेलखंड में मेरा ननिहाल है।
1: अच्छा।
2: हाँ।
1: कहाँ पर?
2: ये है सतना पन्ना।
1: पन्ना तो टाइगर रिजर्व के लिए
2: टाइगर रिजर्व है, जहां पर हीरे और पन्ने निकलते हैं।
1: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि बचपन से जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो परफॉर्मेंस की दुनिया कहाँ से शुरू होती है?
2: ये शुरू होती है 1987 में, जब हमारे एक ऐसे कलाकार जो गायक भी, एक्टर भी, कॉमेडियन भी, राइटर भी, डायरेक्टर भी, तमाम खूबियां जिनके अंदर हैं,
1: किशोर कुमार जी। जी जी।
2: तो उस समय वो नहीं रहे थे 1987 में, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर लगातार उनकी फिल्में आती थी। और मैं उस समय कुछ 6वीं 7वीं पढ़ता था
1: जी।
2: तो उनको जब मैं देखता था तो मैं सोचता था यार ये कौन है, क्योंकि बचपन में इतना ज्यादा हम जानते
1: पता
2: नहीं थे।
1: नहीं होता,
2: बस इतना मालूम था कि कोई बहुत अच्छे कलाकार हैं। और जब मैं उनको देखता, उनकी भाव भंगिमाएं जो एक जगह कभी टिकते नहीं थे, आप स्क्रीन पे उनको देखो तो पूरा बॉडी लैंग्वेज उनका हिलते ही रहता था, कभी एक भाव ऊपर जा रही है। तो मैं सोचता था क्या करते, ऐसा मैं भी कुछ करूंगा कि लोग हंसे और खुश हों, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए।
1: वाह वाह वाह।
2: तो वहां से मैं प्रेरित हुआ और फिर मैंने एक विधा सीखी। वैसे मैं चाहता था कि मैं जिंदगी में गायक बनूं।
1: अच्छा।
2: लेकिन इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हमको अलग से कोई तालीम दी जाए, सिखाया जाए, कहीं भेजा जाए। तो फिर मैंने सोचा एक ऐसी विधा जिसका कहीं कोई स्कूल नहीं होता, और वो है कॉमेडी।
1: बिल्कुल,
2: कॉमेडियन बनाने का कहीं कोई स्कूल नहीं होता।
1: सही है।
2: मतलब आपको एक्टिंग का स्कूल मिल जाएगा, सिंगिंग का मिल जाएगा, डांसिंग का मिल जाएगा, लेकिन कॉमेडी का स्कूल नहीं मिलता।
1: यस,
2: कॉमेडी खुद सीखी जाती है, ये एक लव की तरह सीखी जाती है।
1: बिल्कुल।
2: बहुत सारे द्रोण आपके सामने होते हैं, अलग अलग सीनियर कलाकार, किसी का बोलने का ढंग सीखते हैं हम, किसी से बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं, किसी से आवाज का थ्रो सीखते हैं। तो मैंने भी ऐसे फिर ये सीखना शुरू किया, और फिर धीमे धीमे करके मैं मंचों पे आने लगा।
1: क्या बात है।
2: और मैं सबसे पहले मैंने मिमिक्री सीखी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का पहला जो पायदान होता था वो मिमिक्री होता था, किसी की नकल कर लेना।
1: और जिन दिनों की आप बात करें, उन दिनों तो स्टैंड अप कॉमेडी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था।
2: नहीं था, बिल्कुल
1: नहीं था। मिमिक्री बहुत होती थी, और मध्य प्रदेश में मिमिक्री के राजा कौन हुआ करते थे?
2: अरे नायकर साहब।
1: जबलपुर के नायकर साहब।
2: जी, जी जी। तो बस ऐसे बड़े सीनियर कलाकारों को हम मंचों पे सुनते थे, उनको सुनकर सीखते थे कि कैसे बोलना है, और फिर हमने कुछ अपना भी सीखा, अपना कुछ बनाया। जैसे मैंने कुछ अलग तरह की मिमिक्री सीखी। उस समय टेलीविजन पर महाभारत सीरियल आता था।
1: हाँ हाँ।
2: तो उनके कुछ कलाकारों की आवाज की कॉपी करने लगा।
1: यहाँ से शुरुआत हुई, जैसे भीष्म पितामह
2: करता था मैं। दुर्योधन करता था मैं।
1: अच्छा, कड़क आवाज वाला जो।
2: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो। लोगों को लगता अरे महाभारत हमारे घर में आता और उसका कलाकार सामने खड़ा है। तो बहुत लोगों का प्यार मिला उससे मुझे।
1: कुछ करके बताएं।
2: जैसे मैं महाभारत का एक सीन आपको सुनाता हूँ, जिसमें दुर्योधन कुछ कह रहे हैं और बीच में फिर मुकेश खन्ना भीष्म पितामह को समझाएंगे, तो आप सुनिएगा।
1: जी जी जी।
3: आप चाहे कुछ भी कहें मामा श्री, लेकिन मैं उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। यदि उसने भरी सभा में कोई उल्टी सीधी बात कही तो उसी वक्त उसे बंदी बना लूंगा, समझे?
1: क्या बात है, बिल्कुल पुनीत इसर वाली आवाज है।
2: आप भीष्मता में समझा रहे
1: वो कड़क आवाज,
2: वो समझा रहे हैं, कुछ कहने से पहले तनिक सोच तो लिया करो वत्स, कुछ सोच तो लिया करो। अरे धृतराष्ट्र समझाओ अपने इस पुत्र दुर्योधन को, अरे कहने से पहले तनिक सोचता भी नहीं है। अरे इस तरह से तुम कहते रहे वत्स तो बताओ, क्या हमारी बूढ़ी छाती अर्जुन के वाणों को झेल सकेंगी वत्स?
1: क्या बात है।
2: इस तरह से
1: वो जमाना याद आ गया जब
2: बचपना
1: कर्फ्यू लग जाता था।
2: जी जी,
1: रविवार को लोग महाभारत दिखा करते थे।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये स्कूल में आप करने लगे?
2: ये मैं स्कूल में करने लगा था।
1: फिर आगे
2: मैं धीरे से बढ़ा तो अपने शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से राजधानी भोपाल, फिर आसपास के और बड़े
1: लोग
2: शहर,
1: बुलाने लगे
2: ऑर्केस्ट्रा में, नवरात्रि में, फिर ये सोशल वाले जो क्लब्स होते हैं जो इस तरह के सोशल वाले प्रोग्राम कराते हैं।
1: हाँ।
2: उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया।
1: मतलब आप शुरू से ही बिजी हो गए?
2: जी बिल्कुल, मैं 10वीं क्लास में आते आते प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गया था।
1: घर से डांट पड़ती थी?
2: हाँ, घर से डांट पड़ती थी, लेकिन
1: पढ़ लिख लो।
2: लेकिन वो डांट इसलिए नहीं पड़ती थी ज्यादा कि मैं स्कूल अटेंड करता था बराबर।
1: अच्छा।
2: और शाम को 5 बजे छुट्टी हुई स्कूल की, मैं घर आया, मैंने अपनी ड्रेस चेंज की, सब अपने रंगीन कपड़े पहने प्रोग्राम वाले, और किसी ट्रेन में बैठकर आसपास के किसी शहर में पहुंच जाता था, प्रोग्राम करता था, और रात की किसी ट्रेन से वापस आ जाता था।
1: अरे,
2: और सुबह बराबर स्कूल अटेंड करता था।
1: इतना डिसिप्लिन, इतनी मेहनत।
2: तो हमारे टीचर मन में सोचते थे क्या है, बोले ये लड़का कल भी स्कूल आया था, आज भी आया है, और आज इसका अखबार में फोटो छपाई, कल ये वहां प्रोग्राम कर रहा था,
1: ये कैसे हो गया,
2: ये कैसे संभव होता है। तो बड़े खुश होते थे इसको देखकर कि चलो कोई एक लड़का है जो अच्छा काम कर रहा है, जिसकी फोटो आती है अखबारों में, तो प्रसन्न होते थे बहुत वो।
1: वाह वाह।
2: और मैं पढ़ने में तेज तो नहीं था, लेकिन एवरेज था, लेकिन ठीक था मैं।
1: हाँ, बढ़िया है। तो कॉमेडी का जो दौर नहीं था, मतलब मिमिक्री करनी होती थी और अलग अलग शहरों में जाके आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से आगे के रास्ते किस तरह से खुले?
2: देखिए, मैं अपने मध्य प्रदेश में सब जगह प्रोग्राम कर रहा था और ये बहुत अच्छे से चल रहा था। तब तक करते करते अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके मैं कॉलेज में भी आ गया था, और कॉलेज में जो यूथ फेस्टिवल होते हैं, युवा उत्सव,
1: बिल्कुल,
2: उसमें हम प्ले में भाग लेते थे। कभी कहीं भाषण हो रहा है, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, जो भी हो रहा है उसमें हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है, ये सब चलता था। उसमें मैं जीत कर एक शहर से दूसरे शहर, फिर कॉलेज के प्रोग्राम होते थे,
1: राज्य स्तरीय,
2: हाँ, तो उन सब में मैं जाता था। फिर कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद मैं सोच रहा था अब कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा, तभी मेरे घर एक फोन आया।
1: अच्छा।
2: उस समय टेलीफोन होता था, मोबाइल आया नहीं था, आया होगा तो बड़े शहरों में आया था, हमारे यहाँ पहुंचा नहीं था। एक फोन आया, हम स्टार टीवी से बात कर रहे हैं,
1: अरे बाप,
2: एक कार्यक्रम बन रहा है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, इसमें उदय दहिया साहब को हम बुलाना चाहते हैं।
1: उन तक आपका नाम पहुंच गया था?
2: हाँ, वो टीम जब मध्य प्रदेश आई तो उन्होंने पता किया, जो मैंने आपको बताया सोशल जो प्रोग्राम कराते हैं, इस तरह की समितियां कमेटियां होती हैं, तो उन्होंने बताया एक उदय दाहिया है,
1: वो अच्छा करते हैं,
2: वो बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया घर पे, मैं इत्तेफाक से घर में नहीं था, मेरी माँ ने, अम्मा जिनको बोलते हैं, उन्होंने फोन उठाया, बोले बेटा वो तो भोपाल गए हैं शो करने, तो कल आएंगे। बोले ठीक है, कल हम बात करेंगे। अगले दिन उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा प्रोग्राम बन रहा है, आप आइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, मेरा नुकसान हो जाएगा, और इस प्रोग्राम में आके मैं करूंगा क्या? आप तो कंपटीशन कर रहे हैं, कॉमेडी में कोई कंपटीशन होता नहीं है। तो बोले आप कितने पैसे लेते हैं एक प्रोग्राम के? मैंने कहा मैं 5,000 रुपए बोलता हूँ, मुझे 3,000-4,000 रुपए मिल जाते हैं।
1: तो मेरा इतने ऑनेस्टली बता दिया।
2: हाँ, तो वो बोले कि एक काम करते हैं, हम आपको एक प्रोग्राम का पैसा देते हैं, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, आप आइए। तो मैं फिर जबलपुर गया, ऑडिशन हुआ, और तुरंत उनने कहा कि आप मुंबई आ रहे हैं।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था,
1: क्योंकि उस वक्त लाफ्टर चैलेंज इतनी बड़ी चीज थी
2: जी,
1: कि उसमें जितने लोग शामिल हुए
2: जी,
1: सब जो हैं वो अलग अलग तरह से आज भी सक्रिय हैं
2: जी, बिल्कुल,
1: और बहुत ज्यादा नाम उन लोगों ने कमाया।
2: सच्ची बात है, पूरी दुनिया में नाम हुआ उससे,
1: बिल्कुल। हाँ। तो जो लाफ्टर चैलेंज का जो पहला सीजन था
2: जी,
1: उसमें आप शामिल थे।
2: साहब, ये एक मेरी खुशकिस्मती है कि जैसा मेरा नाम है उदय
1: जी,
2: जिसका मतलब ही होता है आरंभ होना,
1: और आरंभ से आप थे,
2: और मैं पहले सीजन के पहले एपिसोड का पहला कंटेस्टेंट था।
1: मतलब आप ही से शुरू हो रहा है?
2: मुझसे लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था।
1: अरे गजब। और कौन कौन लोग थे उस
2: उसमें? राजू श्रीवास्तव थे, सुनील पाल थे, एहसान कुरैशी थे, हाँ। और जो अभी सीएम साहब हैं पंजाब के, भगवंत मान साहब थे।
1: गजब गजब।
2: तो ये सारी
1: मजेदार कॉमेडी करते थे वो,
2: बहुत मजेदार कॉमेडी होती थी।
1: गजब। उसको तो लोग बहुत देखा करते थे और लोग इंतजार करते थे, कोई एपिसोड चूकता नहीं था।
2: सच्ची बात।
1: लेकिन मुकाबला कितना सख्त था, एक से बढ़के एक दिग्गज, सबकी अपनी अपनी शैली।
2: हाँ,
1: सुनील पाल की अपनी शैली, एहसान भाई की वो जो खींच कर बोलने की शैली
2: जी,
1: है ना, जो वो कहाँ के एहसान भाई,
2: वो मध्य प्रदेश के हैं,
1: सिवनी के
2: हैं।
1: तो वो अपनी शैली लेके आए।
2: जी हाँ।
1: आपकी अपनी शैली।
2: जी बिल्कुल।
1: तो अपनी पहचान बनाने के लिए और इन दिग्गज लोगों से मुकाबला करने के लिए कितना जिगरा चाहिए था?
2: नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। और हम कुछ मुकाबले के लिए या उसके लिए तैयार नहीं थे। हम तो ये था कि हमें जो आता है वो हमको करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अब जो सुनने वाले हैं, जो निर्णय करने वाले हैं, वो देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम तो सब अपना अपना फन लेकर आए थे, और ना तो हम किसी सामने वाले को देखकर अपना कोई अस्त्र शस्त्र बदल सकते थे
1: जी,
2: क्योंकि था ही उतना।
1: बिल्कुल।
2: कोई एक्स्ट्रा कुछ था नहीं कि यार इन्होंने ये सुनाया तो अब मैं ये सुना दूंगा। हमारे पास अपना था, हमको ये सुनाना है।
1: क्या बात है।
2: अब ये अच्छी बात है कि जो सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, जज हैं, उनको पसंद आ गया।
1: लेकिन एक मजेदार बात मुझे समझ आ रही है कि ये लाफ्टर चैलेंज सीजन वन एपिसोड वन आप परफॉर्म कर रहे हो, कितना दबाव था और क्या परफॉर्म किया था आपने
2: वहां पर? ऐसा था कि कुछ फिक्स तो था नहीं। उन्होंने कहा कि आप क्या क्या सुनाते हैं सुनाइए। तो हमने अपना सुनाया, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा।
1: अच्छा।
2: तो उन्होंने उसमें किया कि ये रख लीजिए आप।
1: वाह।
2: और ये आपको एक एपिसोड में चार अलग अलग दौर होंगे, पहला, हाँ, दूसरा, तीसरा। तो पहले दौर में ये सुनाइए, दूसरे दौर में ये सुनाइए, फाइनल में ये सुनाइए।
1: करेक्ट है।
2: तो पहले दौर में उन्होंने जो था हमारा ही माल पूरा, बस उन्होंने सिलेक्ट किया कि ये सुनाइए, और वो हमने सुनाया और वो पसंद आया लोगों को।
1: क्या था वो?
2: वो उस समय वो बात हो गई 20 वर्ष पुरानी, 2005 में आया था ये। तो पहले एपिसोड में मैंने जो सुनाया था वो कुछ लोगों की फिजिकल बॉडी के ऊपर था वो, कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, दुबले पतले मोटे अलग अलग तरह के लोग, तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उनको फायदे होते हैं। तो एक बहुत मोटा आदमी जूते की दुकान में गया, और जूते वाला उसके सामने जूते रखते जा रहा, उसको क्या पेट इतना बड़ा था कि नीचे पैर दिखते नहीं थे उसको, तो वो ऐसे पैर करता था और बोलता था ये बन नहीं रहे, ये भी ठीक नहीं है, ये नहीं बन रहे। दुकान वाला परेशान, पसीना पोछड़ा, जूते का ढेर लगा हुआ है, बोल रहा कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। अचानक वो बोला यार ये एकदम सही है, ये एकदम फिक्स आ रहा, ये कितने का है? दुकान वाला बोला ध्यान से नीचे देख, वो जूता नहीं है, जूता रखने का डब्बा है जिसमें पैर फंसा गया।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: तो इस तरह का मैंने कुछ सुनाया था कि मैं एक कार्यक्रम से आ रहा था,
1: हाँ।
2: ट्रेन से आ रहा था, मेरी स्टेशन आने के चार स्टेशन पहले एक बहुत मोटी सी बहन जी मेरे पास आ गई और बोली भाई साहब मुझे अगले स्टेशन पे उतार दोगे? तो मैंने कहा क्यों बहन जी, आपसे क्या उतरते नहीं बनता? बोले ये बात नहीं है भाई साहब, दरअसल मैं बहुत मोटी हूं तो मुझे सामने नीचे का दिखता ही नहीं है, तो मैं सीधे उतर नहीं पाती हूं, तो मैं ऐसे घूम के उतरती हूं तो लोग समझते हैं मैं चढ़ रही हूं, धक्का देके ऊपर कर देते हैं। मैं चार स्टेशन से ट्राई कर रही हूं उतरने का, अभी तक नहीं उतर पाई।
1: कहां से सोचते हैं आप?
2: तो इस तरह का कुछ मैंने सुनाया था वहां पर।
1: अच्छा। लेकिन लगातार जब मामला आगे बढ़ता चला गया तो जाहिर है कि मुकाबला भी सख्त हुआ, और जो अपने कमान के तीर हैं वो तो खर्च होते जा रहे थे।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो फिर कैसे सस्टेन किया?
2: देखिए एक फसल कटती है तो दूसरी
1: तो आ जाती है।
2: तो वही चल रहा था कि जो पुराना था वो भेज दिया, अब कुछ नया बनाइए।
1: हाँ।
2: और जो नया बनाते हैं, नया क्रिएशन करते हैं, वही मार्केट में चल पाते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: एक निश्चित मात्रा में कोई लेकर अगर चल रहा है तो वो तो एक दिन खर्च हो जाएगा, फिर वो आदमी क्या करेगा।
1: बिल्कुल।
2: तो हम हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते हैं।
1: देखिए इतने साल हो गए, कितना आपने गिना? 20 साल,
2: 20 वर्ष हो गए।
1: 20 वर्ष में तो कितनी फसल उगा देनी पड़ी होगी?
2: बहुत सारी। अब आपने याद दिलाया तो मैं याद कर रहा हूँ 20 साल पहले क्या सुनाया था। ये हम स्टेज पर सुनाते ही नहीं है आजकल, कुछ और ही सुनाते हैं, कुछ और चलते रहता है,
1: क्योंकि सब बदल गया है,
2: सब जमाना बदल रहा है पूरा।
1: उस वक्त जो कंटेस्टेंट थे उनके साथ किस तरह के रिश्ते थे, क्योंकि मुकाबला भी तो हो रहा था?
2: जी बिल्कुल, कलाकारों का आपस में कोई मुकाबला नहीं था, सब आपस में एंजॉय करते थे।
1: तो बैक स्टेज क्या चलता रहता था? इतने सारे कॉमेडियन एक साथ अलग अलग इलाकों के जुड़ रहे हैं,
2: बहुत मजे करते थे। मतलब जो वहां नहीं होता था,
1: हाँ,
2: उसकी बातें चलती थी
1: अच्छा,
2: और उसको लेकर कॉमेडी की जाती थी। और चूंकि मिमिक्री आर्टिस्ट थे तो साथ वालों की कलाकारों की मिमिक्री की जाती थी।
1: हाँ,
2: तो बहुत मजेदार होता था।
1: एक दूसरे की भी करते थे?
2: एक दूसरे की
1: जैसे
2: भी करते थे। वो बुरा मानेंगे अगर सुनेंगे तो, हमारे
1: मानेंगे।
2: आप नायकर साहब को सुनते हैं?
1: अरे नायकर साहब हमारे शहर के हैं।
2: तो वो जब बात करते थे बोलते थे,
4: अरे दहिया ये देखो भैया, हमारा तो ऐसा है कि हम जो हैं तो कभी ये भीड़ भाड़ के चक्कर में पड़ते नहीं हैं। हम अपना जबलपुर में रहते हैं, वहीं से प्रोग्राम करते हैं, बम्बई आते हैं, अपना प्रोग्राम किए और भैया चले गए जबलपुर। ये भीड़ भाड़ का चक्कर अपने को नहीं जमता।
1: बिल्कुल यही स्टाइल है उनकी। और वो जो चेहरे के निष्प्रिय भाव।
2: जी जी। तो ऐसे हम लोग एक दूसरे का भी करते थे।
1: अरे वाह, क्या बात है। एक कॉमेडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैनी नजर रखना और दुनिया की धड़कनों को पहचानते रहना। इन दिनों आप कौन कौन से आइटम्स कर रहे हैं और उनमें से कुछ हमारे लिए पेश कीजिए।
2: जरूर। इस समय मैंने जो अपना एक कार्यक्रम बनाया है जो हाँ। खास तौर से बहुत पसंद भी किया जा रहा है।
1: हाँ।
2: मैं स्कूल में जो बच्चे हैं
1: हाँ।
2: और जो परीक्षा को लेकर उनके मन में एक डर होता है और कम परसेंट ना जाएं, बहुत दबाव होता है बच्चों
1: बहुत ज्यादा
2: और कई बार अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं, तो उनको लेकर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। वो मुझे उसमें स्कूल वाले और कॉलेज वाले अपने स्कूलों में बुलाते हैं और मैं अपनी बातों से बच्चों को हंसाते हुए हल्का फुल्का मनोरंजन करते हुए उनको उस फियर से बाहर करता हूँ।
1: अरे गजब।
2: और उनको ये समझाता हूँ कि जिंदगी में पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन सबसे जरूरी कोई अगर चीज है तो वो है आपकी जिंदगी।
1: वाह वाह वाह।
2: आपका जो जीवन है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है।
1: कितनी प्यारी बात है।
2: तो ये कॉन्सेप्ट लेकर मैं चल रहा हूं और इसको लेकर मैं बच्चों के बीच में कॉमेडी भी करता हूं, उनके स्कूल की बातें करता हूं, फिर अपने स्कूल की बातें उनको बताता हूं, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमारे टीचर क्या करते थे, आज के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके टीचर आपको क्या दे रहे हैं और आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और ये सब बताते हुए मैं उनको बताता हूँ। तो वो बच्चों को बड़ा मोटिवेट होते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर मेरी बातें सुनकर बच्चे थोड़ा भी सीख जाएं या एक दो बच्चे भी सुधर जाएं, वो ना करें जो वो कर लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि मैं अपने मिशन में सफल हो गया हूं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। लाफ्टर चैलेंज में शामिल होने के बाद जाहिर है कि अपना शहर छूट गया।
2: जी।
1: है ना, और आप मुंबई के हो गए।
2: जी।
1: जिंदगी कितनी बदल गई?
2: जिंदगी बदली तो है लेकिन बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जो बदलता है वही सर्वाइव करता है, आगे जाता है। थमा हुआ पानी तो एक दिन दुर्गंध मारने लगता है, जो बहता है वो साफ निर्मल होता जाता है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां रही होंगी, वो पीछे छूटती जा रही हैं और अच्छा साफ होके उजले होते आगे बढ़ते जा रहे हैं।
1: क्या बात है। एक के बाद एक लगातार आपने बहुत सारे टेलीविजन पर काम किए और उसके जरिए आपकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती चली गई। सबसे ज्यादा एंजॉय किस प्रोग्राम में किया आपने?
2: देखिए काम तो बहुत सारा किया लेकिन जो शुरुआत कहते हैं ना, जब शुरू होता है वो आनंद एक अलग ही होता है। वो जो लाफ्टर चैलेंज किया था हम लोग, उसके बाद तो फिर क्या, वो पहली बार था। पहली बार हवाई जहाज में बैठना, पहली बार फाइव स्टार होटल में बैठना, पहली बार कैमरे के सामने किसी बड़े मंच पर सामने सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो वो जो अनुभव था वो अद्भुत था। उसके बाद तो फिर वो एक आदत में आ गया कि भाई अब कोई और दूसरा सेलिब्रिटी आएगा, अब कोई दूसरा मंच होगा।
1: हाँ।
2: लेकिन जो पहला मंच था उसका अपना एक अलग मजा था।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी किस तरह की रिएक्शंस होती हैं आपके करियर को लेके? और क्योंकि जाहिर है कि जब आप अपने मध्य प्रदेश में परफॉर्म कर रहे थे तो उनकी एक चिंता आपके करियर को लेकर रही
2: जी। पहले तो ऐसा था कि पहले उनको स्टार्टिंग में डर लगता था कि ये क्या कर रहा है, हमारे पूरे खानदान में आसपास दूर दूर तक कोई कलाकार नहीं,
1: परफॉर्मर नहीं था।
2: और अगर वहाँ छोटी जगह में जो कलाकार होते भी हैं तो पार्ट टाइम में कलाकारी करते हैं, बाकी या तो कहीं नौकरी कर रहे होते हैं या कोई दुकानदारी कर रहे होते हैं। क्योंकि कलाकारी करके कोई अपना घर चला लेगा, जीवन चला लेगा, ये वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो यही कहते थे कि बेटा ये क्या चल रहा है तुम्हारा। तो हम बोलते थे कि अभी स्कूल चल रहा है, पढ़ रहे हैं, आगे चल के नौकरी करेंगे, काम करेंगे, ये शौक है हमारा। लेकिन जब उससे पैसे मिलने लगे, अखबारों में फोटो छपने लगी और पैसे आने लगे तो उनको लगा कुछ तो अच्छा कर रहा है।
1: जब टेलीविजन पर आपको देखा मम्मी पापा ने
2: जी,
1: तो वो कैसा मोमेंट था?
2: वो तो अद्भुत था। वो बड़ी मजेदार घटना है। मेरे पिताजी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, बिजली विभाग में लाइनमैन की पोस्ट पर थे वो।
1: जी जी।
2: तो बड़े अधिकारी ऊपर होते हैं साहब, बड़े बड़े, और काम बताते हैं, मिस्टर दाहिया यहाँ, मिस्टर दाहिया वहां जाओ, मिस्टर दाहिया। बाबूजी बोले, एक दिन मेरे कान में एक आवाज आई, दाहिया साहब। तो बोले, यार साहब मुझे दाहिया साहब क्यों बोल रहे हैं? तो बोले, जी सर, दाहिया साहब ये उदय दाहिया कौन है? तो बोले, साहब मेरा लड़का है दूसरे नंबर का। अरे बोले, उनको कभी आते हैं यहाँ? बोले, हाँ आते हैं। बोले, आए तो एक बार घर भेज देना, हमारे बच्चे मिलना चाहते हैं।
1: अरे गजब गजब।
2: तो वो मूमेंट इतना अच्छा था कि पिताजी ने बताया, बोले बेटा तुम्हारे कारण आज मेरे साहब ने मुझे साहब कहा।
1: कितनी प्यारी बात है, मतलब उन्हें कितना अच्छा लगा होगा,
2: बहुत अच्छा लगा
1: कि बेटे ने कोई तो उपलब्धि हासिल की है।
2: जी जी।
1: अब तो ये ट्रैवल करना, परफॉर्म करना एक रूटीन बन गया है, लेकिन अपने काम में नवीनता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं आप?
2: मैं देखो आपको बताऊं, मैं एक तो पढ़ने का बड़ा शौकीन हूं।
1: हाँ हाँ।
2: और मैं चूंकि एक हास्य अभिनेता हूं, तो मैं व्यंग बहुत पढ़ता हूँ। मैंने परसाई जी को खूब पढ़ा हुआ है।
1: क्या बात है।
2: उनका पूरा जितना भी साहित्य है 6 खंड में, वो मेरे पास है।
1: हाँ।
2: शरद जोशी जी हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यंगकार हैं उनकी किताबें मेरे पास हैं, उनको सबको मैं पढ़ता हूँ। और एक बड़ी अच्छी चीज ईश्वर ने मुझे दी है कि मैं जो पढ़ता हूँ या जो देखता हूँ वो मुझे याद हो जाता है और बरसों बरस तक याद रहता है।
1: वाह वाह वाह।
2: तो मैं जो भी पढ़ता हूँ वो याद रहता है, और कभी कभी मौका आने पर मैं उनको मंच पे सुना भी देता हूँ, जैसा मौका आ जाए।
1: क्या बात है।
2: तो वो बाद में नाम भी बोलता हूँ उनका कि इनकी रचना है ये।
1: हाँ हाँ।
2: क्योंकि वो उनका अधिकार है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ,
1: जरूर,
2: ये परसाई जी की। मैं उनकी रचनाएं घंटों सुना सकता हूँ, इतनी याद है मुझे।
1: वाह वाह।
2: एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ।
1: जरूर।
2: लोग कुत्ते पालने के बड़े शौकीन होते हैं, और आजकल बड़ा मीडिया में छाया भी है, हमारे यहाँ से कोर्ट से भी निर्देश होते हैं, डॉग के ऊपर बड़े केसेस होते रहते हैं। लोग कुत्ते पालते हैं, अलग अलग तरह के कुत्ते पालते हैं, क्या शौकीन लोग होते हैं। एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर यहां से निकला, दूसरा आदमी कॉलोनी के उस तरफ से निकला, ये दोनों आमने सामने से निकल रहे थे, क्रॉस हो रहे थे, अचानक इस आदमी के कुत्ते ने उस आदमी के कुत्ते को भौंक दिया।
1: याद आ गई मुझे ये रचना।
2: तो वो साहब बोले, बताओ कैसा कुत्ता है? मैनर्स लेस कुत्ता है। मैनर्स ही नहीं है, बताओ भौंक रहा है, भौंका जाता है क्या? तो ये साहब बोले, मैनर्स लेस किसको बोला? हाँ, मेरा कुत्ता बहुत अच्छी नस्ल का है, एक नंबर का कुत्ता है, और ये जो तुम बोल रहे हो ना नस्ली कुत्ता, तुम्हारा होगा ऐसा रोड छाप। हमारा नस्ली कुत्ता? बोले, रोड छाप हमारा नहीं है, रोड छाप आपका कुत्ता है। अगर हमारा कुत्ता रोड छाप होता तो भौंकता, आपका कुत्ता भौंका है, आपका कुत्ता रोड छाप है। बोले, मैं आपको जानता हूं बहुत अच्छे से, आपका कुत्ता भी रोड छाप है और आप भी रोड छाप हो, पिछले साल ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़े गए थे। हाँ, तो बोले, आपको भी मैं जानता हूं, उसके एक साल पहले आप भी थाने गए थे। किसी ने पूछा, क्या हो गया? बोले, कुछ नहीं, कुत्तों की लड़ाई हो रही है।
1: क्या बात है। परसाई जी की जो निगाह है वो बहुत तेज, और वो जो समाज पर जो चिकोटी काटते हैं वो बहुत तेज होती है।
2: जी,
1: बहुत तीखी होती है।
2: जी,
1: तो देखिए कितने सुंदर तरीके से आपने पेश किया। इतनी सारी बातें हो रही हैं, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म कर दें आप हमारे लिए, लोग इंतजार कर रहे होंगे।
2: जी जरूर जरूर। मैं आपको अपनी एक रचना सुनाता हूँ जिसको सुनाकर स्टार टीवी पे मेरा चयन हुआ था।
1: अच्छा।
2: इसको सुनने के बाद उस टीम ने कहा था कि एक ऐसी कॉमेडी है जिसे बोलकर सुनाना बहुत कठिन है, इसको पिक्चराइज तो किया जा सकता है लेकिन कोई बोल के बताए और वो पिक्चर सामने बन जाए, ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं।
1: ओके।
2: तो ये एक कहानी है कि भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है, तो इसलिए दिया है ताकि वो किसी काम को करे तो वो काम को अच्छे से कर ले, मुसीबत में ना फंसे, और थोड़ा जल्दी कर ले दिमाग लगा के। लेकिन इंसान की आदत है कि उसके पास दिमाग है तो ज्यादा चलाता है उसको, और जब ज्यादा दिमाग चलाता है तो किस मुसीबत में फंसता है वो। तो एक आदमी को डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर ने देखा उस आदमी का सर फूटा है, दांत टूटे हैं, पसलियां टूटी हैं, हाथ टूटे, कमर टूटी, पैर भी टूटे हैं। तो डॉक्टर ने पूछा, यार एक चीज बताओ, आदमी का एक्सीडेंट होता है तो वो एक दो जगह से टूटता है, तुम ये ऊपर से नीचे तक कैसे टूट गए? तो उसने क्या बताया, बोले, डॉक्टर साहब ये सब होशियारी के चक्कर में हुआ है। बोले, कैसे? बोले, डॉक्टर साहब क्या हुआ कि एक 10 मंजिल ऊंची बिल्डिंग में सबसे ऊपर काम चल रहा था, शाम के टाइम ठेकेदार आया और बोला, ये जितनी ईंट रखी हैं ये पूरी ले जाकर नीचे रख के आओ, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। तो मैंने मन में सोचा कि अगर एक एक दो दो करके ये नीचे ले जाऊंगा ईंटों को तो मेरा तो सवेरा यहीं हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, मैं होशियार आदमी हूं, मैंने दिमाग लगाया, वहां एक ऐसी गर्री लगी थी ऊपर, उस पे मैं ऐसे सामान खींच खींच के ऊपर लाते थे हम, तो मैंने एक अच्छी लंबी रस्सी उठाई और वो घिर्री में यूं फंसाया तो उसके दोनों छोर चले गए नीचे। अब डॉक्टर साहब मैं नीचे उतर के आया, मैंने उसके एक छोर पे खाली ड्रम बांध दिया, खाली ड्रम 15 किलो का और मेरा वजन 50 किलो का, और मैंने दूसरे छोर को खींच खींच के ड्रम पहुंचा दिया ऊपर। अब दूसरे छोर को मैंने खंबे से बांध दिया। अब मैं ऊपर चढ़ के आया डॉक्टर साहब, और मैंने सारी ईंट उठा के वो ड्रम में डाल दी। अब ड्रम हो गया 400 किलो का और मेरा वजन तो 50, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मैं नीचे उतर के आया डॉक्टर साहब, और मैंने मन में सोचा कि खंबे से रस्सी खोल के और धीरे धीरे छोड़ता जाऊंगा तो ड्रम नीचे आता जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये भूल गया कि ड्रम 400 किलो का और मैं 50 किलो का हूं। तो जैसे ही मैंने खंबे से रस्सी खोली डॉक्टर साहब, सट से मेरे दोनों पैर जमीन से उठे, मैं सरसराता ऊपर जा रहा, ड्रम सरसराता नीचे आ रहा, सरसराते चले जा रहे। और जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचा तो ड्रम आके मेरी खोपड़ी में लगा, खोपड़ी फूट गई। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़ना, अपन बहुत होशियार आदमी है। 5वीं मंजिल पे आ गए, यहां से अगर रस्सी छोड़ेंगे तो खोपड़ी फूट चुकी, नीचे गिरेंगे, हाथ पैर सब टूट जाएंगे। तो मैं रस्सी जोर से पकड़ा रहा डॉक्टर साहब, अब मैं सरसराता ऊपर जाऊं, ड्रम सरसराता नीचे जाए, सरसराते चले जा रहे। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मेरे दोनों हाथ वो गर्री में चले गए, तो दोनों हाथ टूट गए।
1: लो भैया,
2: मैंने कहा खोपड़ी पहले ही फूट चुकी, हाथ इसमें टूट गए, अगर यहां से रस्सी छोड़ दी तो नीचे गिरूंगा तो साफ ही हो जाऊंगा। तो मैं जोर से रस्सी पकड़ रहा डॉक्टर साहब। अब हुआ क्या कि जैसे ही ड्रम जमीन पर गिरा तो वो

0: और जैसे ही रस्सी छूटी तो 15 किलो का ड्रम 10वीं मंजिल से सरसराते आया और आकर मेरे ऊपर गिरा, पसलियां टूट गई, दांत टूट गए। अपन बहुत होशियार आदमी।
1: क्या बात है, ये तो विडंबनाओं का जो आपने दृश्य खींचा है वो बहुत ही कमाल है।
0: जी जी।
1: तो इस तरह से आप जो है कहानियां सुनाते हैं, अपने जीवन की सबसे यादगार घटना, सबसे यादगार शो हमें बताएं।
0: शो तो यादगार बहुत सारे हुए हैं, कई जगह गए हैं, अलग अलग तरह के मंच मिलते हैं। कभी कोई आध्यात्म का मंच होता है, कभी कोई राजनीतिक मंच होता है, कभी कोई फिल्मी सितारों का मंच होता है। तो हम जहाँ जाते हैं लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि वहाँ से रिलेटेड कोई बात करें। तो एक बार मैं प्रोग्राम करने गया था ब्रह्म कुमारी माउंट आबू, तो दादी ने मुझे बुलवाया और कहा, उस समय तक कुछ वैसे कॉमेडियन आ गए थे जो आजकल बहुत छाए हुए हैं, जो थोड़े से बिलो द बेल्ट बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये आध्यात्म का मंच है और आप लोग कॉमेडी वाले हैं तो थोड़ा सा मंच की गरिमा बनाए रखिए। तो मैंने कहा जी दादी। अगले दिन जब मैं मंच पे आया तो मैंने प्रोग्राम किया ही नहीं, मैंने पहले एक छोटा सा प्रवचन सुनाया।
1: अरे गजब।
0: 1-1.5 मिनट की बात थी। वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि अब इस लड़के को जो करता है करने देना, ये बहुत अच्छा करने वाला है।
1: वाह वाह वाह।
0: वो चूंकि शिव बाबा को मानते हैं, तो मैंने जाके शुरू ही ऐसे किया कि शिव बाबा ने ही सब कुछ बनाया है, जितने भी रस हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, सारे रस बाबा ने ही बनाए हैं। और जब जब शिव बाबा ने कोई रस बनाया तो उसके साथ एक कैरेक्टर बनाया। जब श्रृंगार रस बनाया तो रति और कामदेव को बनाया। जब वो हमारे हृदय में आघात करते हैं तो प्रेम जागता है। ऐसे अलग अलग रस बनते गए, एक एक कैरेक्टर आते गए। फिर उन्होंने हास्य रस बनाया, तो हास्य रस के साथ उन्होंने भगवान श्री गणेश की रचना की। उदाहरण के तौर पर हम जब आरती गाते हैं तो गणेश जी की आरती में एक लाइन आती है, पग खंबासा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे, दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे।
1: वाह।
0: जब चंद्रदेव ने पहली बार गणपति जी को देखा तो उनका बड़ा सा पेट, खंबे जैसे बड़े बड़े कान, तो उनको उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, थोड़ा सा हंस दिए। लेकिन अगली लाइन में कहा है, दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे। गणेश जी को गुस्सा आ गया कि मुझे देख के कोई हंसेगा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, सारी कलाओं से विमुक्त करता हूँ। तब ये बात आई कि देवता हास्य के लिए नहीं होते, देवता पूजनीय होते हैं।
1: वाह वाह।
0: उस दिन के बाद गणेश जी को देखकर कोई नहीं हंसा, वो प्रथम पूज्य बन गए। लेकिन भगवान शंकर जी ने ये रस तो बना ही दिया था, तो इसको बिखेरने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तब भगवान श्री गणेश ने हम जैसे गणों की उत्पत्ति की और अब हमारी रचना करके हमको आदेश दिया कि जाओ और इस संसार में मेरे बनाए हुए हास्य रस को बिखेर दो।
1: वाह।
0: तो उनके आदेश से मैं मंच पे आपके सामने खड़ा हूँ और अब मैं यहाँ से उनके हास्य रस को बिखेरूंगा।
1: क्या बात है।
0: तो ये बात जब मैंने वहां कही तो बड़े खुश हो गए वो दादी माँ, और बोली ये लड़का जो है ये जो कॉमेडी सुनाता है इसको सुनाने देना।
1: वाह वाह वाह वाह। मतलब प्रॉपर मंच की गरिमा का आपने पालन किया।
0: जी बिल्कुल।
1: उदय जी, इतनी सुंदर बात आपने कही कि कॉमेडी के मंच पर गरिमा कायम रखनी कितनी जरूरी है। ब्रह्म कुमारी जब आप गए और वहां परफॉर्म किया, आज जो कॉमेडी मंचों की हालत है, और दोनों तरह की कॉमेडी हो रही है, एक वो जो बहुत शालीन है और एक वो जिसमें शालीनता के तत्व कम है, तो क्या राय है आपकी?
0: देखिए, हर दौर में एक दर्शक वर्ग रहा है। अच्छी फिल्में, अच्छी कहानियां, अच्छे सीरियल पहले भी थे, बुरी कहानियां, बुरे सीरियल, बुरे दृश्य एडल्ट फिल्में पहले भी थी। सब जगह एक दर्शक वर्ग होता है। इनका भी एक दर्शक वर्ग है, वो इनको सुन रहा है, देख रहा है। लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा कभी चलता नहीं है। एक जमाना था जब बड़ी खराब सी किताबें पढ़ने की रेलवे स्टेशनों के आसपास खूब बिकती थी, आज वो कहीं दिखाई नहीं देती है। ये इस तरह की जो चीजें होती हैं ये कुछ समय के लिए होती हैं, इनकी उम्र लंबी नहीं होती है। ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय तो होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जहन से बाहर भी बहुत जल्दी होती है। लेकिन जो अच्छा साहित्य, अच्छी फिल्में, अच्छा सामाजिक चीज़ें होती हैं, इनकी उम्र बहुत लंबी होती है, चलती रहती हैं। अब नायकर साहब को देखिए ना, हमारे मध्य प्रदेश के जो हैं, वो पिछले 60-65 सालों से मंचों पे हैं और आज भी हैं वो।
1: बिल्कुल।
0: आज वो 80+ की एज में है
1: जी,
0: और अभी भी वो मंचों पर 2-2.5 घंटे 3-3 घंटे परफॉर्म कर लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और जो आज के नए कॉमेडियन जिस तरह से कर रहे हैं, पहली चीज तो मैं उनको कॉमेडियन नहीं मानता हूँ। और उनका एक दर्शक वर्ग है, वो कभी किसी के घर के शादी विवाह के कार्यक्रम में, किसी सामाजिक संस्था में जहाँ बहुत भीड़ हो, वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते। वो ऐसे 25-50-20 लोग बैठ गए सामने और उनको किस्सा गोई जैसा सुनाते हैं, तो वो अलग तरह का है।

0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो पूरी यात्रा है उसमें एक पक्ष जो है बहुत बड़ा वो अभिनय की दुनिया का है
1: जी।
0: ये कहाँ से शुरुआत होती है और इसमें कितना एंजॉय किया है आपने अभिनय की अपनी यात्रा में?
1: इसमें मैंने बहुत एंजॉय किया है और अभिनय करना तो मैं चाहता था शुरू से, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ना तो सुविधाएं थी, ना साधन थे, ना तो घर से इतने संपन्न थे कि घर से पैसे लेकर आ जाएं, ना मुंबई शहर में कोई रिश्तेदार था जिसकी सहारा हो कि इनके पास चले जाएं। तो हमारे लिए सपना ही था, लेकिन कहते हैं कि सपना अगर अच्छे से देखो तो वो भी पूरा हो जाता है। और जो एक 15-16 साल की उम्र का सपना होता है ना, वो पूरा जरूर होता है।
0: क्या बात है।
1: वो जो उम्र होती है 10वीं 11वीं जब पढ़ रहे होते हैं, उस समय सपने में ज़्यादातर हमें अपने क्लास की कोई खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो उम्र ऐसी होती है ज़्यादातर लड़कों को, यही होता है, एक वो फिलॉसफी है, उम्र ऐसी होती है। मुझे उस समय सपने में दिखाई देता था कि एक मंच है और सामने सेलिब्रिटीज़ बैठे हुए हैं, मैं मुंबई में खड़ा हूँ और मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ।
0: वाह वाह वाह,
1: ये सपना मैं 15-16 साल की उम्र में देखता था
0: और वो पूरा हुआ।
1: इसलिए वो पूरा हुआ कि उस उम्र में जो सपना देखा जाता है वो पूरा होता है। मेरे साथ के लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड का सपना देखा तो उसके साथ शादी करके अपने शहर में रह रहे हैं, उनका सपना ही पूरा हुआ है। मेरा अपना पूरा हुआ है।
0: जी जी
1: जी, सबका अपना अपना प्यार था, मेरा प्यार मंच था तो मुझे मंच मिल गया।
0: बिल्कुल। और बाद में एक्टिंग की दुनिया में चले आए और आपकी अपनी एक अलग पहचान एक्टिंग को लेकर बनी।
1: जी, मैंने कुछ सीरियल किए, मैंने लापतागंज किया है।
0: लापतागंज तो जैसे आपके साथ जुड़ गया है।
1: जी जी, लापतागंज किया मैंने, उसमें एक कॉमन मैन का कैरेक्टर किया जिसमें एक ही एपिसोड में मैंने 5 तरह के कैरेक्टर किए, अलग अलग तरह के। फिर मैंने दूरदर्शन पे एक राशि विला सीरियल आता है वो किया, उसमें मैं लीड कैरेक्टर में था। उसमें उपासना सिंह हमारी बहन बनी थी, राजू खैर हमारे पिताजी बने थे, हेमंत पांडे हमारे बड़े भाई बने थे। ऐसे अलग अलग और भी बहुत से सीरियल किए, कुछ फिल्में की मैंने। एक मैंने ऐसी फिल्म की है जिसका नाम है कड़के कमाल के।
0: वाह वाह वाह।
1: और ये फिल्म है, इसमें नेपाल और हिंदुस्तान दोनों जगह की फिल्मों के कलाकारों ने मिलकर एक फिल्म की है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो हीरो हीरोइन नेपाल के हैं, आर्यन अधिकारी और नीता धुमाना, ये वहां के बड़े स्टार हैं नेपाल के।
0: जी जी।
1: और कुछ एक्टर वहां के थे और कुछ हमारे यहाँ के। तो उसमें राजपाल यादव हैं, दयाशंकर पांडे हैं, मैं हूँ, मुश्ताक खान है, ऐसे अच्छे कलाकार हैं उसमें काफी। तो वो फिल्म मैंने की है। कुछ और भी फिल्में की हैं मैंने। एक फिल्म मैंने की है लव की अरेंज मैरिज, ये विनोद भानुशाली प्रोडक्शन की फिल्म है
0: जी।
1: और इसमें मैं राजपाल यादव और अन्नू कपूर जी का दोस्त बना हूँ।
0: वाह वाह वाह।
1: तो ऐसे कुछ फिल्में की हैं मैंने।
0: कितना डिफरेंट है मंच पर परफॉर्म करना और एक्टिंग करना?
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। क्योंकि सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि मंच पे हम करते हैं एकल अभिनय, उसमें हमें किसी का आपको क्लू नहीं चाहिए होता है, खुद ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले का डायलॉग कब खत्म हो रहा है, उसका डायलॉग किस रेंज पे था, उसने किस टोन में बोला है, वो किस सुर में था, उसके सुर से अपने सुर को मिलाना होता है। वो अगर गुस्से में है, किस भाव में है, तो हमको भी उसी हिसाब से बात करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अभिनय बहुत डिफरेंट चीज है।
0: बिल्कुल। तो अभी अभिनय और कॉमेडी दोनों तरह की चीजें लगातार चल रही हैं।
1: जी, जी।
0: इतनी देर से हम बात करें, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म करें आप हमारे लिए।
1: जी बिल्कुल। मैं अभी जो बच्चों को लेकर कुछ सुनाता हूँ
0: तो
1: उसके ऊपर से मैं सुनाता हूँ कि आज के बच्चे क्या तेज दिमाग के बच्चे हैं। हम लोग तो कैसे थे, हमें तो पता ही नहीं होता था। अगर कोई कुछ बात करता था, घर में कोई आ जाए तो मेहमान के सामने बोलने में थोड़ा सा संकोच करते थे, डरते थे। बोलने से पहले सोचते थे कि हमारे बोलने के बाद हमारे पापा जी का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन आज के बच्चे एकदम बिंदास हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मेरे से बात कर रहा था, तो उससे पूछा मैंने कहा, बेटा एक चीज़ बताओ, जब ये कॉर्न तवे पर फूटकर पॉपकॉर्न बनता है गर्म तवे पर, तो ये उछलता क्यों है? तो बोलता, अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा। तो आज के बच्चे इतने हाजिर जवाब हैं, ऐसी बातें हैं उनकी कि जो उनका जवाब होता है वो हमारी समझ से बाहर होता है।
0: जी बिल्कुल, क्या बात है। तो ये जो पूरा परिदृश्य जहां अब चारों तरफ कॉमेडी है, लोग पॉडकास्ट में भी कॉमेडी कर रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, टेलीविजन पर कंटेंट है, ओटीटी पर कंटेंट है, तो क्या एक कॉमेडियन के तौर पर आपकी चुनौतियां बढ़ गई हैं?
1: हाँ, बढ़ तो गई हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि पहले अगर एक आधा घंटे का कंटेंट किसी के पास होता था तो बरसों बरस उसको सुनाते रहता था। एक शहर में सुनाया, कल जाके दूसरे शहर में वही सुना दिया, परसों तीसरे शहर में। आज हमारे साथ ये कि यहाँ हम कुछ सुनाते हैं और वो वीडियो बन जाते हैं और वो रातों रात वायरल हो जाते हैं सब जगह. तो जब हम अगले शहर में पहुंचते हैं तो उनके पास हमारा कंटेंट पहले से पहुंचा हुआ होता है. तो वहां जाके हमें कुछ नया सुनाना होता है,
0: हर बार कुछ
1: तो नया, हमेशा कुछ नया करते रहना
0: पर पुरानी चीजों की जो लोकप्रिय हो चुकी है उनकी फरमाइशें भी आती हैं.
1: हाँ, फरमाइश तो आती है, ये है, ये भी एक फायदा है कि लोगों का एक मनोविज्ञान है कि वो वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने आपसे पहले सुना हुआ है.
0: आपके लिए किस तरह की फरमाइशें आती हैं?
1: मैं अगर मध्य प्रदेश में हूं तो वहां की बुंदेली भाषा के लोग चाहते हैं कि मैं उनको कुछ सुना दूं, और अगर मैं यहां हूं तो मेरा अपना जो स्टाइल है लोग चाहते हैं कि वो सुनाएं.
0: तो हम भी चाहते हैं आप बुंदेली में सुना दें.
1: हाँ, क्योंकि हमारा ये रेडियो तो पूरे बुंदेलखंड, पूरी दुनिया में जाता है, तो बुंदेलखंड के लोग भी सुनते हैं इसको. तो बुंदेली में वहाँ के लोगों की एक बड़ी विशेषता होती है, वो जब बात करते हैं तो बड़ा तेज दिमाग होता है और कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जो वहाँ के लोग ही समझ पाते हैं. भाषा का बात है वो. जैसे एक इंटरव्यू था और एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरी करे. अब एक आदमी गया, बोले मे आई कम इन सर? अरे बोले तुम अंदर आने में इतनी बात कर रहे हो, काम क्या करोगे, जाओ यहाँ से. तो दूसरा गया, उसने हिंदी में बोला, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बोले आप तो उनसे भी ज्यादा बात कर रहे हो, यहाँ उस आदमी की जरूरत है जो कम बात करे. अब ये हमारे यहाँ का था, बुंदेलखंड का, उसने दोनों को बुलाया. बोले क्या पूछा? अरे बोले मैंने अंग्रेजी में बोला, मुझे अंदर नहीं आने दिया. बोले मैंने हिंदी में बोला शुद्ध, मुझे भी नहीं आने दिया. अब बोले देखो मैं जा रहा हूँ. ये गए, इन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा ऐसा धक्का मारा, सर अंदर किया और बोले काय आए.
0: बोले आ जाओ, दो ही शब्दों में निपटा दिया.
1: दो शब्दों में निपटा दिया. तो बोले आ जाओ, तुम्हारी जरूरत थी.
0: क्या बात है,
1: तो
0: क्या
1: ऐसे
0: बात है?
1: लोकल की भाषा के
0: बुंदेलखंड की स्पिरिट को आपने बिल्कुल पकड़ा है.
1: जी जी जी,
0: है ना. और कुछ बुंदेली में?
1: अब बुंदेली का मेरा एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जो वहां पर लोग बहुत सुनते हैं और बहुत वायरल है.
0: जी,
1: थोड़ा सा 2-2.5 मिनट का है वो.
0: जरूर.
1: तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहती हैं और नर्मदा जी जो है हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है. मतलब नर्मदा जी के कारण मध्य प्रदेश पल रहा है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: उन्हीं का जो जल आता है उसी से सब खेती सिंचाई सब होती है. तो बड़ी श्रद्धा का विषय है हमारे यहाँ. और लोग अमावस और पूर्णिमा के दिन नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं. और जब वो स्नान करने जाते हैं तो हर बड़े शहर से नर्मदा जी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ऐसे गांव-गांव से निकली हैं वो.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, नहाने स्नान करने. तो ज्यादा आवागमन के साधन नहीं है. एक सरकारी बस चलती थी, उसके बाद एक 3 पहिए का टेम्पो चलता जिसमें 15-20 लोगों को वो
0: बिठा
1: के और वो ड्राइवर ऐसा लटक के चला
0: लंबा वाला.
1: हाँ, तो वो टेम्पो में एक गांव की महिला पहली बार बैठ के नर्मदा जी में स्नान करने जाती है. अब रात को ही तैयारी शुरू हो गई है. तो हमारे यहाँ जो बच्चों के जो नाम होते हैं वो बड़े गांव के हिसाब से रख देते हैं.
0: बिल्कुल.
1: शहर जैसे अच्छे नाम नहीं होते. काला देखा तो करिया नाम रख दिया, गोरा देखा तो भूरा रख दिया, थोड़ा हेल्दी देख गया तो लड्डू गोपाल रख दिया. तो उनके बच्चे थोड़ा काला था तो उसका नाम रख दिया था करिया. अब पिताजी को वहां दद्दा बोलते हैं और माँ को बाई बोलते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो करिया के दद्दा यानी करिया के पिताजी और करिया की बाई यानी करिया की माँ. अब दोनों की बात चल रही है कल नर्मदा जी नहाने जाना है. तैयारी शुरू हुई है. करिया के पिताजी यानी करिया के दद्दा ने बोलना शुरू किया. अरे करिया की बाई, उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लइयो, भुनसारे अपन नर्मदा सपड़वे चल
0: भुनसारे
1: और सकारू जल्दी उड़ जाइयो, लेट हो गए और बस निकल गई तो समस्या हो जाए, फिर कछु साधन नहीं मिले.
0: हो
1: अब सुबह पहुंचे तो इत्तेफाक से बस निकल गई
0: थी. निकल गई.
1: तो अब करिया की बाई ने पूछा कि अब का हुई है?
0: बस तो गई.
1: अब का हुई है? बस तो गई. तो अब इनकी बात चल रही है. करिया के दद्दा बोले कछु नहीं हो, चुपचाप मेरे पीछे चली आ. अब वो आगे कैसे गए वो पूरा किस्सा लौट के आके वो महिला अपनी एक पड़ोस की महिला को बता रही कि क्या हुआ.
0: ठीक है.
1: बोले कल का भाव आई जी करिया के दद्दा कह लगे कि चल तेरे का नर्म सपड़ भी धलना. तो भाई भंसारे हम उठे बनिंदा बास्केट में धोतिया लपेट के धरी और सकारू सकारू उठ के बास्केट हाथ में लेके बस स्टैंड तन चले गए. और वहां जान के देखे भाई तो बस निकल गई थी. तो मैंने कही अब भगवान जाने का हुई है. तो भाई जी करिया के दद्दा मुहे आंगे ले गए भाई वे भाई कह सो टीन को डब्बा सो ठाड़ो बा को आंग ऐसा सुंगरिया जी सुमो. तो मैंने कही काय करिए दादा जो का जल्द है, तो वो कहने लगे जाको ना टेम्पू है
0: टेम्पू,
1: तो अपन जय से चल हैं आज, तो बाई जी करिए दादा तो

0: ड्राइवर के बगल में आगे बैठ गए और मेरे काजे पीछे पटिया में बिठा दी।
1: हो
0: अब मैं वहां बैठी बैठी सोच रही अब भगवान जान का हुई है जाम है। तो भाई एक इतो बड़ो करिया से मोड़ा आओ माने बाको ढकना ऊंचो कर दो। और मैं वहां में बैठी बैठी सोच रही कि अब भगवान जान का हुई है। तो भाई वहां एक कोप्पा भर के पानी ले आओ और बाँ में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो। तो मैंने कहा ये उमीर राम जो के सो टेम्पू जल थे। अब मैं सोच रही अब भगवान जान का हुई है जाम है। तो भाई बाब करिया मोड़ा ने एक रस्सी निकारी और बाकी बोनट में ऐसी लपेट दई। रस्सी लपेट के जीवन बाकी रस्सी पकड़ के एक पांव बाकी टायर पे धरो और ड्राइवर से कहने लगो हूं। तो भाई ड्राइवर ने भी कह दी हूं। और जैसे ही ड्राइवर ने हूं कही जीवन ने जोर से खींच के तान दो तो फटफटा के चालू होगा। अब वो ऐसो डगमगा रहो। तो मैंने कही काय भैया अब भगवान जाने जा मक्का हुई है। तो जीजी बा ड्राइवर के बगल में एक टेढ़ो सो हैंडल लगो थो बान बाय पकड़ के भीतरे करो फिर बाहर करो फिर भीतरे करो। मैंने कही जो का जल थे। तो बगल वाली बाई कहन लगी जो गेयर है जैसे चला थे। अब बाई वो धीरे धीरे आगे बढ़ो और एक रपटा पे धीरे धीरे ऐसो चढ़ रहो। तो मैंने कही काय ड्राइवर भैया जो ऐसो चढ़ा चढ़ा ऐसो न हो जाए
1: पलट तो नहीं जाएगा।
0: तो मैंने कही तू रोक दे तो मैं उतर जाऊं। तो वो कहन लगो रोकत नहीं हूं रोक हूं तो पीछे लुढ़क जे। तो मैंने कही फिर लगे जान दे और आगे जान के जीजी वो एक पानी के डबरा में आड़ो होगा।
1: अरे दद्दा रे
0: फिर काय की नरब दजी जी भाई डबराम सपड़ के लौटे आए।
1: क्या शुद्ध बुंदेली मजा आ गयो। क्या शानदार बुंदेली रचना आपने सुनाई सच में मजा आ गयो। ये जो बुंदेली लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इस भाषा की जो मिठास है
0: जी जी जी
1: है ना बुंदेलखंड तो बुंदेलखंड है
0: सच्ची बात।
1: तो जो प्रांतीयता कॉमेडी में आप लेके आते हैं वो कितना काम करती है मंच पर।
0: बहुत काम आती है ये भाषा जो है। पता नहीं क्यों भाषा को लेकर बहुत विवाद देखने को मिलता है लेकिन मैं समझता हूं भाषा कभी विवाद का विषय होती नहीं है। भाषा सिर्फ संवाद का विषय होती है। हम आपस में बात करते हैं आप अपनी संवेदनाएं अपने भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं शब्दों के माध्यम से वो भाषा है। भाषा के लिए क्या लड़ना। मैं तो सोचता हूं कि सारी भाषाएं सीखना चाहिए
1: बिल्कुल
0: सारी भाषाएं आनी चाहिए लेकिन हमारा देश इतना विस्तृत है इतना बड़ा है और इतनी सारी भाषाएं हैं संभव नहीं है कि कोई सारी भाषाएं सीख पाए। और जब भाषा नहीं आती और जबरन बोली जाए या जबरदस्ती बुलवाई जाए या नहीं आ रही तो भी बोली जाए तो फिर आदमी हास्यास्पद हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: हाँ भाषा नहीं आती बड़ी समस्या होती है। मैं तो नया नया मुंबई में आया था मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी तब। मैं एक बस में चढ़ा मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी वो बोली लव कर मैं उसके चक्कर में चार स्टेशन आगे चला।
1: लव कर बोल रही थी।
0: मैं समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर बोल क्या रही है। भाषा आना बहुत जरूरी सीखना पड़ता है। मैं लोखंडवाला में रहता था 2005 की बात है बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। लोगों के घर डूब गए गाड़ियां डूब गई इतने लोग डूब गए। चार महीने बाद मैंने देखा बड़े बड़े पोस्टर लगे होर्डिंग वहां पर उस पे लिखा बाढ़ दिवस का शुभेच्छा बाढ़ दिवस का शुभेच्छा। मैं परेशान कि यार चार महीने पहले लोग डूब के मर गए ये कौन है जो बाढ़ दिवस की शुभेच्छा दे रहा है। फिर किसी ने बताया जन्मदिन को बाढ़ दिवस बोलते हैं। तो मैंने कहा यहां रह के सारी भाषा सीखनी पड़ेगी क्योंकि भाषा आना बहुत जरूरी। फिर मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला।
1: अच्छा
0: मेरी जो पत्नी है वो मराठी है।
1: अच्छा तो आपने ये
0: तो अब मैंने शादी की तो अब वो मराठी है उनको सारी मराठी आती
1: है। उनका ताल्लुक कॉमेडी से है या वो आपकी कॉमेडी करती
0: है? नहीं
1: वो
0: बिल्कुल नहीं है और इस लाइन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है उनको। तो इसका फायदा ये हुआ कि मैं चूंकि कलाकार हूं कोई कुछ बोलता है तो याद कर लेता हूं। अब मुझसे कोई अगर मराठी में कुछ बोलता है तो मैं ध्यान से सुनता हूं वह घर पे जाके पूछता हूं ऐसा बोला था ये मेरे लिए ठीक है कोई गलत बात तो नहीं है। अगर ठीक हुआ तो कोई बात नहीं नहीं तो अगले दिन उस आदमी से बहस करने पहुंचता हूं।
1: ऐसा है
0: तो वो बोलता है तुम्हारा ट्यूबलाइट का स्टार्टर खराब है क्या तुमको कल बोलो आज लड़ने आते हो। मैं बोला भाई तुम बोल के रह जाते हो मुझे घर पे क्लियर करना पड़ता है जाके।
1: बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि लड़ाई किस भाषा में होती है हिंदी में कि मराठी में?
0: लड़ाई तो देखो इसका एक बड़ा फायदा है
1: हाँ।
0: दो भाषीय लोग अगर शादी कर लें
1: हाँ।
0: और ना तो आप उसकी भाषा सीखो और ना वो आपकी सीखे
1: बिल्कुल
0: उसमें फायदा ये होता है जब लड़ाई होती है तो वो अपनी भाषा में गाली दे अपन अपनी में तो, ना उसको समझ में आए ना अपने को समझ में आए।
1: तो वो मराठी में शुरू हो जाती है।
0: ऐसा होता नहीं है।
1: उनके सामने आपको कितना बोलने को मिलता है, क्योंकि आप मंचों पर इतना सब परफॉर्म करते हैं, पर घर पर आप परफॉर्मर हैं या लिसनर हैं?
0: एक्चुअली एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कहावत है, अ गुड लिसनर बिकम अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला ही आगे चल के बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है। तो मैं मंच के ऊपर बोलता हूँ और घर में बाकी टाइम में सिर्फ सुनता हूँ। बाकी टाइम में सिर्फ सुनता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कितना अच्छा वक्ता मुझे मिल जाए और मैं उसको घंटों बैठ के सुन लूं। मैं आज भी बहुत अच्छा लिसनर हूं।
1: आपने अपनी पत्नी पर कोई कॉमेडी बनाई है?
0: बिल्कुल बनाई है।
1: सुनाइए।
0: देखिए मैं
1: लेकिन याद रहे कि घर पे खाना मिले आपको?
0: हाँ बिल्कुल मिलेगा। आप मुझे देख ही रहे हैं मेरा रंग रूप कैसा
1: जी,
0: है
1: जी।
0: लेकिन मेरी पत्नी एकदम गोरी है। अब आप सोचेंगे कि उन्होंने मुझसे शादी कैसे कर ली। अब आप सोचेंगे कि चलो उनका तो वहां जाके माइंड डाइवर्ट हो गया, उनके पिताजी को सोचना चाहिए था कि मैं किससे शादी कर रहा हूँ। तो यहाँ भी मेरी लॉटरी लगी। मेरे जो ससुर हैं वो कोल माइंस में नौकरी करते हैं।
1: लो
0: तो दिन भर वो कोयले की खदान में रहते हैं अंदर, उसी को देखते जब उनने मुझे देखा तो बोले उससे तो यही ठीक है। तो ऐसे मैं अपने पर्सनल लाइफ पे भी कॉमेडी बनाते रहता हूँ।
1: क्या बात है, बहुत सही है। अच्छा कॉमेडी की दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे शहरों के बच्चे हैं जिनके ख्वाब हैं ये सब टेलीविजन सीरियल्स और रियलिटी शोज कॉमेडी शोज देख करके वो भी एक दिन नाम कमाएं। आप संघर्ष के उसी रास्ते से आते हैं कि एक छोटे से शहर से मुंबई शहर तक का सफर आपने तय किया है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप कि ये रास्ता कितना आसान कितना मुश्किल है और कितना धीरज रखना पड़ता है?
0: देखिए मैं एक बात मानता हूं कि हमारी जो फील्ड है कलाकारों की, इसमें मुंबई आने के बाद आपका कला जो है वो 10-20% चलता है और 80-90% भाग्य चलता है। अगर आपका भाग्य प्रबल है तो आप मुंबई नहीं भी आएंगे तो उदय दाहिया की तरह आपको गांव से बुला लिया जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मैं मुंबई नहीं आया था।
1: यस।
0: यहां आकर मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है, मुझे तो मुंबई से लोग जाके गांव से उठाकर लेकर आए हैं।
1: बिल्कुल।
0: वो उसका एक ही कारण है कि मैं जो काम कर रहा था उसको इतनी ईमानदारी से कर रहा था और मैं कभी सोचता ही नहीं था कि यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा, ये तो मुझे लोग खींच रहे हैं मेरे पास आओ यहां आओ। तो बस काम अच्छे से करते रहो, आपसे आपके आसपास के लोग कहने लगे कि भाई तुम यहां के लिए नहीं बने हो, तुम कहीं और जाओ। अपने आप रास्ता बनता जाएगा। लेकिन कभी भी किसी की बातों में आकर अपना शहर मत छोड़िए। एकदम से किसी बड़े शहर में मत पहुंच जाइए।
1: हाँ।
0: जैसे छत पर चढ़ने के लिए 15-20 सीढ़ियां होती हैं और आप एक एक के चढ़ के फिर आप ऊपर पहुंचते हैं, यही यहां पर लागू होता है। आप पहले अपने शहर में करिए, अपने स्कूल में करिए, घर में करिए, मोहल्ले में करिए, शहर में करिए, आसपास के शहरों में करिए। जब आपको लगे कि हाँ मुझे सब पसंद कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके रास्ते खुलते जाएंगे और लोग खुद आपको बुलाएंगे।
1: क्या बात है, बहुत सही सलाह आपने दी है। और इतनी लंबी बातचीत हमने कर ली, आपने किशोर कुमार का नाम भी लिया कि 87 में उनसे आपको प्रेरणा मिली थी, लेकिन किसी गाने का जिक्र अभी तक नहीं हुआ, तो अपनी पसंद का एक गाना बताइए जो अभी हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: वैसे तो किशोर कुमार जी के इतने सारे गाने हैं जो मुझे पसंद है और उनमें से कोई एक कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक गाना है जो डुएट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो गाना, वो है फिल्म डॉन का। क्योंकि इस गाने में ऐसा लगता है जैसे मैं ही अपील कर रहा हूं, जिसका मुझे था इंतजार
1: वो घड़ी आ गई।
0: वाह, तो मेरी जिंदगी में वो घड़ी आ चुकी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं वो वाला गाना बजाया जाए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। ये प्रदेश के दक्षिण और मध्य इलाकों में लगातार हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर, अनेक क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। बारिश की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आज प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया और मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को पूरी सतर्कता के साथ राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में पिछले तीन दिनों में हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं। बस्तर में इंद्रावती नदी खतरे के निशान से करीब 10 फीट ऊपर बह रही है। धमतरी जिले में गंगरेल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। यहां से छोड़े जा रहे पानी के कारण महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी भी उफान पर है। इसके कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के विभिन्न शहरों और नगरों की निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। दुर्ग और बस्तर सहित अनेक इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कुम्हारी क्षेत्र में परसदा गांव के पास जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे करीब 60 लोग बाढ़ में फंस गए। इन्हें नगर सेना और एसडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। ओडिशा में खातीगुड़ा बांध के गेट खोल दिए गए हैं। इसके चलते इंद्रावती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सुकमा बीजापुर मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर सोनारपाल काकड़ी घाट के पास पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। राजिम में भी त्रिवेणी संगम पर लगातार पानी की आवक होने से तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है। राजिम बस स्टैंड में 4 फीट तक पानी भर गया है। वहीं निचली बस्तियों में पानी भरने के कारण लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में खारून नदी उफान पर है। महादेव घाट में पुल के 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। नदी किनारे के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भिलाई की निचली बस्तियों में जल जमाव हो गया है। प्रशासन ने इंद्रावती, महानदी और शिवनाथ सहित विभिन्न नदियों के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बारिश की स्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने आज प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को पूरी सतर्कता के साथ राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। इस बीच खबर मिली है कि धमतरी जिले में भकारा के पास पानी से भरे पुल को पार करते समय एक कार बह गई। कार में सवार लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। महानदी के किनारे बसे दरगहन और अमेठी सहित विभिन्न गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने इन गांवों से बाढ़ में फंसे करीब 25 लोगों को सुरक्षित निकाला है। हालांकि प्रदेश में पिछले 3 दिनों से जारी बारिश का सिलसिला फिलहाल थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में कुछ इलाकों में फिर बारिश हो सकती है। महासमुंद और ओडिशा के नुआपाड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के विभिन्न ठिकानों पर छापा मारकर मानव तस्करी के 5 आरोपी लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के दक्षिण और मध्य इलाकों में लगातार हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर, अनेक क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। बारिश की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आज प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया और मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को पूरी सतर्कता के साथ राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज महान अभिनेता सदाबहार देव आनंद की याद का दिन है। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था। एवरग्रीन देव आनंद के फिल्मी सफर का आगाज हुआ था 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से। 6 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। तो आइए यादों की महफिल में आज याद करते हैं हिंदी फिल्मों में एक लंबी और सफल यात्रा तय करने वाले पद्मभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता निर्देशक, हिंदी फिल्मों के एवरग्रीन यानी कि सदाबहार निर्माता निर्देशक हीरो और पहले रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को सुनकर उनके गीत। तो साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है गाइड।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जुएल थीफ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में स्वागत है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर

0: विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

0: एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने, फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: काला बाजार, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी को। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने। फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का और फिल्म का नाम है तीन देवियां।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है जय देव का और फिल्म का नाम है हम दोनों।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने याद किया सदाबहार रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को। यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

संगीत के इस सुरीले सफर में बन के हमारे हम सफर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको बता देंगे हम आज की इबारत क्या है। साथियों, देखते ही तुझे कह उठा दिल, मिल गई है मुझे मेरी मंजिल। तुम मुझसे जुदा हो जाओगे, बोलो कैसे रह पाओगे। हसीन झरनों के साई में अकेला छोड़ जाते हो, न जाओ, तुम्हारे बिना बहारों में खुशी क्या है। ठहरो, मैं दिल को संभालू जरा, अभी तो आए हो, अब जाते हो क्यों? क्या मेरी चाहत पे तुमको नहीं भरोसा?

तो आओ पास बैठें कि कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं और कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले ये कहानी सारे जहान से। तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर हमें बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं, मतलब हम तक भेज चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं। तो इन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम पढ़ देते हैं आपके कुछ संदेश। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुकम्मल मोहब्बत में खोए महबूब और महबूबा की दीवानगी, मदहोशी का माकूल चित्रण, मोहब्बत के मारों की रुमानी दास्ता, जहां किसी गैर की ज़रूरत नहीं होती, उनकी मंजिल है मोहब्बत, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत प्यार में मिलन की दास्तान और साथ बिताने वाले सुनहरे पल को लेकर आई है, जो मोहब्बत में अपने भरोसे को कायम रखता है। नजरों से नजरों का मिलना कुछ इस तरह हुआ, हर नजारा एक हंसी ख्वाब जैसा हुआ, जब हम मिले तो सज गया समा, प्यासे दिल की जमी को मिला आसमां। अगला कमेंट है कि आज की सुंदर इबारत प्रेम की उस कहानी को सुर देती है, जिसमें मिलन की खुशी, बिछड़ने की कसक और साथ बिताए पलों की सुहानी यादें एक साथ धड़कती हैं। उसमें कहीं भरोसे की मिठास है, कहीं जुदाई का डर, तो कहीं फिर लौट आने की उम्मीद। अगला एक साथी ने अगला मैसेज लिखा है कि दो दिलों की दास्ता है इस कहानी में, मिलने की खुशी है, बिछड़ने का गम है और वो हमेशा साथ रहे। आज के गीत आने की आशा और बिछड़ने के दर्द से भरे हैं और अपने प्रियतम को पास रोक लेने की कोशिश करते नजर आते हैं। आज की इबारत में मिलन की खुशी भी है और जुदाई का गम भी, तड़प ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की, और जब मिले तब देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं, अच्छा तो हम चलते हैं, चले जाना जरा ठहरो। मोहब्बत में कभी मंजिल मिलती है तो कभी जुदाई का डर सताता है, उसके बिना बहारों की खुशी भी अधूरी लगती है और दिल चाहता है कि वो कुछ पल और ठहर जाए। चाहत और भरोसे के सहारे प्यार के तूफानों को पार करते हुए मन कभी साहिल की तलाश करता है। आना जाना और बिछड़ना जीवन का हिस्सा है, मगर साथ बिताए पल हमेशा दिल में रहते हैं। पास बैठकर बीती रातों की कहानी सुनते सुनते कब दिन ढल जाता है पता ही नहीं चलता। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में जो ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, इन कलाकारों के नाम लिख दीजिए और इस अभिनेता का देव आनंद के साथ क्या रिश्ता है वो भी हमें बता दें। इस गीत में आवाज़ है किशोर कुमार की, संगीत है बप्पी लहरी का, गीतकार है अमित खन्ना और फिल्म का नाम है चलते चलते, और साथ ही अपने विचार, अपने जवाब हमें लिख दीजिए।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं राकेश पंत।
2: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बसंती देवी, जो महान पर्यावरणविद हैं और प्रकृति की संरक्षण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। बसंती देवी उत्तराखंड की धरती पर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। उन्होंने स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को एकजुट कर कोसी नदी को बचाने के साथ ही जंगलों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर 5 के जंगलों को बचाने और जल संरक्षण की मुहिम चलाई। उनके इसी काम को देखते हुए सन 2016 में उन्हें नारी शक्ति सम्मान और 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया। तो बसंती देवी जी से बात करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका बसंती जी। तो आपसे जानना चाहूंगा, कोसी नदी और उसके जलागम क्षेत्र को बचाने की आपकी मुहिम की शुरुआत कैसे हुई, तब क्या परिस्थितियां थी, आपने किस तरह इस मुहिम को आगे बढ़ाया?
3: पहले तो उस नदी में बहुत पानी था, खेतों में भी इतना अच्छा जमीन में पानी और सब खेती पाती होती थी। धीरे धीरे जब जंगल पूरा काट दिया महिलाओं ने, जंगल काट के तो पानी खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गए और इसलिए बहुत परेशानी होगी। तब लोग कहने लग गए अब हम पानी भी कहाँ से पिए, खेती में भी हमारे खेतों में भी पानी नहीं आ रहा है। तब मैं गांव-गांव में जाकर मैंने महिला संगठन बनाया। मैंने कहा जब पानी नहीं आएगा तो तुम्हारे यहाँ तो इतनी अच्छी खेती होती थी और इतना ज्यादा पानी आता था और नदी में और सब कुछ था, जब पानी नहीं आएगा तो कहाँ से पियोगे पानी, कहाँ से खेती होगी और कैसे हम जिंदा रहेंगे, तो इसके लिए तो तुम सब सोचो। मैंने कहा जंगल जब पूरे पेड़ काट दे रहे हो और फिर वो सड़ जाते हैं तो उनको फिर तुम जला देते हो, तो तुमको ये सोचना चाहिए कि जब जंगल बचेगा, पानी आएगा, तब खेती भी अच्छी होगी, अपने लिए भी, हमारे पानी पीने के लिए और रुपाई करने के लिए, खेती पाती सब ठीक करने के लिए भी तब अच्छा होगा, तब हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम जिंदा ही कैसे रह सकते हैं। मैं फिर 6-7 दिन के बाद जंगल के रास्ते गई तो महिलाओं से कहा बैठो आप, मैं तुमको सब बात सुनाती हूँ। जब जब पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य जिंदा कैसे रहेंगे, खेती कैसे होगी, और ये तो तुमको सोचना ही चाहिए। मैं आज तुम्हारा संगठन बनाती हूँ, तुम अभी जंगल से अब घर को चलोगे, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, चौथे गांव में, सब जगह जाकर मैं सबका संगठन बना के सबको एक करूंगी। मान गए वो, फिर आ गए, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाकर पूरे कोसी नदी के वहां सोमेश्वर घाटी में

0: उधर उधर सब जगह वो काम किया तो सब मान गए, जंगल नहीं काटा तो जंगल बच गया, फिर पानी आने लग गया धीरे धीरे।
1: भक्ति, जैसे आपने जो काम किया वो खासकर कोसी नदी बागेश्वर के आसपास, हाँ। आप आश्रम में बहुत समय तक रहे, आपके मन में कैसे आया कि प्रकृति से जुड़े हैं, नदी को बचाएं, कैसे आपने सोचा ये सारी चीजें?
0: क्यों, मैं तो जब इलाके में रहती थी जब वहाँ प्रकृति ऐसी हो गई, जब पानी खत्म हो गया, खेती नहीं होने वाली हुई, सब इस प्रकार का हो गया और लड़ाई मार झगड़ा और में लग गया, तब मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने कहा जब सब घर घर में ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो हमारा उत्तराखंड की देव भूमि महान कैसे बनेगी। तो यही इसी को लेकर मैंने गांव गांव में उनसे कहा कि हमको अपना जीवन, अपना देश, अपना गांव, अपना परिवार को महान बनाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी देव भूमि महान बनेगी। अभी भी मैं कहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के देव भूमि को हमको महान बनाना है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छा वो होगा तो आगे की पीढ़ी भी अच्छी होगी, तो यही मेरा काम होता है।
1: बसंती दी, जब आप अभियान शुरू कर रही थी, लोगों को जोड़ रही थी अपने साथ, इसके लिए कितनी चुनौतियां आई लोगों को जोड़ने में, महिलाओं को जोड़ने में, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं थी, आपने उनको संगठित किया, कितनी परेशानियां चुनौतियां आपके सामने आई?
0: चुनौतियां तो बहुत आई, सब लोग कहने लगे बड़ी आ गई है, ये तो आश्रम में रहती है और हमारी महिलाओं को इतना भड़का रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है करके। कहीं वो महिलाओं का महिला मंगल दल बनाया और उनको मैंने कहा चलो अब आ तुम, तुम्हारे पास लकड़ियां हैं और तुम यहाँ से अब लकड़ी नहीं ले जाओगे, जंगल बचाना है, ऐसे करके वो फिर आ गए मेरे साथ गांव में, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाते जाते मैंने 200 गांव में महिला संगठन बनाया, तो सब उनको बताया, सब मान गए बहुत अच्छी तरह, तो ऐसे करके गांव गांव में जाकर वातावरण अच्छा बना दिया, तो जंगल बचाने का, पानी बचाने का, महिला सशक्तिकरण, भाई लोगों को नशा मुक्त करना, तो ऐसे ऐसे करके सब वातावरण अच्छा बना दिया। मैंने कहा तुम भी थोड़ा सीखो महिलाओं से, मैंने कहा संगठन बन गया है, जंगल बचाना है, पानी बचाना है, खेती अच्छी बनानी है, बच्चों को पालना पोसना है, आगे पढ़ाना है, जैसे लड़कों को तो स्कूल भेजने वाले हुए, लड़कियों को नहीं, लड़के लड़कियों को पढ़ाने का नहीं हुआ। जब मैंने कहा लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो क्या होगा, लड़कियों को भी पढ़ाना है, तो बालवाड़ी खोली हमने भी आश्रम के द्वारा, एक बालवाड़ी से 200 गांव में बालवाड़ियां खोली लड़कियों को पढ़ाने का, और भाई लोगों को नशा मुक्त किया मैंने, जब परिवार तुमसे क्या सीखेगा और बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा वातावरण कैसे अच्छा होगा, तुमको तो ये सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल, हाँ। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ ही नशा उन्मूलन के क्षेत्र में आपके जो प्रयास है वो सराहनीय है। आज जब आप अपने कार्य को देखती है बसंती जी, आपने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति को लेकर जो कार्य किए, कैसा महसूस होता है कि आपने हमारी पीढ़ियों को इतना कुछ आपने दिया है, कैसा लगता है?
0: अच्छा लगता है, क्योंकि लोग तभी तो सब जगह किताबों में भी लिखते हैं, ऐसे वो भी देते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया, तभी तो पद्मश्री अवार्ड भी मिला, तो ऐसे करके धीरे धीरे वातावरण बहुत अच्छा हो गया गांव गांव में सब जगह, और बच्चे भी अच्छे हो गए, उनको भी अच्छी तरह पालना पोसना और ऐसा कर दिया, और लड़कियों को भी जब हमने और बालवाड़ी में, एक बालवाड़ी से लेकर 200 गांव में बालवाड़ी खोली लड़कियों के लिए, तो वो भी पढ़ने लग गए, लिखने लग गए, तो ऐसा वातावरण बन गया तो सब गांव गांव में बहुत खुश हो गए, तो और फिर और सरकार के द्वारा फिर लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए सरकार ने स्कूलों में उनको भी भर्ती कर दिया, बालवाड़ी से लेकर फिर वो और स्कूलों में भी ऐसे पढ़ने लगी।
1: अच्छा, जो कोसी नदी का आपका अभियान था वो बहुत ही सराहनीय अभियान रहा है, और कई आज के जो जनरेशन है वो भी उससे प्रेरणा लेती है, आपको लगता है किस तरीके से आपने कोसी नदी, क्योंकि उस टाइम कोसी नदी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, आपने कैसे, आपके मन में आया कि इसको बचाया जाए?
0: पहले तो कोसी नदी में बहुत पानी आता था, जब जंगल कट गया तो पानी नहीं आने वाला हुआ, तब मैंने कहा, तभी तो मैं 7 दिन गांव में गई, कोई महिलाएं नहीं मिली, और वो गांव के रास्ते ही जंगल में गई, वहां मुझे वो महिलाएं मिल गई, मैंने उनसे कहा कि तुमने इतना जब जंगल काट के खत्म कर दिया, पानी और जंगल पेड़ काट के, और ऐसे इतने तुमने कनखले बना दिए, वो कर दिया, वो सड़ गए हैं और वो बेकार हो गए हैं, जब पानी नहीं आएगा तो क्या पियोगे, कैसे जिंदा रहोगे, कैसे खेती पाती होगी, ये तो तुम सोचो, तुम नहीं सोचते हो तो फिर और क्या होगा, ऐसे ऐसे करके तो वातावरण फिर बहुत अच्छा हो गया।
1: संदीप जी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सके, क्या उनसे कहना चाहेंगी आप?
0: तो उनसे भी तो वही कहना है, नशा मत करो, वातावरण अच्छा बनाओ, परिवार अच्छा बनाओ, आगे की पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमारा देश भारत वर्ष अच्छा होगा। उत्तराखंड देव भूमि को मैं यही कहती हूँ कि महान बनाना है, जब सब लोग परिवार परिवार में, गांव में, इलाके में सब अच्छे होंगे, अच्छे व्यवहार वाले होंगे और अच्छा वातावरण होगा तो सब खुश रहेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।
0: आपको भी धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे राकेश पंत। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, अरुणा ईरानी, निरूपा रॉय, सुजीत कुमार, राजेंद्र नाथ और जूनियर महमूद। हमारे साथियों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और जवाब लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी किसी का मिलना ही हमारी मंजिल बन जाता है और फिर उसके जाने का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। चाहत बस इतनी होती है कि वो थोड़ा और ठहरे, क्योंकि कुछ साथ पल भर के नहीं होते, उम्र भर के लिए अच्छे लगते हैं। और हम कहते हैं कि आपने टॉपिक को बिल्कुल सही पकड़ा है। कुछ रिश्तों में भरोसा इतना गहरा होता है कि जुदाई का ख्याल भी अच्छा नहीं लगता। दिल चाहता है साथ यूं ही बना रहे और ये सुहाने पल कभी जल्दी ना ढले। मोहब्बत शायद यही है, किसी के आने से दिल को मंजिल मिल जाए और उसके जाने का ख्याल आते ही दिल कहे, ठहरो अभी तो कुछ पल और साथ रहो। एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत में हमें भरोसा भी नजर आया तो दिल ने कहा, भरोसा बहुत नाजुक सा रिश्ता है, उसे बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक छोटी सी ठेस भी इसे हिला सकती है। भरोसा वो है जहां शब्द कम पड़ जाएं, फिर भी दिल कहे तुम हो तो सब ठीक है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अर्पण का गीत परदेस जाके परदेसिया भूल ना जाना पिया इसका इंतजार है। जब मिले हम तो थमी सी रह गई ये जिंदगी, तेरी आंखों ने कहा मैं हूं यहीं पर कहीं, फासले जितने भी हो अब इस जमाने के दरमियां तेरी धड़कन में धड़कता रहूंगा मैं।

हर घड़ी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि जहां एक तरफ मंजिल पा लेने की खुशी है तो दूसरी तरफ किसी खास इंसान के बिना रहने की बेबसी और अधूरापन भी है। जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मुकाम पर पहुंच जाता है लेकिन वहां उसके साथ उसका वो खास शख्स नहीं होता तो वो सफलता या मंजिल भी अधूरी सी लगने लगती है। अगला कमेंट है कि आज फिर मैं लंबी यात्रा पर हूँ, ट्रेन में कार्यक्रम का लुत्फ उठाऊंगा। तो ठीक है, सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज लाइव रहना बड़ा मुश्किल है, हमारे फार्म हाउस पर नेट बहुत वीक होता है, अगर सही रहा तो जरूर जुड़ूंगी। तो ठीक है, कोशिश कीजिए नेटवर्क में आने की। एक साथी ने लिखा है कि नजरों ने जब से तुम्हें पाया है इस दिल को सिर्फ तुम्हारा ही साथ भाया है। तुम दूर जाने की बात करते हो, जरा सोचो तुम्हारे बिना मेरी सुबह और शाम का क्या होगा।

इस हसीन मौसम की हर बूंद मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। अभी तो धड़कनों ने संभलना सीखा है। अभी से मुख मोड़ कर मत जाओ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा एतबार है, बस इस बात का डर है कि ये वक्त कहीं हमें जुदा ना कर दे। आओ कुछ पल और पास बैठो, ताकि इन ढलती हुई रातों में हम अपनी अधूरी दास्तां को पूरा कर सके। बहुत अच्छा लिखा है आपने। बिछड़ गए तो फिर मिलेंगे हम दोनों एक बार, या इस बस्ती में या इसकी हदों के पार। साथियों, हमारी ज़िंदगी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती है। दुनिया की इस भाग दौड़ में या हालात की वजह से रिश्ते, नाते, मोहब्बतें, दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर वक्त का पहिया घूमता है और बिछड़े हुए लोग दोबारा मिल जाते हैं। कहते हैं कि दिल की लगन हो सच्ची तो रास्ते अपने आप बनते हैं, और मिलकर बिछड़े हुए दोबारा मिलते हैं। रिश्ते और मोहब्बतें वक्त और फासलों से ज़्यादा असर रखती हैं, और बिछड़ने के बाद मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है। सदाबहार मेलोड्रामा फिल्म आया सावन झूम के जय शंकर और आरती की कहानी। अनजाने में जय की गाड़ी से एक व्यक्ति की टक्कर और मौत, जो कि आरती के पिता थे। इस भयानक हादसे के बाद एक गहरा अपराध बोध, उसके बाद कहानी में गलत फहमियाँ, उतार चढ़ाव, सच्चाई का सामने आना और एक समाधान पर कहानी ख़त्म। तो बताइए कि ये जय आरती कौन थे, और आया सावन झूम के इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम भी हमारे FB पेज पर लिख दे। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, और आपके जवाबों का हमें है इंतजार।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: साथियों, आपने जो कमेंट्स और जो जवाब लिखे वो हमने देख लिए हैं और उन्हें अभी पढ़ देते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, आशा पारेख, निरूपा रॉय, नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, रूना ईरानी, जलाल आगा, और इस फिल्म के निर्देशक थे रघुनाथ झलाई और निर्माता थे जे ओम प्रकाश। अब पढ़ते हैं आपके कुछ और कमेंट्स। आज की इबारत मिलन और बिछड़ने की उम्मीदों को लेकर घड़ी गई है और इस दृष्टिकोण से आज की ये इबारत सराहनीय है। एक साथी ने लिखा है कि प्रेम में बस एक बात समझी जा सकती है कि सरलता ही प्रेम है और ये सरलता ही दो लोगों को जोड़े रखती है। अगर आपके मन में सरलता नहीं है तो बिछड़ना तय है। अगला मैसेज है कि जहां एक पक्ष रोक रहा है और दूसरा पक्ष उसे समझा रहा है और विश्वास दिला रहा है, ये इबारत प्रेम की उस अवस्था को दर्शाती है जहां मिलन की खुशी और बिछड़ने का डर साथ साथ चलते हैं। प्यार में मिलन के हसीन पल वाकई

बहुत खास, गहरे और जीवन भर के लिए यादगार पल होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हसीन पल एक ऐसी अनमोल पूंजी बन जाते हैं जिन्हें इंसान मुश्किल वक्त में भी याद करके मुस्कुरा उठता है। एक साथी ने लिखा है, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, तो हमारी तरफ से आपको भी। अगला एक मैसेज है कि आज तो सिर्फ सुनने का मन है, कोई कमेंट नहीं। हमें ये गाना याद आ रहा है, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी प्यार का सबसे सुंदर हिस्सा मिलना नहीं बल्कि बिछड़ने के बाद भी किसी का दिल में बने रहना होता है। कुछ लोग जिंदगी में पल भर के लिए आते हैं मगर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं। मिलन चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है और फिर बिछड़न आंखों में नमी। मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। एक साथी ने लिखा है, मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। अगला मैसेज है कि उम्र के इस मोड़ पर बिछड़े कॉलेज मित्र जब सालाना यूनियन मीटिंग में मिलते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो आयु बढ़ जाती है। हमारे एक साथी ने एक लिस्ट भेज दी है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते हैं, आ जा रे प्यार पुकारे नैना तो रो रो, बाय बाय मिस गुड नाइट कल फिर मिलेंगे, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, ये गीत लिखकर इन्होंने भेजे हैं। एक साथी ने लिखा है, आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, परिवार के संग हूँ। एक साथी ने लिखा है कि घर में बहू बेटी जब जाती है तो जत्रा निकाला जाता है, उसका कुछ ले जाने वाला सामान एक अच्छे समय पर घर से बाहर कहीं पर रख दिया जाता है और जाते समय उसे भी ले लिया जाता है। एक साथी ने लिखा है कि जब मैं 6 साल का बच्चा था तब बिली मोरा के पास एक कस्बे में मेरा बहुत प्यारा मित्र था, बाद में मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया कारण इसके बाद संपर्क टूट गया, पर मैंने FB पर उसे ढूंढ निकाला और एक दो बार अच्छी तरह उनसे बात भी हुई, पर बाद में उनसे हमारा संपर्क टूट गया।

साथियों, अमेरिकी साहित्य के एक मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की अंग्रेजी कहानी द प्रिंस एंड द पाउपर पर आधारित ये एक नैतिक सीख देने वाली फिल्म है राजा और रंक। एक गरीब लड़का और एक राजकुमार जिनके चेहरे एक जैसे होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की पहचान अपना लेते हैं। राजकुमार को बाहर की दुनिया की गरीबी कठिनाइयों का अनुभव होता है, जबकि रंग को राजमहल के कड़े नियम और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। अदला बदली की ये कहानी हमें इंसानियत और दूसरों के दुख दर्द को समझने की सीख देती है। तो बताइए हमें कि ये राजा और रंग की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता कौन थे, और खलनायक और साथी कलाकारों के नाम भी लिख दें।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। सुधीर और विजय यानी के संजीव कुमार, महेश कोठारे, निरूपा रॉय, अजीत कमल कपूर और कुमकुम इस फिल्म के निर्देशक थे कोलजी प्रत्यगात्मा और निर्माता थे एलवी प्रसाद। गीत में साथियों आवाज़ आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम था राजा और रंक। आवाज की दुनिया के दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं। एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफर, तो हम अपने साथियों के कुछ संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। एक साथी मित्र ने लिखा है कि अगर दिशा भूल में कोई विदा लेता है तो उनकी शुभ यात्रा हेतु पहले ही कोई वस्त्र यात्रा के रूप में अन्य के घर में रख दिया जाता है, फिर यात्रा वाले दिन वहां से लेकर यात्रा करते हैं। ये शुभ मंगल यात्रा का धार्मिक प्रावधान है। एक साथी ने लिखा है कि मेरा प्यारा पालतू लैब्राडोर बीटल नाम था उसका, 2 दिन पहले वो गुजर गया हमेशा के लिए मुझसे। उन्होंने लिखा है कि मिलना बिछड़ना रीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है, मेरा आखिरी गीत यही है। एक साथी ने लिखा है कि फूल खिले हैं तो झड़ेंगे ही, बादल हैं तो खिलेंगे ही, भूख प्यास है तो तड़पेंगे ही, ईर्ष्या है तो जलेंगे ही, तारे हैं तो टूटेंगे ही, अपने हैं तो रूठेंगे ही और प्रेमी हैं तो बिछड़ेंगे ही। ऐसा क्यों जी?

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं शम्सुल हुदा बिहारी, संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। एक रहस्यमयी और पुनर्जन्म पर आधारित क्लासिक फिल्म जिसमें प्यार, धोखा, सस्पेंस का ताना बाना बुना गया, जहां अंत में सारे राजों से पर्दा उठता है। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकारों और निर्देशक का नाम लिख दीजिए अपने कमेंट्स में, और किसी को आप कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उनसे, वो भी लिख दीजिए।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए और अब हम उन्हें पढ़ते हैं। ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे पृथ्वी राज कपूर, बिस्वजीत, शर्मिला टैगोर, मुमताज और निर्देशक थे ब्रिज सदाना। हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि बंद मुट्ठी आए थे जाएंगे खुले हाथ, आए थे अकेले जाएंगे अकेले, इससे जुड़ा गुजराती भजन है, एकला जा आव्या मनवा एकला जवाना साथी विना संगी विना। इस आने जाने के बीच हमें जो मित्र या जीवन साथी मिला, परिवार बना, उसी से बना ये जीवन चक्र यूं ही चलता रहा है और रहेगा। और इस जीवन चक्र में जब विविध भारती जैसा साथी साथ हो तब जीवन का सफर सुरीला मधुर बन जाता है। ये अगला कमेंट है कि अक्सर देखा गया है कि प्यार में कई प्रेमियों के दिल टूट जाते हैं पर उन्हें जीवन में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और अपनी तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड जो भारत की पहली 70mm टेक्नीकलर फिल्म थी, जिसमें सफर के दौरान रोमांस, कॉमेडी और विदेशी नज़ारों की यात्रा को दिखाया गया है। आखिर में सब साजिशें बेनकाब होती हैं और कहानी का सुखांत तो होता है। साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में राज कपूर की नायिका कौन थी, जिनके माता पिता भी महान कलाकार हैं, और साथ में इस फिल्म के खलनायक का भी नाम लिख दे। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं इसमें किसकी आवाज़ें हैं वो भी हमें बताएं और साथ में इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी लिख दें।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। राज कपूर, राजश्री, प्राण, ओम प्रकाश, महमूद, प्रेम चोपड़ा, अमिता, असला, अचला, सचदेव और राज मेहरा। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे पच्छी। गीत में आवाजें थी मुकेश और शारदा की। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था अराउंड द वर्ल्ड। और अभिनेत्री राजश्री के पिता मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता वी शांताराम जी और उनकी माता जी जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री जयश्री हैं। और इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा जापान, अमेरिका, कनाडा, स्पेन में की गई थी। साथियों, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो सुरीला सफर के बन के हम सफर आज

आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

मित्रों, जीवन में कई मोड़ आते हैं। खुशियों में हम खुश होते हैं, दर्द में हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कभी तो ये राहें आसान लगती हैं, लेकिन कभी कभी ये राहें इतनी कठिन हो जाती हैं कि हम अपना धैर्य खो देते हैं। कठिन समय शायद हमारी परीक्षाओं का समय होता है, जिनमें कभी तो हम धैर्य रखते हैं और कभी टूट भी जाते हैं। जिंदगी के ताने बाने में धैर्य या सहनशीलता को धारण करना आत्म संयम को बढ़ाता है। धैर्य मुश्किल हालात में हमारे लिए किसी ढाल की तरह होता है और हम मुश्किल वक्त से पार पाने में समर्थ हो जाते हैं। जिंदगी फिर किसी प्यार के नगमे की तरह लगने लगती है।

स्वभाववश हम विपरीत परिस्थितियों में भी कभी कभी अपने आप को इतना फंसा हुआ महसूस करते हैं कि लगता है जिंदगी यहीं थम गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसमान के पंछियों की उड़ान जो नाजुक पंखों के भरोसे ही तय होती है, उन नदियों की धाराओं को देखिए जो रास्ते के पत्थरों को भी पार कर आगे निकल जाती है, वो माली जो फूलों और फलों के आने का इंतजार बड़ी धैर्यता पूर्वक करता है, चातक पक्षी स्वाति की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है, धरती धैर्य धारण कर अच्छे ऋतु चक्र में फसलों से लहलहा जाती है, तो क्यों ना हम अपने मन को इन पलों में धीर धरना सिखाएं।

समय एक सा नहीं होता, बदलता रहता है। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह होती है। एक नया सवेरा जागता है। उम्मीद की नई किरणें हमारे जीवन को ऊर्जा से भर देती हैं। हौसला जो हमने अपने दिल को बंधाया था, इस मुश्किल वक्त में संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा एक तरह से हमें दे जाता है। मुश्किल वक्त में न सिर्फ हम धैर्य रखें, बल्कि औरों को भी धैर्य बंधाएं। मुश्किल घड़ियां जरूर गुजर जाएंगी और ये पल खुशियों में बदल जाएंगे।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक
1: अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमरीका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमरीका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
1: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जन स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
3: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केंदुझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
4: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
5: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
6: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
5: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
7: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
5: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है पतीता।

0: की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का, आवाज है हेमंत कुमार की, फिल्म का नाम है 16वां साल।

0: है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ।
3: और
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है बात एक रात की।
5: मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत हेमंत कुमार की आवाज में। तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जाल।

0: वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी। फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
4: जरा नजरों से

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, आकाश कुमार और शिल्पा रानी, सुखजी नगर इंदौर से जगदीश चौहान पेंटर, ललिता चौहान, विशाल, आरुषि, प्रियंका, ख्याति, शक्ति, ऋतिक, शौर्य, बसंती बाई और किशन लाल जी चौहान, रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि और शिवांग त्रिपाठी, मनु विजय मिश्रा, गोविंदा साहू, अमन पीए और गोविंद ओमर और अमरजीत सिंह सांगा, बेनीपट्टी मधु बनी बिहार से अरविंद कुमार, निवेश कुमार, नियति कुमारी, मनिया कुमारी और गुड़िया कुमारी, करीमनगर तेलंगाना से लक्ष्मी नारायणा, विजया अभिनय, साई किरण, शेखर श्रीनिवास और पन्ना वेंकटेश, एकलव्य नगर जिला रंगारेड्डी से सुषमा, बाबू अकेला और बिजली। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है उपहार।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है उषा खन्ना की और फिल्म का नाम है साजन की सहेली। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका और सुशांत नायक, तेलीपाड़ा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी ईशानी, अनीता श्रीवास और छन्नूलाल श्रीवास, शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ बेमेतारा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, महामाया पाड़ा ग्राम दरचौरा से फिरंता साहू और दोरोलीन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमारी साहू की पसंद पर सुनिए ये गीत।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। नरेंद्रपुर कोलकाता से गौरी शंकर भट्टाचार्य, सौभाग्यवती रौली शंकर भट्टाचार्य, विष्णु चित्रकार देवदास भट्टाचार्य और कालिदास बाबू मोशाय, गराम लोहेडी महुबा उत्तर प्रदेश से।

जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागनी यादव, नौसारी गुजरात से रमेश सूर्यवंशी, मीरा सूर्यवंशी, सिद्धेश, माधुरी और गौरी सूर्यवंशी, गोबरेरिया रनकाल, हावड़ा से शाहिदा बेगम, रज्जाक अली, दीपक और स्वीटी, और नेवल आर्मामेंट डिपो मुंबई से मिस्टर अनुराग मलियाली। आप सभी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है शारदा।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 से सत्य प्रकाश सनोडिया, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दिग्रस से किरण शिंदे, जया शिंदे और अनुराग शिंदे, कुंवर कॉलोनी बुढ़वा एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता मुस्कान और अभय गुजराती, मौताड़ा महाराष्ट्र से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, रिसोड करडा से सानवी देशमुख, सर्वत देशमुख और समस्त राजे जाधव वायाड़ और देशमुख परिवार। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आप सभी दोस्तों की पसंद पर। पत्र लिखे हैं आपने जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रिहान, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीता बा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करदा राज सिसोदिया और समस्त सिसोदिया परिवार। गिरिराज सोसाइटी मोरबी गुजरात से आमिर आसिफ लाखानी, आसिम अजीम लाखानी और सानिया लाखानी। जूनागढ़ गुजरात से किरिट सोलंकी और मिसेज सोलंकी और राजकोट से नीरव की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है दोस्ती।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भी से और योगिता जाधव से। मनचाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।
1: मनचाहे गीत।
2: मन चाहेगी।

0: कौन कौन है? अरे ये मसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ ये पलंग के नीचे घुसी क्या कर रही है? कौन है तू?
1: हलीमा।
0: हलीमा, चल बाहर निकल। ला हौला वाला।
1: नहीं
0: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
1: हला मेरी टांग छोड़िए।
0: तू बाहर निकल।
1: नहीं आप मारेंगे।
0: जरूर मारूंगा। निकल तो निकल सीधी तरह।
1: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ो छोटे सरकार, मैं मर गई। अल्लाह।
0: क्या कर रही थी ये मसहरी के नीचे दबकी? क्या कर रही थी?
1: कुछ नहीं सरकार।
0: सरकार की बच्ची, क्यों आई थी कमरे में?
1: वो छोटे सरकार, उन्होंने नया बुबू ने भेजा।
0: तुझे नया बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था?
1: जी।
0: झूठी।
1: अल्लाह कसम।
0: क्यों भेजा था?
1: वो बस भेजा था। सच्ची छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी।
0: आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे?
1: सरकार कसम से बुबू ने।
0: झूठी।
1: सरकार आप सरकार।
0: मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? बोलती क्यों नहीं? बता, नायाब बुबू ने तुझे हमारे कमरे में क्यों भेजा था?
1: वो आपके पैर दबाने के लिए।
0: हमारे पैरों में क्या हो गया?
1: फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं।
0: हमारे पैरों में दर्द नहीं
1: सरकार।
0: चल भाग यहां से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं? निकल हमारे कमरे से
1: सरकार।
0: अब जाती है कि
1: मुझे ना निकालिए सरकार।
0: क्या पक रही है गधी? अब हमारा हाथ छोड़।
1: मेरी अच्छे सरकार।
0: देख हलीमा, तू अभी बच्ची है, तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं।
1: छोटे सरकार, अपनी लौंडियों को यूं न धुतकारिए।
0: ओहो कैसी बातें कर रही है हलीमा।
1: मैं आपकी बांदी हूँ छोटे सरकार, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी आपके कदमों में।
0: खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कह रही है? हम बांदी के रिवाज के सख्त खिलाफ हैं। हलीमा तुम बांदी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे, पहत के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे।
1: मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सैर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था।
0: ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी, किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा।
1: नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा।
0: कैसर नवाब?
1: जी, कैसर नवाब को मालूम नहीं कौन सी बीमारी है, सर से पैर तक सड़ रही।
0: मगर ये नहीं हो सकता।
1: यही होगा, उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है। 1800 की है कुत्तों की जोड़ी, वो कई बार मुझे मांग चुके हैं।
0: नहीं ये हरगिज नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे। हम प्यारी अम्मी से कहकर।
1: उनके हुकुम से तो नया बुबू ने मुझे भेजा है।
0: ये कैसे हो सकता है? प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं।
1: इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकरर की जाऊंगी।
0: मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
1: ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बुबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए भेजा जाए।
0: सरवरी को? ला हौला वला कुव्वत।
1: हाँ सरकार, बुबू मुझसे खफा नहीं क्योंकि मैंने जब्बार के मुंह पर जूती मार दी। मुए ने मेरी चुटकी काटी, मैंने पैर से जूती उतार कर दी नाक पर।
0: अच्छा किया, ये हरामजादा जब्बार बड़ा चलता पुरसा है।
1: नया बुबू ने बड़े नवाब से मुझे जब्बार के लिए मांगा, मगर उन्होंने कहा हलीमा तो मेरे छम्मन की है। अच्छा सरकार।
0: नहीं नहीं हलीमा छोड़ो।
1: मेरे नवाब।
0: हलीमा जाओ हलीमा, ये गुनाह है। Get out, you stupid girl.
1: छोटे सरकार।
0: तुम मुझे गुनाह के गार में घसीटना चाहती हो? निकल जाओ। Get out. Oh my God, my God.
1: या अल्लाह।
2: अरे भाई जहांगीर साहब और छमनिया, अरे भाई क्या हाल चाल है?
0: आपकी दुआ है अफजल भाई।
2: अमा यार क्या हर वक्त किताबों से सर मारा करते हो?
0: इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे जरा फुर्सत कम है, कहिए क्या काम है?
2: हम आए हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं, ये तो पुराना किस्सा है। अमा अमा ये क्या किस्सा है?
0: कौन सा किस्सा?
2: यही कि रात को तुम्हारी खिदमत में बांदी पेश की गई और तुम्हारे हाथ

0: पैर फूल गए।
1: ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं लौंडियों बांदियों के रिवाज को पसंद नहीं करता।
0: वजह?
1: मैं इसे बदकारी समझता
0: हूँ। ओहो, मगर मियाँ हमारे यहाँ ये दस्तूर बरसों से चला आ रहा है।
1: मैं इसे गुनाह समझता हूँ।
0: अमा घास खा गए हो? क्या हमारे बुजुर्ग गुनाहगार थे?
1: अतई गुनाहगार थे और मुजरिम भी।
0: ला हौल वला कुव्वत, ये भूसा तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात किताबें पढ़ पढ़ के भर गया है। किसी ने सुन लिया मियाँ तो पागल खाने पहुंचा दिए जाओगे।
1: ये घर कुछ पागल खाने से कम है, जमाने जहालत के रिवाज अभी तक कलेजे से लगाए बैठे हैं।
0: मैं हकीम साहब किबला के मतलब से होकर आ रहा हूँ, वो एक मुकवी माजून तैयार करवा रहे हैं।
1: मुझे मुकवी माजून की नहीं अफजल भाई, तन्हाई की जरूरत है, इम्तिहान करीब आ रहे हैं।
0: अमा यार लानत भेजो साले इम्तिहानों पर।
1: आप तशरीफ ले जाइए।
0: अमा हम तो तुम्हारे ही भले को।
1: आप सीधी तरह जाएंगे या नहीं?
0: बुजुर्गों की नहीं सुनोगे तो पछताओगे छमन मियां। बेचारी मुमानी साहबा सर पकड़े बैठी हैं, बड़े साहबजादे तो गए काम से, अब छोटे भी चले। मियां रियासत कोरट हो जाएगी अगर औलादे नरीना ना पैदा हुई।
1: औलादे नरीना शादी के बाद ही पैदा होगी।
0: मगर बांदी से क्यों भी देखते हो, शादी वक्त आएगा हो जाएगी।
1: और बांदी?
0: बांदी काम आएगी।
1: और हुरमा खानम बर्दाश्त करेंगे।
0: तुम्हारी मंगेतर पढ़ी लिखी है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो खानदानी रस्म रिवाज को नहीं समझती हैं।
1: यानी मेरी बांदियों पर उन्हें कोई एतराज ना होगा?
0: नहीं, बांदी बांदी है और बेगम बेगम।
1: तो मैं ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करूंगा।
0: अमा अजीब हवनक आदमी हो।
1: अगर कोई औरत अपने मियाँ की बांदी को बर्दाश्त कर सकती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो शोहर से मोहब्बत नहीं करती या उसमें खुददारी नहीं। मैं जिस औरत से शादी करूंगा उसे बराबर के हुकूक दूंगा। अगर मैं बांदी रख सकूंगा तो उसे भी गुलाम रखने की इजाजत।
0: ला हौल वला कुव्वत, मियाँ तुम्हारा भेजा तो सलामत है।
1: जब अब्बा हुजूर तवायफों के यहां जाते थे तो मैं सोचा करता था हमारी प्यारी अम्मी के दिल पर क्या गुजरती होगी।
0: ये तुम्हें क्या हो गया है साहबजादे?
1: जब्बार, अब्बा हुजूर की बांदी नायाब का बेटा है। मैं जब उसे अब्बा हुजूर की मोटर चलाते देखता हूं मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हमारा भाई है मगर उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है। अब्बा हुजूर कैसे बर्दाश्त करते हैं? मैं और जब्बार नहीं पैदा करना चाहता।
0: तो एक काम करो साहबजादे।
1: क्या?
0: जाते जाते मैं मिनहारन बी को भेजे देता हूं, चूड़ियां पहन के बैठे रहो घर में।
1: शुक्र खुदा का, चले तो सही। कौन हलीमा, तुम फिर आ गई? नायब बुबू?
2: मुझे नायब बुबू ने नहीं भेजा, आज मैं खुद आई हूँ।
1: हलीमा,
2: खुदा का वास्ता अच्छे नवाब, अगर मुझसे ऐसी घिन आती है।
1: नहीं हलीमा, हमें तुमसे घिन नहीं। तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम बहुत रोई, हमारा नन्ना सा दिल तुम्हें रोता देखकर तड़प गया। हलीमा, तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो, इतनी प्यारी कि तुम्हारी तरफ देखते हुए डर लगता है।
2: मेरे अच्छे नवाब।
1: नहीं नहीं हलीमा, हमारे इतने करीब ना हो। ये रात का सन्नाटा, इस पर तुम्हारे ये आंसू। हलीमा, हम इंसान हैं फरिश्ता नहीं, हमारे अज़्म को पाश पाश न करो, तुम्हारे आंसुओं से हमारा गरेबान चल उठेगा। रहम करो हलीमा।
2: रहम की भीख तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। कल कैसा नवाब अपने शिकारी कुत्ते बेच रहे हैं, मैं आपकी हूँ मियाँ, अपनी हलीमा को बचा लीजिए।
1: हलीमा, मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है।
2: मैं किसी की दुल्हन बनने से बेहतर आपकी लौंडिया बनना चाहूंगी।
1: मुझे बांदियों से घिन आती है, तो मैं तुमसे शादी करूंगा।
2: अल्लाह का वास्ता, शादी का लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालिएगा। याद नहीं सिकंदर नवाब ने अपनी निकाह की जिद की थी, उनके दादा ने निगोड़ी को जहर पिला दिया था।
1: कौन सिकंदर नवाब? वो पगले चचा?
2: हाँ, वो उसके गम में पागल होकर गली कुचों में खाक छानने लगे।
1: हम तुम्हें मरने नहीं देंगे हलीमा।
2: आपके फरिश्तों को कुछ पता नहीं चलेगा और आपकी हलीमा खाक में मिल जाएगी। आंख खोलकर आप ही को देखा और दिल में बसा लिया, आपकी बांदी बनना मेरे लिए मिराज से कम नहीं। आपकी और आपकी दुल्हन बेगम की खिदमत करूंगी और अपने नसीब को दुआ दूंगी।
1: नायाब बुबू की तरह और जब्बार पैदा होंगे, वो ड्योढ़ी पर पहरा देंगे या मोटर साफ करेंगे,
2: ये उनकी खुशकिस्मती होगी।
1: तुम जाहिल और बेवकूफ हो।
2: मगर हूँ आपकी।
1: ओहो, जाओ हलीमा, खुदा रह चली जाओ।
2: मुझसे पीछा छुड़ाना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए।
1: हलीमा, तुम्हारे हाथ कितने सर्द हो रहे हैं।
2: तो गर्म कर दो मेरे शहजादे।
1: हलीमा,

0: हलीमा, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। हलीमा, हम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कसम खाते हैं कि तुम्हें अपनी बेगम बनाएंगे। तुम हमारी दुल्हन हो, खुदा और रसूल खुदा की कसम तुम हमारी दुल्हन हो। हलीमा, हलीमा।
1: हर बात की एक हद होती है नायाब। लड़के को तो जैसे जुनून हो गया है, दुनिया जहान का होश नहीं। बांदी न हुई जी का आजार हो गए, अल्लाह रखे अपने बाप पर गए हैं। ऐसा ही जुनून था, मगर जब जब्बार पेट में आया तो सब चाव चौचले खत्म। तेल देखिए, तेल की थार देखिए, मुझे तो लौंडिया इन दिनों कुछ मरझिल जैसी दिखाई देती है।
2: ऐ सच, तुम्हें खुदा की कसम।
1: हाँ बेगम, भला इन आंखों से कोई बच सकता है? अब कोई दिन जाता है जो साहबजादे के सारे चाव चौचले खत्म।
2: अभी तो कुछ गर्मी में कमी नजर नहीं आती है।
1: आ जाएगी, आप देखते जाइए जी से उतरी कि साहबजादे घिन खाने लगेंगे।
2: तो फिर निगौड़ी को गांव भिजवा दो।
0: क्या गांव जा रही हो? क्यों?
3: मेरा जी चाह रहा है।
0: हमें छोड़कर चली जाओगी?
3: जल्दी आ जाऊंगी।
0: कितनी जल्दी?
3: थोड़े दिनों बाद।
0: कितने होते हैं थोड़े दिन?
3: यही कुछ 6-7 महीने।
0: 6-7 महीने?
3: आहिस्ता बोलो,
0: हम मर जाएंगे।
3: अल्लाह न करे, आपकी बलाएं मेरे सर, मेरे नौशा बुरी फाल मुझसे न निकाली। अल्लाह अपने रहम और करम से आपकी खदमत के लिए जरूर वापस लाएगा।
0: और जो न लाया हलीमा, तुम्हारे जाने के ख्याल से मेरी जान खींची जाती है, छाती में सांस घुट रही है। तुम क्यों जा रही हो हलीमा जान? ऐसा चीज डरता है कि तुम चली गई तो फिर वापस ना होगी।
3: नहीं नौशा, मैं बच जाऊंगी। सभी नहीं मर जाती, सनोबर की और बात थी। बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया था। हाय मैं मर जाऊं, ये क्या कह रही हूँ?
0: बच्चा?
3: नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं
0: मेरे सर की कसम खा।
3: नहीं अल्लाह नहीं।
0: हलीमा तू झूठ बोल रही है, इसमें रोने की क्या बात है?
3: मैं मर गई तो सरवरी आपकी खिदमत करेगी।
0: सरवरी? नहीं हलीमा, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगी हलीमा
3: जी।
0: बच्चा कब तक होगा?
3: 6 महीने बाद।
0: अगर रोएगा तो हम पाजी को बहुत डांटेंगे।
3: गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी सरकार?
0: तुम गांव नहीं जाओगी।
3: ऐसी बातें नहीं कीजिए सरकार।
0: मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
3: लीला मेरे भोले सरकार, ये महल का दस्तूर है।
0: हम इस घिनौने दस्तूर को तोड़ेंगे
3: सरकार।
0: शट अप।
4: घोड़े बचिए हशमत नवाब।
5: ये लीजिए।
4: ये शह वो मारा।
0: भाईजान, मुझे आपसे कुछ बातें करना थी।
5: अम्मा इस वक्त बड़े जोर की बाजी जमी है खुदा की कसम। लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
0: भाई जान,
5: अम्मा क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
4: शेह हजमत नवाब शेह।
0: उफ। प्लीज भाई जान, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है।
5: उफ, वो कहो क्या कहना चाहते हो।
0: जरा मैं।
5: अम्मा तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, अफजल भाई से क्या पड़ता।
0: भाईजान,
5: अम्मा कह भी चुको।
0: हलीमा को गांव क्यों भेजा जा रहा है?
4: क्यों इतना सटपटाते हो बरखुरदार? अरे तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा।
0: मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए।
4: सरवरी जालिम पटाखा है पटाखा, है क्या उठान है। अम्मा उस चिपकली से तुम्हें कह नहीं आती।
0: अफजल भाई,
5: अच्छा जाने दो, आगे चलो।
0: मैं उसे गांव नहीं भेजने दूंगा।
5: मियां ये महल का पुराना दस्तूर है।
0: वो गाय भैंस नहीं, वो
4: कहो कहो शर्मा क्यों गए?
0: वो मेरे बच्चे की अमानतदार है।
5: शर्म करो मियां साहबजादे, बड़े भाई के सामने मुंह फाड़कर अपने करतूत की शेखी मार रहे हो। ला हौल वला कुव्वत।
4: महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का दखल नहीं होता। प्यारी अम्मी जो मुनासिब समझती हैं वही करती हैं।
0: भाई जान,
4: और फिर सितंबर के महीने में हुरमा बीबी से तुम्हारा निकाह होने वाला है।
0: मैं हुरमा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी।
5: बहुत खूब, वो कब?
0: मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हलीमा को अपना लिया।
5: और निकाह? काजी कौन था?
0: खुदा और रसूल के बाद काजी की जरूरत नहीं।
4: वल्ला तुमने अपना निकाह खुद पढ़वा लिया, अच्छी दलील है।
5: जाओ मियां, क्यों वक्त जाया कर रहे हो। हाँ भाई अफजल भाई, दूसरी बाजी जमाएं। ला हौले वला कुव्वत, सारा मजा किरकिरा कर दिया।
0: میں حلیمہ کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا جو سنوبر کے ساتھ ہو.
6: چمن میاں تم جامے سے باہر ہو رہے ہو, اپنے بڑے بھائی کا دل دکھاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟
0: میرے بڑے بھائی کا دل پتھر کا ہے, انہیں دکھ نہیں ہوتا.
5: دور ہو جاؤ میرے سامنے سے, اس سے پہلے کہ میں یہ بھول جاؤں کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو. دفع ہو جاؤ یہاں سے.
0: بھائی جان میں
5: بدتمیز.
6: ارے ارے یہ کیا کرتے ہو حشمت میاں؟ کیا
5: میں اس مردود کا خون پی جاؤں گا؟ اسے ہمت کیسے ہوئی؟
6: چلے جاؤ چمن میاں, خدا کا واسطہ بھائی چلے جاؤ یہاں سے.
7: بیگم صاحبہ ایک بات کہوں؟
1: کہہ بھی چکو, کیا کہہ رہی ہو؟
7: نجم بٹیا بھی تو اللہ رکھے امید سے ہیں.
1: اس کا اس وقت کیا ذکر لے بیٹھی؟
7: اللہ سلامتی سے فراغت دلائے. فراغت پا کر ولایت جانے کا ارادہ ہے.
1: ہاں ہاں خدا جیتا رکھے میری لاڈلی کو.
7: آمین. تو گود والے کو ولایت سنتو نہ لے جائیں گی؟
1: دیوانی ہوئی ہو, وہاں مئی ٹھٹرن میں گوشت کی بوٹی کو کیا لے کے جائے گی؟ خیر سے وہ میرے پاس ہی رہے گا.
7: اور دلہا نواب کا اکیلے جانا بھی درست نہیں, وہ مئی فرنگن پھر ہی لگ جائے گی.
1: اے ہے دیوانی ہو گئی ہو نایاب, اس وقت اس پیاروں پیٹی میم کی میت کاہے کو پیٹنے بیٹھ گئی؟
7: اللہ جانتا ہے بیگم, آپ تو زبان قطرے لیتی ہیں, منہ جلی کی بات تو سنیے. آپ کا نمک کھایا ہے تو کیا میں؟
1: اے بوا تو کچھ منہ سے پھوٹو تو.
7: نجم بیٹیا اور حلیمہ کا بس دو چار دن کا فرق ہوگا, ہفتے بھر کا بھی ہوا تو کوئی بات نہیں, بچے کو پاک صاف دودھ ملے گا.
1: مگر ابھی 6 مہینے پڑے ہیں, خیر سے اس وقت مئی کو بلا لینا. اس وقت تو مردار کو دفع کرو.
7: جو حکم سرکار, مگر گاؤں میں اچھی دیکھ بھال نہ ہوئی تو دھان پان تو ہے ہی اللہ ماری. یہاں میرے نظروں کے سامنے رہے گی تو مئی کو اچھی طرح کھلاؤں گی پلاؤں گی, اور پھر صاحبزادے کی ضد بھی پوری ہو جائے گی.
1: ضد ہی تو میں پوری نہیں کروں گی.
7: آپ کی مرضی, مگر اتنا کہہ دیتی ہوں صاحبزادے بھی ضد کے پورے ہیں, بس کچھ دن جاتے ہیں کہ آپ ہی آپ صاحبزادے کے دل سے نامراد اتر جائے گی, اپنا کام بھی نکلے گا اور چھدا ان پر دھرا جائے گا.
1: کبھی سوچتی ہوں نایاب تم نہ ہوتی تو.
7: اللہ نے آپ کی خدمت کی سعادت بخشی, یہ میرے نصیب ہے بیگم صاحب.
1: ذری خاصدان آگے بڑھا.
7: لیجیے حکم ہو تو آج حرما بی بی کو زیورات دکھا لاؤں, دیکھیں کیا کچھ پسند فرماتی ہیں.
1: اچھا دکھا لاؤ.
7: اے بی متن تمہاری بیگم کہاں ہے؟ جاؤ ذرا عرض کرو نایاب خدمت میں حاضر ہوئی ہے.
8: اوہو نایاب بہو, کہیں محل میں سب کیسے ہیں؟ اچھے تو ہیں؟
7: جی ہاں سب اللہ کا فضل ہے. بیٹھیے بٹیا,
8: ذرا نہانے جا رہی ہوں, آپ بیٹھیے, امی آتی ہی ہوں گی.
7: لانڈری تو آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی.
8: کیا ہے؟
7: یہ زیورات پسند فرمائیے.
8: کیوں
7: رانی بٹیا, نواب دلہن نے زیورات بھیجے ہیں, ان میں سے جو پسند ہو وہ فرما دیجیے, باقی کے لیے بمبئی آرڈر جائے گا.
8: میں کیوں پسند فرماؤں؟
7: چھوٹے سرکار کی ضد ہے کہ آپ کی رائے کے بغیر کچھ نہ خریدا جائے.
8: کون چھوٹے سرکار؟ چھمن میاں؟
7: جی جی ہاں.
8: اوہو حلیمہ بیوی کے لیے مجھ سے زیورات کیوں پسند کروا رہے ہیں؟
7: کیا فرما رہی ہے بٹیا, چھوڑیے مزاق. یہ دیکھیے یہ ولایتی جگنو, کیا کہتے ہیں اسے اللہ مارا, یہ ہاں لاکٹ.
8: اس میں مزاق کی کون سی بات ہے, چھمن میاں بھی دیوانے ہیں, اپنی بیوی کے لیے زیور خرید رہے ہیں تو میری پسند کی کیا ضرورت
7: ہے؟ ہے رانی بٹیا کیا فرما رہی ہیں آپ؟
8: کیوں کیا حلیمہ ان کی دلہن نہیں ہے؟
7: خدا نہ کرے, حلیمہ تو باندھی ہے.
8: بچہ تو چھمن میاں کا ہے نا.
7: بچہ؟ کیسا بچہ؟
8: فرخندہ خالہ کہہ رہی تھی کہ.
7: اے بس کرو بٹیا, خدا نہ کرے یہ لونڈیاں باندیاں ادھر ادھر کا کوڑا محل کے ماتھے تھوپنا چاہتی ہیں.
8: بولو بولو جبار کی قسم کھا کر کہہ دو.
7: اے بٹیا آپ بھی غضب کرتی ہیں, آخر کو نوابزادے ہیں, مگر وہ لونڈی باندھی تو جی کا بلاوا ہوتی ہے, ان کمبختوں سے شادی بیاہ نہیں ہوتا.
8: تو نوابزادے شادیاں کس سے کرتے ہیں؟ ہم نوابزادیوں سے.
7: اور کیا بٹیا رانی,
8: حشمت بھائی کی تو ایک باندھی تھی, کیا نام تھا, سنوبر.
7: یہ وہ رانی بٹیا یہ زیور تو ملاحظہ فرمائیے.
8: ایک بات پوچھوں, سچ سچ بتاؤ گی ببو؟
7: شوق سے پوچھیے, مگر وہ
8: نوابزادوں کے لیے تو باندیاں ہوتی ہیں اور نوابزادیوں کے لیے غلام.
7: ہائے ہائے بٹیا رانی ذرا تو شرم کیجیے, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
8: کیوں اگر چھمن میاں کو جی بہلاوا چاہیے تو ان کی دلہن کو بھی تو.
7: اما جان نہیں, اس لیے مجھ بڑھیا کی گت بنا رہی ہیں, وہ ہوتی تو مزہ نہ تھی جو یوں میرے منہ پر جوتیاں مارتی. بیٹی جان یہ گز بھر کی زبان لے کر کسی اونچے خاندان میں کیسے نبھے گی؟
8: خدا نہ کرے جو میں کسی اونچے خاندان کو نبھانے جاؤں. मैं ऊंचे खानदानों को गिलाजत का ढेर समझती हूँ।
7: बस बीवी, बहुत दुर्गत बना ली, बंदी चली।
8: आय हाय बुब्बू, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा।
7: जिनका सारी उम्र नमक खाया उनको तो कहा, तो मेरी सात पुष्टों को कहा।
8: ओहो, नायाब आई है, चली कहाँ? क्या हवा के घोड़े पे सवार आई हो? ये डब्बे कैसे है?
7: बिटिया रानी को जेवर दिखाने को भेजे हैं। खैर से बकरीद की चांद निकाह है, जेवर बंबई से बनकर आएंगे।
8: नायाब बूबू, तुम खानदान से अलग नहीं, तुमसे कौन सा भेद छुपा है? समझ में नहीं आता किस मुंह से कहूँ। जमाना बदल रहा है बुआ, आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते।
7: मैंने तो पहले भी कहा था बेगम, ये फरखुंदा बेगम की सोहबत रंग लाएगी।
8: ऐ है कैसर नवाब, कीड़ों भरा कबाब, लानत उसकी सूरत पर।
7: आप बहुत भोली हैं बेगम, नवाबों में हजार ऐब हुआ करते हैं, मगर खसम को छोड़ के दूसरा करना और वो भी बाल बच्चों वाली होकर, तौबा मेरी तौबा। बाबा ने पढ़ा लिखा के बेटी का सत्यानाश मार दिया।
8: ऐ खानदान ने उनका हुक्का पानी बंद करके क्या बिगाड़ लिया। जहाँ जाते हैं लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, नाम है, इज्जत है।
7: सुना है मियाँ की कमाई पूरी नहीं पड़ती तो खुद नौकरी करती है, मर्दों के कॉलेज में पढ़ाती है बेगम। नौच, यो कोई शर्म हया बेच खाए तो क्या अर्ज करूं बेगम से जाके?
8: यही कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी एक नहीं चलती।
9: अम्मा, हमारे सामने अपनी बदकारियों का इस ढिठाई से इकरार, एक तो मोरी में मुंह देते हो और।
0: मगर प्यारी अम्मी ने हलीमा को मुझे दिया, वो मेरी है, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरे बच्चे की माँ है।
9: मियाँ तुम बिल्कुल ही बच्चे हो।
0: दूस भाई, आप नहीं समझते।
9: इसमें समझने की क्या बात है साहबजादे?
0: हलीमा मर जाए।
9: मर जाने दो साली को, हम तुम्हें अपनी माँ रोक देंगे। वल्ला क्या पटाखा है।
0: कमीने पाजी।
9: छमन, होश में आओ, क्या पागल हो गया?
0: हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं किसी का खून कर दूंगा। चले जाइए यहां से। हलीमा, हलीमा।
10: जी सरकार।
0: कौन सरवरी?
10: जी।
0: तू यहाँ क्या कर रही है?
10: आपके पाजामे में कमरबंद डाल रही हूँ, बटन कहाँ है? कुर्ते में लगा दो।
0: चल भाग यहाँ से, और हलीमा को भेज।
10: मुझे बेगम साहब ने भेजा है, हम्माम में पानी तैयार है।
0: हलीमा कहाँ है?
10: ये लीजिए कुर्ता, नया तौलिया हम्माम में लगा दिया है।
0: ओहो, हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है।
10: अल्लाह, हमें क्या मालूम है, उधर कहीं बैठी होगी।
0: जा बुला ला, जाती है कि मार खाएगी। चल भाग।
10: हम नहीं जाते।
0: कहाँ है हलीमा बता।
10: उई अल्लाह, मेरी छोटी तो छोड़िए, हाय मैं मर गई, हाय मेरी मैया।
0: बता, नहीं बताएगी?
10: बताती हूँ।
0: बोल।
10: वो उधर शागिर्द पेशे में है।
0: क्यों?
10: वो उसका जी अच्छा नहीं है।
0: ओह,
10: मियाँ खुदा का वास्ता कहाँ जा रहे हैं, मर्दों के जाने का वक्त नहीं।
0: फरखुंदा बाजी।
10: अरे छमन मियाँ, क्या पैदल भागे चले आप?
0: साइकिल पर। फरखुंदा बाजी, वो मर रही है।
10: अहे कौन?
0: हलीमा, प्यारी अम्मी ने उसे काल कोठरी में फेंकवा दिया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलवा दीजिए, तो बोली भको मत।
10: ठहरो,
0: वो मर जाएगी सनूबर की तरह।
10: नहीं मियाँ, तुम्हारी हलीमा नहीं मरेगी, मैं चलती हूँ, जरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूं।
7: बुबू, नायक बुबू, अस्पताल की लॉरी आई है।
1: अस्पताल की लॉरी? दीवानी हुई है ना मुराद?
10: अल्लाह कसम, चल के देख लो।
1: ये क्या किस्सा है नायक?
10: लॉरी के पीछे फरखुंदा नवाब की मोटर, मैंने अपनी आंखों से उतरते देखा, साथ में छमन मियां भी हैं।
1: तो ये बात है, फरखुंदा नवाब की ये हिम्मत।
7: लीजिए, वो आ गई।
10: तस्लीम मानी जान।
1: जियो, ये मैं अस्पताल की लॉरी क्यों आई है?
10: हलीमा को लेने।
1: तुम्हारी अकल मारी गई है फरखुंदा नवाब?
10: इस वक्त बहस ना कीजिए, पहलोठी का बच्चा है, अगर
1: तुम्हारी बला से। तुम कौन होती हो महल के मामलात में दखल देने वाली?
10: देखिए मुमानी जान, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अगर केस बिगड़ गया तो याद है सनोबर का किस्सा।
1: हद से न बढ़ो फरखुंदा।
10: मुझे मजबूर ना कीजिए मुमानी जान।
1: क्या मतलब?
10: मतलब ये कि फिर मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा।
7: पुलिस? या अल्लाह,
1: मामू को पुलिस चढ़ा के लाओगी? गारत हो मेरे सामने से।
10: छमन, स्ट्रेचर मंगवाओ।
0: नहीं, मैं उठा लूंगा।
10: संभाल के इस चादर में लपेट लो।
3: आप क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अल्लाह का वास्ता, मुझे मर जाने दीजिए।
0: चुप रहो बेवकूफ।
3: कमबख्त लालटेन भी तो बुझी जाती है। ओफो।
0: कोई बात नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है।
11: ये क्या हो रहा है?
3: आदाब मामूजान, हलीमा को अस्पताल ले जा रहे हैं।
11: हमसे पूछे बगैर?
0: ये मर जाएगी अब्बा हुजूर।
11: मर जाने दो।
0: अब्बा हुजूर,
11: इसे पलंग पर डालो और हमारे साथ आओ।
0: नहीं,
11: तुम्हारी ये हिम्मत? एक जलील बांदी के लिए हमसे गुस्ताखी कर रहे हो बेशर्म?
0: ये बांदी नहीं, मेरी बीवी है।
11: क्या बकते हो मर्दूद? हम तुम्हें आग कर देंगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देंगे।
0: मुझे आपकी दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए।
11: तुम्हारे इतने दिमाग?
7: होश में आओ बेटे, मैं मुझे डॉक्टर नहीं बुलवा दूंगी।
0: नहीं प्यारी अम्मी, अब ये महल मेरे और मेरी बीवी के लिए जेल से बदतर है।
7: अरे कहाँ जा रहा है छम्मन मेरे लाल, इस बला को लेके कहाँ जाएगा बेटे?
0: दुनिया बहुत बड़ी है प्यारी अम्मी, सभी तो इस महल में नहीं रहते। मैं भी वहां जा रहा हूँ जहाँ और करोड़ों रहते।
7: न जाओ मेरे लाल।
0: खुदा,
7: न जाओ मेरे लाल छम्मन।
11: जाने दो बेगम, साहबजादे नाक के बल चलकर वापस आएंगे। जरा दो चार थपेड़े खा लेने दो, मिजाज दुरुस्त हो जाएंगे।
7: वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। मैं उसे जानती हूँ ना, मुराद बांदी ने मेरे लाल पर जादू कर दिया।
3: नहीं बुबू, कैसे हैं चमन मियाँ के साहबजादे, कैसे हैं बताओ ना।
12: मेरे कान नखा, मुई छाती में सांस तो समाती नहीं, दम तो लेने दे रही।
7: अरे अब दम बाद में लेना, पहले बताओ बच्चा कैसा है?
12: बेगम बस चांद का टुकड़ा है, वो अपने दादा की सूरत।
7: घर बार कैसा है?
12: है बेगम, कुर्बान जाऊं ना घर ना बार, मुई तिल बराबर कोठरी है। बस अल्लाह रखे आपकी मुसहरी जितनी होगी कि उससे कुछ बड़ी। पर बेगम क्या बताऊं, मेरा तो देखकर कलेजा फट गया। मैं गई तो हलीमा अंगीठी पर कुछ पका रही थी और छम्मन ने वहां पलंग पर लेटे थे, एक हाथ में किताब थी और दूसरे से बच्चे का झूला हिला रहे थे।
7: या अल्लाह, खुदा समझे उस नामुराद बांदी से।
13: नाट्य तरंग में अभी आप इसमत चुगताई का लिखा नाटक बांदी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे मुहाफिज हैदर, डॉली रिजवी, सैयद अहमद रिजवी, क्यू एन कश्मीरी, मुमताज बशीर, सुरैया डागर, सिकंदर जहां, रेखा गांधी, शमीम बानू, प्रकाश अरोड़ा, शाहगुल दुर्रानी और हेमांगनी रानडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
14: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
15: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
14: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
16: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
14: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
17: तुम्हारी याद सताती है।
14: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया, इतने बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा, क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी तब?
2: हाँ, हाँ।
1: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रही?
2: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों के सामने खड़ी हूँ, मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर रही हूँ, ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था।
1: जी बिल्कुल।
2: अब उनके पास गई वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं जब गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में, बहुत बड़ा हॉल था उनका और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स नहीं कहती, वो बैठे थे, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब। तो ये है, वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे जो हमको रिकॉर्डिंग्स के मैसेज दिया करते थे, जागीरदार जी बोले, साहब जी ये इतनी छोटी, आजा बेटा गाना कौन लिखेगा, तो मौसी लिखती थी।
1: अच्छा।
2: जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, बोला देखो अब मैं सुनाता हूँ आराम से, हाँ डरने का नहीं। अब उन्होंने शुरू किया, अगर मैं अपनी जुबानी कहूँ तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट है मंदाकिनी जी,
1: जी
2: बहुत फास्ट। तो जैसे ही मदन मोहन जी ने गाना गाया तो मैं रुकी, क्योंकि ये तमीज सिखाई गई थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तुम गाओ, तुम्हें याद भी हो गया तो।
1: अच्छा।
2: तो मुझे देखा, बोले एक बार और गाऊं, कहा नहीं मैं गाऊं, तो बोले गाओगी कहाँ। तो मैंने शुरू किया, वो गाना था कुछ कोशिश फिल्म का गाना था, हमसे है वतन हमारा और वतन से हम, देश है धर्म हमारा, देश है करम, तररम परम परम पतररम, ये गाना
1: जी,
2: था
1: जी।
2: तो मैंने कहा मैं गाऊं, तो बोले गाओ। मैंने शुरू किया, उन्होंने बाजा बंद किया, अब सब डर गए कि भाई अब कुछ तो होगा। बोले जागीरदार सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आए इस बच्ची के लिए। और मुझे देखा, तुम्हारा पिकअप तो बहुत अच्छा है बेटा।
1: बिल्कुल।
2: तो मौसी को पूछा, अब सीखती है? मौसी ने कहा हाँ भी थोड़ा सीखने लगी है। अरे सिखाइए इसे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, इतना भी काफी था।
1: हाँ,
2: उनके लिए इतना कहना ही
1: बहुत
2: काफी
1: बड़ी
2: था।
1: बात।
2: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में इसे सुनहरे अक्षरों से मैं

0: देखूं तो भी कम है,
1: कम है जी
0: है ना।
1: जी जी
0: उनके साथ तो ये था मेरा, नौशाद साहब, उनके बंगले पे बुलाया उन्होंने कार्टर रोड, और मैं गई। उस वक्त मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद कम तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे
1: सीखा
0: तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याण जी अंकल ने, वो भी एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी,
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीज़ें सुनाना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें सिखाया है।
1: जी
0: तो हम गए, और वो भी टेनिस खेलने गए थे, वो दिलीप
1: अच्छा
0: साहब के साथ खेलते
1: हाँ
0: थे
1: हाँ
0: टेनिस।
1: हाँ
0: शाम को हम पहुंचे, उन्होंने, उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश होके आए। तो अबू साहब ने, हाँ हाँ खां साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें, पूरे बच्ची को कुछ सिखाया है आपको, हाँ हाँ हाँ प्लीज सुनाइए सुनाइए। तो मैंने कुछ गजलें उनको सुनाई,
1: जी
0: और सुनकर मंदाकिनी जी तकरीबन 6:30 बजे मैंने शुरू किया, एक गजल सुनाई, बोले कुछ और सुनाओ बेटा, फिर और करते करते 10 बज गए,
1: रात की
0: आप यकीन नहीं करोगे, और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले,
1: जी
0: मंदाकिनी जी बोले, बेटा काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाती हो, और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइंस हैं, तो क्या तुम गाना पसंद करोगे।
1: अरे
0: तो
1: जी
0: अबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार आई ना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त, बिल्कुल आखिर आखिर में सुनहरा संसार का, उसमें एक गाना था, मैं बताता, वो भी रफी साहब के साथ, बाबुल के घर के बाद पी की गली आती है, देवर भाभी में दर टली जाती, फिर हम जो तुझे छेड़े ओ भाभी तो क्या है खराबी,
1: अरे
0: इतना ही था
1: वाह
0: बस।
1: जी
0: तो अबू साहब ने कहा, नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया, जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट,
1: जी
0: अरे
1: जी
0: तो उत्तम भैया ने बहुत, वो तो हमेशा ही हेल्प करते थे। तो बस फिर वो गाना मैंने गाया, फिर एक दो डबिंग्स के लिए भी बुलाया उन्होंने।
1: आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई, तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है? और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं मंदाकिनी जी 12 साल की थी? तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा। पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने? बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
0: जी जी जी जी जी।
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूं, मैं वो पहले से बहुत जहनी थी मैं। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
0: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
1: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना, बोलो पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तू, उस पे बात पे आ गई। पर वही
0: जी,
1: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
0: जी बिल्कुल,
1: वो था बस।
0: तो, और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
1: और जहाँ तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आर डी बर्मन
0: जी,
1: मेरे पंचमदा
0: जी।
1: इतनी प्रभावित कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूँ।
0: जी,
1: तो
0: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
1: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
0: बॉन्डिंग
1: बहुत
0: जो थी,
1: बहुत बहुत अलग।
0: तो क्यों ना पंचम दा का ही गीत सुन लिया जाए, जिसमें आपने अपनी आवाज दी।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
0: थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
1: कोशिश करूंगी, गला बंद है पर कोशिश करूंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले।

0: वाह वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो
1: जी,
0: वो बच्चा अपने
1: वो मुझे पंचम दा ने सिखाया पता जी, है उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो
0: जी,
1: शर्मिला हाँ। जी कैसे बोलती हैं
0: हाँ।
1: मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ तो मैंने थोड़ा सब बोले यही चाहिए मुझे हाँ आगे क्या है डैडी
0: हाँ।
1: मैं तो भूल ही गया मुझे वो चाहिए बहुत यादें आपने ताजा की
0: जी,
1: आज
0: जी, जी।
1: मैं इसी बात पे आऊंगी। कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना जैसे मैं
0: जी
1: मुझे खुद को भी इस बात अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी
0: अच्छा
1: इस गाने को लता जी गाने वाली थी
0: अच्छा
1: जी मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहाँ से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं एक लाइन ही दे दूं एक डायलॉग ही दे दूं तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
0: जी,
1: कोई भी गाना अच्छा पर तेरा दादा तुझे तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम गवाएगा ना पंचम
0: अरे
1: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए प्रॉक्सी तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं नहीं तो मुश्किल है तो ये दो पार्ट्स में है गाना आपको भी याद होगा एक किशोर काका का सोलो है वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे दो शिफ्ट्स में काम होता था तब 9 से 1 और फिर 3 से आगे
0: अच्छा
1: और फिर ओवर टाइम तो वहीं सोए थे वो उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचमदा ने बोला सुनो लास्ट अंतरा लिखो और देखो

0: लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
1: जी,
0: बहुत ज्यादा।
1: जी
0: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे,
1: वो कि गाएगी, आप
0: हाँ बोले वो गाएगी, गाएगी पंचम, वो गाएगी, गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी।
1: जी
0: जब वो आए, उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की जरूरत नहीं है, ये आवाज़, ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसका जो, इसकी आवाज़ जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल
1: सूट करती है,
0: इस करके ये गाना मुझे मिला।
1: तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं, आपकी पसंद का बताइए। तेरा मुझसे है पहले का नाता,
0: बिल्कुल,
1: कोई
0: बिल्कुल
1: आप ही का गाया हुआ सुन।
0: जी जी

0: था मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान
1: जी, जी
0: ये गाना बन गया
1: जी बिल्कुल।
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: क्या
0: है,
1: बात है।
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं
1: जी,
0: लोगों ने
1: जी, जी।
0: किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रख

0: वाला है, उसी को बुलाना तू आ जा। हाँ, ये जो वो बोलते थे ना मंदा, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही हूं।
1: जी जी
0: देखिए,
1: जी
0: मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर, उनके लिए ये है सिर्फ, यू नो, कि तारा रा रा रा, ये हुआ खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये रा रा रा, और सॉफ्ट, उसी को बुलाना तो आ जा।
1: क्या बात है, क्या
0: तो
1: बात है,
0: ये मैंने
1: ये
0: उनसे
1: आधार का
0: सीखा,
1: जी, ये पंचम धाम में ही
0: या
1: ये गुण
0: ये
1: थे
0: उतार चढ़ाव
1: जी
0: डायनामिक समझे से
1: जी
0: कहते,
1: जी जी
0: कहाँ कितना आपको जोर देना
1: देना
0: है,
1: है,
0: कहाँ आपको कितना सॉफ्ट करना है,
1: वाह
0: कहाँ आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है।
1: वाह
0: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के, पता नहीं यही अंतरा गाते थे।
1: जी जी जी मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का
0: हाँ,
1: प्यार मिला, स्नेह मिला,
0: बहुत
1: उस
0: बहुत
1: छत्र छाया में आपने
0: बिल्कुल,
1: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
0: ये मेरा
1: जो
0: भाग्य ही है।
1: नसीब नहीं
0: हाँ
1: मिलता है, अच्छे
0: बिल्कुल,
1: अच्छों को नहीं मिला है।
0: नहीं
1: अभी
0: मिल,
1: भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है
0: ना ना
1: जिनको
0: ना
1: हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले
0: ना
1: सके
0: ना
1: सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: उतना ही।
1: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान है।
0: हाँ, बिल्कुल जी।
1: तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू गाऊंगी।
0: जी बिल्कुल,
1: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी
0: कोल्हापुरी
1: कोल्हापुरी।
0: ने जी।
1: लेकिन इसके क्या होता, वहाँ प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स, मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए, वो नागरा क्या बोलते हैं ना, नागरा वो लेकर
0: जी
1: आते
0: जी
1: थे।
0: जी जी
1: तो वहां एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट, मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया,
0: अच्छा,
1: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया, मंदाकिनी जी
0: नासिर हुसैन साहब
1: जी,
0: ने।
1: कि मैं बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर
0: अरे
1: अब सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब
0: हाँ
1: क्या
0: हाँ
1: नहीं। मैंने
0: हाँ
1: कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूं और मैं लता जी के साथ गा रही हूं,
0: सबसे बड़ी
1: वही
0: बात
1: मेरे लिए काफी है।
0: जी।
1: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा। फिर ये तो यादों की बारात, वो गाना बजाए,
0: यादों की
1: यादों
0: बारात
1: की
0: निकली
1: बारात
0: है आप,
1: निकली है
0: पर
1: आज।
0: आपको गाना
1: हाँ
0: होगा, शर्त यही है।
1: प्लीज मैं कोशिश करूंगी।

0: सपनों की शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूँ ना, फेड इन फेड आउट पुश बैक
1: जी,
0: पुश बैक
1: जी,
0: वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचमदास से सीखी
1: जी।
0: डा डा रा रा रा रा रा, आप समझे,
1: वो खुद भी ऐसे ही गा देते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, डा रा।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा, तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात एनचंदा की फिल्म
1: धर्म कर्म भी था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मुकेश अंकल के साथ,
0: और एनचंदा की फिल्म अंकुश का इतनी शक्ति हमें देना दादा, जिसमें आपने पुष्पा पाकधरी के साथ
1: बिल्कुल।
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया, इस गीत को गाना आसान नहीं था?
1: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे, फिर मैं गाती थी एक तो नाम, ये मेरा चॉइस रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती,
0: अच्छा।
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो, तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, हम माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी
0: जी,
1: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत ही अलग गेम है,
0: विधा है,
1: बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है, लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में मुझे लगता है बचपन से था प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा माटी के, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आरके बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए, राज साहब प्लीज आप तो आप ही की फिल्म है, एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है, कर दो ना, अच्छा ठीक है, ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया। तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरम पम कैसे चाहिए, तरम पम, उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
0: जी
1: ए मुकेश चंद वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरम पम नहीं आ रहा है तुम्हारा,
0: अरे
1: पर उनका बड़प्पन देखिए। ये पहले भी एक बार मैं मुकेश झट से बताती हूँ, मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बापी दा की पहली फिल्म थी
0: जी,
1: नन्हा शिकारी,
0: अच्छा
1: हाँ, ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे, तो वो बापी दा की पहली फिल्म थी। और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बापी दा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था, चाहे मझधार में नैया हो, वो उसको तुम ज्यादा मत खेचो, तोड़ दो नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस कि अब तो गदा पड़ी, लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए,

0: बजा बजा कर गाते थे हाँ, इवन रिकॉर्डिंग्स में. वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही आप,
1: अरे
0: बड़प्पन देखिए.
1: क्या बात है.
0: वहां मैंने ये एक और मैं बहुत नोट करती थी ये सब बातें,
1: ये नम्रता भी,
0: ये नम्रता होना, अपनी कमजोरी को समझना, जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है.
1: और एक बच्चे के सामने जब कहा जा रहा हो उसको अप्रिशिएट करते हुए,
0: और वही बात इस गाने में भी हुई कि मुकेश चंद वो तरमपम बच्चे की तरह तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे.
1: अरे
0: राज बच्चा तरमपम बोलेगा और मैं बोलूं उसमें फर्क तो होगा. अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो क्या, अच्छा बता बेटा कैसे बोल रही है, तरमपम तरमपम. नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो, उसी से बुलवाओ.
1: क्या
0: नहीं तुम्हारे अंतरे में तुम बोलोगे, चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो. तो ये जो मैंने सब देखा, ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस,
1: बिल्कुल
0: कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा,
1: बिल्कुल इसको इसको स्वीकार कर लेना,
0: ये ईमानदारी
1: जी
0: है
1: जी,
0: ना
1: जी,
0: ये सब मैंने सीखा मंदाकिनी जी.
1: जी, जी
0: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए
1: जी,
0: क्यों मैं समझती हूँ हर कलाकार के लिए ये वो है,
1: फिल्म धर्म कर्म का
0: वो जो अंतरा है कि
1: हाँ.
0: ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मतवाले सब सोचे.

0: दिन बिक जाएगा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, ये हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे लिए ये गाना बजाएं।
1: बिल्कुल, ये गाना हम बजाएंगे और हमारे श्रोता सुनना भी चाहेंगे, तो चलिए सुनते हैं जी ये गीत।

0: गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना चाहता, ये आपका शायद अंतिम गाना था।
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी।
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
0: जी,
1: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे,
0: जी शिवांगी,
1: जो शक्ति कपूर जी की बीवी और श्रद्धा कपूर
0: की बहन,
1: और श्रद्धा कपूर की मम्मी
0: है,
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी। मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी,
0: और उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
1: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब, वो कौन थे वो, मैं क्या थी उनके आगे और क्या हूं, इज नासिर हुसैन। और मेरी मेरी किस्मत देखिए, एक के नडियाड़ वाला फिल्म्स, आगले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैं मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम किया
0: जी,
1: इतनी मतलब
0: बड़ी बात है, और
1: मैं
0: ताउम्र याद रहने वाली बात।
1: और ये आखिरी गीत, इतनी शक्ति, हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी, कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने, फिर बहुत बदकिस्मत इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म। पता मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूँ। देखिए मैंने सबकी जो करियर्स की जो शुरुआत हुई है, काफी जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी,
0: उनके शुरुआती दौर में
1: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस
0: आप हमारे लिए लकी हैं।
1: तो ये हमने सोचा ही नहीं
0: जी
1: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: है ना। आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच गया।
0: बिल्कुल। और पुष्पा जी जैसी गायिका, जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके साथ गाना आपको मिला।
1: बिल्कुल। और मैं, मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर, मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
0: वो वही थी,
1: ये उन लोगों की ग्रेटनेस थी,
0: पुष्पा जी की आवाज हो सकती थी।
1: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क,
0: कीजिएगा जरूर, है
1: तब मैं आपको बताऊं,
0: मेरा ही सवाल है,
1: क्या फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
0: खड़े हो गए,
1: बस वो गाना
0: जी
1: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोले, पता है ये मेरी दीदी ने तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, प्लीज आइएगा हमारे बैंक में, सिर्फ आइएगा, तो हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया।
0: जी।
1: मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
0: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की दुनिया में हम कई बार जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं तो ये गाना नंबर वन पर होता
1: देखिए।
0: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से। और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को है ना घोषक ने बजाया है।
1: और अफसोस कि जिन लोगों ने जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, हाँ, वो पहचान, वो स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं, जिसके वो हकदार हैं।
0: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चलें तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
1: कितने गुणी, बाप रे,
0: बिल्कुल।
1: तो
0: चलिए ये गीत हम सुनते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।

0: तो देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक हैं CAP वन विभाग सरगुजा।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और घुई में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये टुकुडाण, सिलफिली, कनकनगर, गणेशपुर, दलदली, मदननगर, गोरगी, धुमाडाण, बरपटिया, ढलमेला, बटई, नरोला, धोंधा, बोंगा, दरहोरा, सेमई, करंजवार, सरहरी, परमेश्वरपुर, हरिहरपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये मेंढारी, स्याही, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 17 है। ये उदारी, असकला, दोरना, जरहाडी, सायर, कुदर बसवार, सुखरी भंडार, मुड़ापारा, बोड़ाझरिया, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, तपकरा और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये मयूर चूंदी, जामचुआ, लोटा पानी, सागजोर, सोनाजोरी, कोरंगामल, खारी बहार, तेलाइन, हाथीबेड़, कोल्हेन झरिया, कुदरा झरिया, साजा पानी, तीता पाकेर, बहमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, लैलूंगा, बोरो, बाकारूमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 76 है। ये आमापाली, आमगांव, ओंगना, रुपुंगा, पोटिया, धवईडाण, कुड़ेकेला, बंगरसूता, लोटान के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये रैनखोल, केरा कछार, लबेद, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 54 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधी बहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 82 है। ये जुनवानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव, सलियारी, छर्रा टांगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के सोना खान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये फुरफुंदी, झालपानी, पठियापाली, कोठारी, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारी पानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: ये था प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक थे सीएफ वन विभाग सरगुजा। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है FM 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये

0: आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद संध्या 5:10 पर सुनेंगे पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार, जिसमें आपस की बात का विषय होगा जागरूकता से ही सुरक्षा पाए अनचाहे गर्भ की चिंता दूर भगाएं शिशु गर्भ निरोधक दिवस। चर्चा में रहेगा खान पान सुधारें व्यायाम अपनाएं अपने दिन को उम्र भर सड़काएं। शासकीय योजना के अंतर्गत रहेगा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। संध्या 6:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार और 6:10 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम फिल्म संगीत का समय होगा संध्या 6:20 पर और प्रादेशिक समाचार रिले होगा 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम फिल्म संगीत संध्या 7:00 और प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से नुप्रसारित 7:30 पर। कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:20 पर और कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा 8:30 पर और समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 कार्यक्रम विविध भारती, 10:00 सुनिएगा डेली हाईलाइट कैप्सूल्स एशियन गेम 2026 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 10:20 पर कार्यक्रम विविध संगीत और शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सूर्यामिनी सुनिएगा 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और 11:05 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार। ये थे हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही।
1: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
2: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
3: मंगल भवन मंगलहारी
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:00 और दोपहर 12:30 डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ललित सेन की लिखी हुई गीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम में लीजिए सुनिए श्वेता शेट्टी की आवाज में बिद्दू की लिखी हुई गीत, राजेश जौहरी के संगीत निर्देशन में।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम

0: उपलब्ध है वेव्स ऐप, आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम में आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में, अजय झिंगरन की लिखी हुई गीत, रवि पवार के संगीत निर्देशन में।

सोनू निगम और साथियों के गाए हुए इस गीत के साथ ही पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम अप संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 5:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार।

वनिता विहार सुन रही सभी श्रोता सखियों को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन के लिए हमें सही समय पर सही निर्णय लेना बेहद जरूरी है, और सही जानकारी हमें गलत धारणाओं से बचाती है और स्वस्थ जीवन के लिए सही निर्णय लेने में सहायता करती है। बहनों, इसी उद्देश्य के साथ प्रतिवर्ष आज 26 सितंबर के दिन को पूरे विश्व में विश्व गर्भ निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहनों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक साधनों के प्रति जागरूक करना है, और इसके अंतर्गत इस वर्ष का नारा है, जागरूकता से ही सुरक्षा पाएं, अनचाहे गर्भ की चिंता दूर भगाएं। और यह नारा यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा और सही जानकारी ही अनचाहे गर्भ और असुरक्षित यौन संबंधों से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। बहनों, आज भी हमारे समाज में जागरूकता की कमी के कारण हमारे समाज में यौन स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक साधनों के बारे में खुलकर बात करने में संकोच किया जाता है, और इसी जागरूकता की कमी के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं अनचाहे गर्भ का

अच्छे स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा को मजबूत करने का माध्यम भी है। यदि हम जागरूक हों तो कई प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं, जैसे इससे हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है, क्योंकि सही गर्भ निरोधक का चयन करने से महिलाएं अपनी मर्जी व तैयारी के अनुसार गर्भधारण कर सकती है, जिससे उनका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बहनों, गर्भ निरोधक साधन हमें यौन संचारित रोगों से भी बचाते हैं, जैसे HIV और अन्य यौन संचारित बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इससे घर की महिला सशक्त भी बन पाती है, क्योंकि इससे उसे अपने व अपने परिवार के लिए फैसला लेने का अधिकार मिल जाता है, जिससे वह आगे चलकर अपनी शिक्षा या फिर अपने करियर पर भी फोकस कर सकती है। बहनों, हमारे समाज में गर्भ निरोधक साधनों को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैली हुई है, जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। जैसे अक्सर लोग मानते हैं कि इनके इस्तेमाल से भविष्य में बांझपन हो सकता है या फिर इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। बहनों, विश्व गर्भ निरोधक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमें इन रूढ़ियों और अफवाहों को तोड़ना होगा। आज के आधुनिक शिक्षा विज्ञान में डॉक्टरों की सलाह से इस्तेमाल किए जाने वाले गर्भ निरोधक साधन पूरी तरह सुरक्षित भी हैं और बहुत ज्यादा प्रभावशील भी हैं। बहनों, जागरूकता से ही सुरक्षा पाएं, अनचाहे गर्भ की चिंता दूर भगाएं केवल एक नारा ही नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, सुंदर व सुरक्षित समाज का मंत्र है। परिवार नियोजन की जिम्मेदारियां सिर्फ महिला की ही नहीं है, बल्कि यह पुरुषों की भी उतनी ही है। जब समाज का प्रत्येक वर्ग इस विषय पर खुलकर बात करेगा और सही व सुरक्षित तरीकों को अपनाएगा, तभी हम अनचाहे गर्भ की चिंता से मुक्त होकर एक स्वस्थ, सुंदर, सुरक्षित व सशक्त भविष्य का निर्माण करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए बहनों, आज के इस गर्भ निरोधक दिवस पर हम खुद भी जागरूक बने व दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लें। और इन बातों के बाद आइए अब चलते हैं कुछ मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म दिल का रिश्ता का ये गीत।

बहनों, ये तो हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय है, जो हमारे शरीर में दिन रात लगातार ब्लड का संचार करता है। इसलिए हमें हमारे हृदय को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। आजकल गलत खानपान के कारण और साथ ही साथ शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। बहनों, हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी है और इसमें हमें ताजे फल और ताजे हरी सब्जियां, साबुत अनाज और सभी प्रकार की दालों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में शामिल करना चाहिए और इसके साथ ही साथ अधिक तेल, मिर्च, मसाले वाली सब्जियां या सैचुरेटेड फैट और जंक फूड से ज़्यादा हो सके तो दूर रहना चाहिए। खासकर बाहर के खान पान से तो हमें सावधान ही रहना चाहिए, बल्कि घर की बनी हुई ताजे भोजन का ही हमें सेवन करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमें खाने में ज़्यादा से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल भी बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमक का सेवन करने से भी ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और साथ ही चीनी व मीठे पेय पदार्थों से भी परहेज करना बेहद जरूरी है। बहनों, इसके अतिरिक्त धूम्रपान और शराब भी छोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि सिगरेट, तंबाकू या शराब का सेवन दिल की धमनियों को कमजोर और सकरा बनाता है, इसलिए इनसे पूरी तरह दूरी बनाना बेहद जरूरी है। बहनों, मानसिक तनाव भी हमारे हृदय की सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है, इसलिए मानसिक तनाव से दूर रहना भी बेहद जरूरी है और इसके लिए योग, मेडिटेशन या फिर हमें अपनी रुचि के अनुसार काम करना चाहिए जो हमें पसंद हो। इससे भी तनाव कम होता है, इससे हमारा माइंड फ्रेश होता है। खासकर मेडिटेशन से भी एक तो कॉन्सेंट्रेशन माइंड हमारा जो है वो अच्छा डेवलप होता है और इसके साथ ही साथ हमारा मानसिक संतुलन भी इससे सही

रहता है। और इसके साथ ही साथ रोजाना रात में 7 से 8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद लेना भी बेहद जरूरी है। बहनों, हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना भी बेहद जरूरी है। और इसके हफ्ते में और इसके लिए हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम गति से एक्सरसाइज करें, जैसे तेज चलना, साइकिलिंग करना या अगर हो सके तो स्विमिंग करना, ये भी किया जा सकता है, परंतु सभी डॉक्टर की परामर्श लेकर के। इसके अतिरिक्त बहनों, हम अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व डॉक्टर से परामर्श लेकर हम कुछ योगासन व प्राणायाम भी कर सकते हैं। और कुछ योगासनों में जैसे ताड़ासन, गोमुखासन, भुजंगासन कर सकते हैं। इन आसनों से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है और इससे मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। और भुजंगासन से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है और इससे हमारा हृदय भी मजबूत बनता है और हमारी सांस की नली में हमको सांस लेने में बहुत ज़्यादा राहत महसूस होती है। बहनों, प्राणायाम भी करने से भी हमारा हृदय स्वस्थ रहता है और साथ ही साथ हमारा लंग्स भी स्वस्थ रहता है। इसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम करने से तनाव कम होता है और हमारा हृदय भी स्वस्थ रहता है। बहनों, मेडिटेशन से भी हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। इससे हमारे शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहता है और हमारी एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ती है। बहनों, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितने भी एक्सरसाइज करें, खान पान का ध्यान रखें, परंतु हमें फिर भी समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। बहनों, इस चर्चा के बाद आइए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म आ अब लौट चले का ये गीत, जिसके गीतकार हैं समीर और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण जी ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: बहनों, एक स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मातृ और शिशु दोनों का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। बहनों, कई बार गर्भावस्था के दौरान उचित व सही देखभाल न होने के कारण माताओं और शिशुओं के जीवन पर गंभीर संकट आ जाता है, और इसी चुनौती से निपटने के लिए और मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भारत सरकार ने शासकीय योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की, और इस अभियान की शुरुआत हुए अब 10 वर्ष हो चुके हैं। बहनों, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान न्यूनतम प्रसव पूर्व देखभाल व सेवाएं जो है वह निःशुल्क प्रदान करना है, और इसके साथ ही साथ जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी के समय रहते पहचान करना और उसका उचित उपचार करना भी है, और साथ ही साथ मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करना और सुरक्षित प्रसव हो इसका भी ध्यान रखना है। बहनों, इस योजना के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी निर्धारित सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ बहनों, इस दिन सरकारी अस्पतालों में OBGY विशेषज्ञों, स्त्री रोग विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों द्वारा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, और इसमें निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स को भी स्वैच्छिक सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बहनों, इस दिन महिलाओं के हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर, अल्ट्रासाउंड और जितने भी आवश्यक परीक्षण जो गर्भावस्था के दौरान किए जाते हैं वह सभी पूरी तरह से निःशुल्क किए जाते हैं। बहनों, इसके साथ ही साथ वर्ष 2022 से सरकार ने हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए PMSMA रणनीति शुरू की है, जिसके तहत प्रसव होने तक व्यक्तिगत निगरानी, SMS अलर्ट और आशा कार्यकर्ताओं के साथ वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। बहनों, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अकेले काम नहीं करता है, बल्कि यह अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और सुरक्षित मातृत्व आश्वासन के साथ मिलकर एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार करता है, और इन्हीं लक्षित प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत के मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर अनुपात में काफी सुधार हुआ है। बहनों, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने भारत में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में काफी बदलाव लाया है। इस अभियान के कारण ही देश के दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में रहने वाली हर माँ तक सही समय पर सही चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो पाई है, और निरंतर सामूहिक प्रयासों के कारण ही यह योजना एक स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध भारत की नींव को मजबूत कर रही है। तो यह तो हो गई शासकीय योजना के बारे में जानकारी। बहनों, इस चर्चा के बाद आइए चलते हैं हम फिर से एक गीत संगीत और मनोरंजन की दुनिया में, और सुनते हैं फिल्म शोर का यह गीत, जिसमें स्वर दिया है लता मंगेशकर जी ने मुकेश जी और साथियों की आवाज में, और जिसके गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

बहनों, घड़ी की सुइयां इशारा दे रही है कि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम के अगली किसी कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरनूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण

0: पर है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरोपेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रतिष्ठित लाल बागचा राजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि सहित कई गणपति प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु 21 घंटे से अधिक समय तक चले जुलूस में शामिल हुए। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.7 मेघर्स पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। एक नजर कल के कार्यक्रमों के विषय में श्रोताओं कल सुबह 6 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार कार्यक्रम चिंतन 6:05 पर, भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना 6:10 पर, कार्यक्रम कृषि चर्चा 6:30 पर और रामचरित मानस भाग 147 6:40 पर, देशगान 6:50 पर। संस्कृत में समाचार होंगे 6:55 पर, हिंदी में समाचार सुबह 7 बजे और चित्रपट संगीत 7:10 पर। झरोखा कार्यक्रम सुनेगा 7:35 पर, लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर 7:45 पर और समाचार प्रभात सुबह 8 बजे, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, बाल सभा 8:30 पर, विविध भारती कार्यक्रम सुबह 9 बजे, प्रादेशिक समाचार 9:55 पर, सुगम संगीत कार्यक्रम 10:10 पर, आपकी फरमाइश 10:30 पर। 11 बजे सुनेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन कार्यक्रम मन की बात और 11:30 पर मन की बात कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ी संस्करण, विविध भारती कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे। रोज की तरह प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट शाम 5 बजे आप सुनेंगे। भक्ति संगीत कार्यक्रम भजन संध्या का समय रहेगा 5:10 पर, चित्रपट संगीत 5:30 पर, हिंदी में समाचार संध्या 6 बजे और जिले की चिट्ठी 6:05 पर, छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार 6:10 पर, कार्यक्रम फिल्म संगीत 6:20 पर, कार्यक्रम कानून की बात आप सुनेंगे 6:30 पर, प्रादेशिक समाचार 6:45 पर, कार्यक्रम फिल्म संगीत संध्या 7 बजे, कृषक बंधुओं का कार्यक्रम चौपाल 7:20 पर और रात्रि 8 बजे मन की बात कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ी संस्करण, कार्यक्रम फिल्म संगीत 8:30 पर, समाचार संध्या 8:45 पर, रात्रि 9 बजे विविध भारती कार्यक्रम 10 बजे सुनिएगा डेली हाई।

0: लाइट कैप्सूल से एशियन गेम्स 2026 10:20 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सूर्यामिनी 10:30 पर और हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये थे हमारे केंद्र से कल के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं 2027 के लिए एप्लीकेशन जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कक्षा 9वीं और 11वीं सेशन 2027-28 के लिए एडमिशन होगा। कैंडिडेट नीचे दिए गए लिंक पर जाकर फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 9वीं के लिए है https://cbseitems.nic.in/2026/nbsix नाइन। कक्षा 11वीं के लिए है https://cbseitems.nic.in/2026/nbsix11। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख है 30/9/2026। प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उपलब्ध है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी ये नोटिफिकेशन में आप आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओं, जिला परियोजना लाइवलीवुड कॉलेज रायगढ़ अंतर्गत स्थायी प्रशिक्षक इम्पैनल किए जाने हेतु सूचना जारी किया गया है। जिला परियोजना लाइवलीवुड कॉलेज सोसाइटी रायगढ़ अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशन कोर्स में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु एक पूर्णतः अस्थायी प्रशिक्षक इम्पैनल किया जाना है। उक्त कोर्स हेतु आवश्यक योग्यता अनुभव एवं प्रपत्र संबंधी जानकारी हेतु कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है। इच्छुक योग्यताधारी आवेदक दिनांक 28/9/2026 तक आवेदन सीधे कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं। CITS सर्टिफिकेट्स इलेक्ट्रीशियंस TOTSSC ओनली इलेक्ट्रीशियंस डोमेस्टिक सॉल्यूशन प्रमाण पत्र पत्रधारी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त सूचना ये आप सभी के लिए है। सूचना समाप्त हुई। FM 107.7 MHz पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में पाछू 3 दिन ले होवत लगातार वर्षा ले जनजीवन अस्त व्यस्त। बस्तर संभाग समेत कतकुन जगह के नदी नाला उफान में है। महासमुंद और ओडिशा के नुआपाड़ा पुलिस ह मानव तस्करी के 5 जन आरोपी मल्ला करे है गिरफ्तार। औ प्रधानमंत्री काली बिहनिया 11 बजे आकाशवाणी ले प्रसारित होवैया कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगन मन संग करही अपन विचार साझा। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में पाछू 3 दिन ले होवत लगातार वर्षा ले जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए है। बस्तर संभाग समेत राज्य के कई ठन नदी नाला उफान में है। राजधानी रायपुर में स्थित खारून नदी में पुल के ऊपर ले पानी बहावत है। प्रशासन हर तीर्थखार के गांव वाला मल्ला अलर्ट जारी कर दे है। बस्तर में इंद्रावती नदी खतरा के निशान ले ऊपर बहावत है। उन्हें बाढ़ में फंसे लोगन मल्ला सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जात है। स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी के संग बाढ़ पीड़ित मन के सहायता में लगे हुए है। उमल्ला खाद्य और चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराए जात है। बाढ़ के सेती रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग समेत सुकमा और बीजापुर मार्ग में आवागमन प्रभावित हो है। ओती धमतरी जिला में स्थित गंगरेल बांध के सबो गेट काली ले खोल दे गए है। बांध ले पानी छोड़े के सेती महानदी समेत दूसर नदी मन के जल स्तर तेजी ले बाढ़त है। दुर्ग जिला में शिवनाथ नदी घलो उफान में है, जेखर सेती कई ठन इलाका मन बाढ़ जैसन हालात बन गए है। शिवनाथ नदी के तीर बने एनिकट मन के ऊपर ले करीब 10 से 12 फीट पानी बहावत है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह आज शिवनाथ नदी में स्थित गणेश प्रतिमा विसर्जन स्थल के निरीक्षण करे के बाद शिवनाथ नदी में प्रतिमा विसर्जन ऊपर फिलहाल रोक लगा दे है। उन्हें नगर सेना और SDRF की टीम कुम्हारी क्षेत्र के परसदा गांव समेत आने आने जगह मन में बाढ़ में फंसे 200 से ज्यादा लोगन मन के रेस्क्यू करे है। इही बीच स्कूल शिक्षा मंत्री और दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ह दुर्ग में आज बाढ़ और जल भराव की स्थिति के जायजा लीन। उमन बतैन की सामान्य परिस्थिति में शिवनाथ नदी में करीब 10,000 क्यूसेक पानी बुहा थे, जबकि अभी करीब 60,000 क्यूसेक तक पानी पहुंच गए है। एक स्थिति बाढ़ की स्थिति बन गए है। श्री यादव ह बतैन की बाढ़ की स्थिति ला देखत हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। पुलगांव के 13 परिवार मल्ला सुरक्षित बाहर निकाल ले गए है। राजीव मघलो त्रिवेणी संगम के जलस्तर तेजी ले बढ़त है। राजीव बस स्टैंड में 4 फीट तक पानी भर गए है। उन्हें निचली बस्ती मनमा पानी भरे के सेती लोगन मल्ला सुरक्षित जगह में पहुंचाए गई। जांजगीर चांपा जिला में महानदी के जलस्तर बढ़े ले महानदी सबरी सेतु ले आवागमन बंद हो गए है। पुलिस तीर तखार के क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दे है। मौका में DDRF की टीम तैनात है। इही बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत गुंडरदेही लाटाबोर के बीच ट्रैक धसे और जल भराव के कारण रेल यातायात प्रभावित हुए है। मंडल रेल प्रबंधक दयानंद समेत अधिकारी मन मौका में पहुंच के स्थिति के जायजा लीन। इंजीनियरिंग विभाग के तकनीकी टीम हा ट्रैक ला दुरुस्त करे में लगे हुए है, जेकर स्थिति अंतागढ़ दुर्ग रायपुर के बीच रेल परिचालन रद्द कर दे गए है। इही बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा राज्य के आने आने क्षेत्र मन में उत्पन्न बाढ़ और जल भराव की स्थिति ला देखत हुए संबंधित जिला मन के कलेक्टर मन ला पूरा सतर्कता के संग राहत और बचाव कार्य चलाए के निर्देश दे है। महासमुंद और ओडिशा के नुआपाड़ा पुलिस के संयुक्त टीम हा छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आने आने जगह में छापा मार के मानव तस्करी के 5 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। ये दौरान करीब 1.5 करोड़ रुपया नगद और नोट गिने के मशीन के संगे संग दूसर दस्तावेज जब्त करे गए है। गिरफ्तार आरोपी महासमुंद और नुआपाड़ा जिला ले मजदूर मल्ला दूसर राज्य में भेजत रहीन। एक हर मन ऊपर मानव तस्करी के संगे संग बाल मजदूरी और बंध मजदूरी कराए के आरोप है। जापान में आयोजित एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम हा ईरान ला हरा के स्वर्ण पदक जीत ले है। ये टीम में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला के संजू देवी हा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा संजू देवी ला फोन कर बधाई और शुभकामना दे हैं। ओमन संजू देवी के प्रदर्शन के सराहना करत हुए कहिन की उखर ये उपलब्धि ले पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हौ।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बाढ़ बाती समाचार कोती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली बिहनिया 11 बजे आकाशवाणी ले प्रसारित होवैया मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगन मन संग अपन विचार साझा करही। ये 138वां कड़ी के प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सबो नेटवर्क के संगे संग आकाशवाणी समाचार के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप में करे जाहि। कार्यक्रम के सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार DD न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल मनमघलो होही। हिंदी प्रसारण के तुरते बाद आने आने क्षेत्रीय भाषा मनमघलो एकर प्रसारण करे जाहि। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में काली ले आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम शुरू हो गए है। पहले यह दिन राज्य में 2200 ले ज्यादा जगह मन में करीब 13,000 गतिविधि मल्ला आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिला के मतकू में आयोजित आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में शामिल हुईन और महतारी और लैका मल्ला पोषण के संदेश दिन। ये मौका में महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के लाभार्थी मन बतैन की योजना ले मिले सहायता राशि ले ओ मन अपन और परिवार के जरूरत मल्ला पूरा कर पावत हैं। बता दें कि आंगन मिलन सेवा के माध्यम ले परिवार और समुदाय मल्ला आंगनबाड़ी केंद्र मल्ले जोड़त हुए लेका मन के पोषण ला साझा जिम्मेदारी बनाए ऊपर जोर दे जात है। कबीरधाम जिला के ग्राम चंडालपुर के नाम बदल के अब आधिकारिक रूप ले चंदनपुर कर दे गए है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा गांव के नवा पहचान पर राजपत्र लेके चंदनपुर पहुंचीन। ये दौरान उमन ग्रामीण मल्ला राजपत्र के प्रति सौंपिन और उनला बधाई दिन। ये मौका में उप मुख्यमंत्री गांव के विकास कार्य पर करीब 12 लाख रूपया दे के घोषणा घलो करीन। छत्तीसगढ़ के पहली महिला खुली जेल के शुभारंभ आज पुलिस महानिदेशक जेल हिमांशु गुप्ता करीन। केंद्रीय जेल रायपुर में स्थित ये खुली जेल महिला बंदी मन के सुधार पुनर्वास और उनला आत्मनिर्भर बनाए के दिशा में महत्वपूर्ण पहल हरय। ये खुली जेल में 25 जन महिला बंदी मन के रहे के व्यवस्था करेगे है। ये जेल के विशेषता हरय कि यहां रहैया महिला बंदी ऊंची दीवार और पारंपरिक बंद व्यवस्था ले बाहर निकल के आने आने रोजगार मूलक गतिविधि मन ले जुड़ सकी। उखन मन पर जेल करा स्थित परिसर में जेल में निर्मित उत्पाद मन के बिक्री केंद्र संचालित करे जाहि। संगे संग उखर रुचि और कौशल के अनुरूप रोजगार के वैकल्पिक साधन घलो उपलब्ध कराए जाहि। प्रदेश में अवैया महीना 7 और 8 अक्टूबर के रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय रोजगार मेला के आयोजन करे जाहि। 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग और स्नातकोत्तर योग्यताधारी युवा ई रोजगार पोर्टल के माध्यम ले ऑनलाइन आवेदन कर सकत हैं। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहाल ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले करही। ये बखत के अंक मा कबीरधाम जिला के गतिविधि के बारे में जानकारी दे जाही। रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित देश के 5 राष्ट्रीय स्कूल मनमा सत्र 2027-28 बर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गए है। कक्षा 8वीं और 9वीं में दाखिला बर उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकत है। एकर बर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आयोजन 13 दिसंबर के करे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घौ फेर। प्रदेश में पाछू 3 दिन ले होवत लगातार वर्षा ले जनजीवन अस्त व्यस्त। बस्तर संभाग समेत कतकुन जगह के नदी नाला उफान में है। महासमुंद और ओडिशा के नुआपाड़ा पुलिस था मानव तस्करी के 5 जन आरोपी मल्ला करे हैं गिरफ्तार। और प्रधानमंत्री काली बिहनिया 11 बजे आकाशवाणी ले प्रसारित होवैया कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगन मन संग करही अपन विचार साझा। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं चश्मे बद्दूर। इस फिल्म का गीत येसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाजों में इंदु जैन की लिखी हुई गीत को संगीतबद्ध किया है राजकमल ने।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको

0: इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी। ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली, तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया, तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी। और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में, तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है, यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था। और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है, जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है, उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे। और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है, और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा। एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में। इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे, तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत हमने लिया है प्रेम प्रतिज्ञा से। आवाजें हैं बप्पी लहरी और आशा भोसले की। इंदिवर की लिखी हुई गीत को संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने।

0: आशा भोसले और बप्पी लहरी के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाचार
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
9: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बस्तर संभाग सहित राज्य के कई नदी नाले उफान पर, कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित। गंगरेल बांध के सभी गेट खोले गए। महानदी खारून और शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। शिवनाथ नदी में गणेश विसर्जन पर रोक लगाई गई। छत्तीसगढ़ की पहली महिला खुली जेल का रायपुर में पुलिस महानिदेशक जेल ने किया शुभारंभ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बस्तर संभाग सहित राज्य के कई नदी नाले उफान पर हैं। जगदलपुर में बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, एक नाबालिग की मौत भी हुई है। इंद्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं दंतेवाड़ा से हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा।
1: बस्तर में बारिश के साथ बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बीते 72 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से इंद्रावती, शबरी और पहाड़ी क्षेत्र के नदी नाले पूरे उफान पर हैं। विशेषकर सुकमा, बीजापुर और जगदलपुर जिले की सैकड़ों बस्तियां टापू में तब्दील हो गई हैं। सबसे ज्यादा बारिश जगदलपुर में हुई है। भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 और 63 बाधित हो गए हैं, जिससे बस्तर का संपर्क सीमावर्ती राज्यों से कट गया है। जगदलपुर से हैदराबाद फ्लाइट, यात्री ट्रेनें और बसों का आवागमन भी बाधित है। हादसों में कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और जगदलपुर में एक नाबालिग की मौत हुई है। बस्तर कलेक्टर आकाश शिकारा ने बताया कि ओडिशा के बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से अगले 24 घंटे इंद्रावती नदी का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार दौरा कर सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविरों में ठहरा रही हैं। बस्तर रायपुर के बीच वैकल्पिक मार्ग से सफर शुरू हो गया है, लेकिन सुकमा बीजापुर से तेलंगाना मार्ग पर अब भी आवाजाही बहाल नहीं हुई है। आकाशवाणी न्यूज के लिए दंतेवाड़ा से नरेश मिश्रा।
9: उधर धमतरी जिले में स्थित गंगरेल बांध के सभी गेट कल से खोल दिए गए हैं। हमारे धमतरी संवाददाता रोशन सिन्हा ने बताया कि बांध से पानी छोड़े जाने के कारण महानदी सहित अन्य नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।
10: धमतरी जिले के चारों ब्लॉक धमतरी, कुरुद, नगरी, मगरलोड में लगातार वर्षा के चलते गांव में बाढ़ की स्थिति है। पुल पुलियों के डूब जाने से आवाजाही प्रभावित है। जिले के चारों बांध गंगरेल, माड़मसिल्ली, दुधावा, सोंडूर बांध लबालब हैं। चारों बांध से अतिरिक्त पानी को बहाया जा रहा है। शुक्रवार को अत्यधिक पानी की आवक के कारण गंगरेल बांध के 14 गेट से पानी बहाया गया। वर्तमान में 8 गेट से पानी बहाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन सामग्री और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। रोशन लाल सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धमतरी।
9: दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी भी उफान पर है। इसके कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री और दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने दुर्ग में आज बाढ़ और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। वहीं दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज शिवनाथ नदी के पास बने गणेश प्रतिमा विसर्जन स्थल का निरीक्षण करने के बाद शिवनाथ नदी में प्रतिमा विसर्जन पर फिलहाल रोक लगा दी है।
11: विगत दो दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण शिवनाथ नदी में जल का स्तर काफी बढ़ा है। एट प्रेजेंट करीब 58 से 60 हजार क्यूसेक का डिस्चार्ज है, जिसकी वजह से ज्यादातर एनीकट से करीब 10 से 12 फीट 13 फीट ऊपर पानी चल रहा है। गणेश विसर्जन की प्रक्रिया भी कल चल रही थी, रात को 2 बजे उसको बंद करा दिया गया था, तब से वो प्रक्रिया रुकी हुई है। नदी के किनारे कुछ लोग रहते हैं, वहां करीब 13 मकान थे, उनको सभी को सुबह सुबह निकाल लिया गया, निकाल करके यहाँ समुदाय भवन में लाकर के शरण दी गई है। और इसके अलावा पूरे जिले में अलग अलग स्थानों पर जहां जल भराव की समस्या है, वहां पर SDRF के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक लगभग 200 से ऊपर लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और स्थिति नियंत्रण में है। कहीं पर जनहानि की कोई सूचना अभी नहीं है।
9: हमारे दुर्ग संवाददाता अभय जवादे ने बताया कि दुर्ग जिले की दो प्रमुख नदियां शिवनाथ और खारून खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
12: दुर्ग जिले में हो रही भारी बारिश के कारण शिवनाथ नदी एवं खारून नदी दोनों ही उफान पर है। शिवनाथ नदी में अभी भी मोगरा, घुमरिया, खातू टोला एवं तांदुला जलाशय से 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण शिवनाथ नदी खतरे के निशान से आधा फीट ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी ग्राम चंगोरी, ग्राम डंडेसरा एवं पुलगांव पुल पार करते हुए दुर्ग शहर स्थित डीमार तक पहुंच गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जिले के सभी एनिकट पर बने अप्रोच मार्ग को बंद कर दिया है। वहीं खारून नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण महादेवघाट पर बने पुल से 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसके कारण अमलेश्वर रायपुर मार्ग को बंद कर दिया गया है। जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से कल रात से लेकर आज शाम तक SDRF दुर्ग की टीम के द्वारा लगभग 160 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्ग से मैं अभय जवादे।
9: राजनांदगांव जिले में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता मिथिलेश देवांगन ने बताया कि मोगरा, खाटू टोला और सूखा नाला बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है।
13: पिछले 2 दिनों की जोरदार बारिश से पूरा जिला जलमग्न हो गया है। आज बारिश भले ही थमी हुई है, लेकिन मोंगरा, खातू टोला और सूखा नाला जैसे 3 प्रमुख बराजों से लगभग 18,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शिवनाथ नदी का जलस्तर तेजी से उफान पर है। तटीय गांव में अलर्ट जारी करके प्रशासन ने अपनी निगरानी बनाए रखी है। इस मानसूनी मौसम में अब तक जिले में 1003 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो पिछले 10 वर्षों की औसत वर्षा का 106% है। आकाशवाणी के लिए राजनांदगांव से मिथिलेश देवांगन की रिपोर्ट।
9: राजधानी रायपुर में खारून नदी में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। प्रशासन ने आसपास के गांवों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। राजिम में भी त्रिवेणी संगम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राजिम बस स्टैंड में 4 फीट तक पानी भर गया है। वहीं निचली बस्तियों में पानी भरने के कारण लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जांजगीर चांपा जिले में महानदी का जलस्तर बढ़ने से महानदी शबरी सेतु से आवागमन बंद हो गया है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है। मौके पर डीडीआरएफ की टीम तैनात है। समाचार डेस्क आकाशवाणी रायपुर। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत गुंडरदेही लाटाबोर के बीच ट्रैक धंसने और जलभराव के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इसके कारण अंतागढ़ दुर्ग रायपुर के बीच ट्रेन परिचालन रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को पूरी सतर्कता के साथ राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में कल से आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम शुरू हो गया है। पहले दिन राज्य में 2200 से अधिक स्थानों पर करीब 13,000 गतिविधियां आयोजित की गईं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के मतकू में आयोजित आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए और माताओं तथा बच्चों के पोषण का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ की पहली महिला खुली जेल का शुभारंभ आज पुलिस महानिदेशक जेल हिमांशु गुप्ता ने किया। केंद्रीय जेल रायपुर में स्थित यह खुली जेल महिला बंदियों के सुधार, पुनर्वास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस खुली जेल में 25 महिला बंदियों के रहने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से परिभाषित रही है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज की इस विशेष श्रृंखला सेवा संकल्प अभियान में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
14: में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने पहले शौचालय की सुविधा को प्राथमिकता दी और इसके बाद गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने पर जोर दिया। प्रदेश के 73% गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 94% गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था दर्ज की गई। 13,033 गांव ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित हो चुके थे। छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान में सार्वजनिक स्थानों के कायाकल्प, स्कूलों में स्वच्छता, युवाओं की भागीदारी, सफाई मित्रों की सुरक्षा और सम्मान तथा कचरे के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। समाचार डेस्क आकाशवाणी रायपुर।
9: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कबीरधाम जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जापान में आयोजित एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस टीम में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की संजू देवी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संजू देवी को फोन कर इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बस्तर संभाग सहित राज्य के कई नदी नाले उफान पर, कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित। गंगरेल बांध के सभी गेट खोले गए। महानदी खारून और शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। शिवनाथ नदी में गणेश विसर्जन पर रोक लगाई गई। छत्तीसगढ़ की पहली महिला खुली जेल का रायपुर में पुलिस महानिदेशक जेल ने किया शुभारंभ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में। साथ में आनंद बख्शी ने भी अपना स्वर दिया है और बोल उन्हीं के हैं। संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए सुनी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे हुए गीत को संगीतबद्ध किया है रश्मिकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है प्रेम बंधन।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है एक नजर।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर,
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में, बोल हैं एस एच बिहारी के और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 7:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कृषक बंधुओं का प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
2: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
3: भलो का संसाधन समझन, खेत में बचे हर जिनिस के सही उपयोग करन, स्वच्छ स्थानीय और टिकाऊ ऊर्जा के दिशा में आगू बढ़न।

0: राम राम राजेश भैया।
1: राम राम पूजा। संगे संग किसान वाणी सुनिया हमर सबो संगवारी मल्ला हमर दोनों के
0: राम राम, राम। बेरहे किसान वाणी के जेकर प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संगी और स्वच्छता हमार जिंदगी भर बहुते जरूरी है। साफ सफाई सिर्फ घर दुआरी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, भलुक हमार गली मोहल्ला गांव शहर स्कूल बाजार हर सार्वजनिक जगह ला घलोक साफ सुथरा रखना हमार जरूरत है।
1: और ये सोच ला आगो बढ़ाए बर हमार देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करे गई है और स्वच्छता पखवाड़ा घलोक चलत है जेमा स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य है खुला मा शौच ला रोकना, स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, कचरा के सही प्रबंधन करना और हर नागरिक ला स्वच्छता के प्रति अपन जिम्मेदारी ले जोड़ना।
0: संगी स्वच्छता के शुरुआत दूसर ले नहीं भलुक हमला अपन घर ले ही शुरू करना चाहिए। गीला कचरा और सूखा कचरा ला अलग अलग रखना, गीला कचरा ले खाद बनाया जा सकत है और सूखा कचरा ले पुनर्चक्रण करके ओला दोबारा उपयोग करे जा सकत है, ये जागरूकता फैलाना है।
1: सही कहे पूजा। और ये स्वच्छता अभियान में हमारे स्कूल के कॉलेज के विद्यार्थी मन घलोक अच्छा भूमिका निभा सका थे, अपन घर परिवार और आसपास के लोगों ला स्वच्छता के महत्ता बता के समाज ला अच्छा संदेश दे सका थे।
0: बिल्कुल भैया। और स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ सरकार के ही अभियान नहीं है, ये हमरो जिम्मेदारी है, हम सबके जिम्मेदारी है। जब हमर देश के हर नागरिक स्वच्छता पर अपन जिम्मेदारी ला निभाही तभी तो हमर गाँव शहर और पूरा देश स्वच्छ बनही।
1: पूजा स्वच्छता के

0: ओकर बाद फिर खेती डहन लग गयो, कॉलेज करूँ करके नाम डाले रहे हूँ, कॉलेज में लिस्ट में नाम निकले जिसमें नहीं करे हूँ अपने।
1: बीएनबी से आप मन खेती किसानी कर
0: जी
1: रहे हो?
0: जैविक खेती तो पहली में नहीं करत रहे हूँ, मोर पिताजी हर रासायनिक खेती करत रही से तो वही मोरू रुझान रही से।
1: अच्छा
0: मोला बहुत अच्छा मार्ग और बहुत अच्छा जानकारी आकाशवाणी रायपुर ल मैं नियमित सुनत रहता हूँ, तो ओकरे माध्यम से मोला कई जन किसान मन के जानकारी मिली से और यहाँ के वरिष्ठ किसी भी विकास खंड अधिकारी मन के जो जानकारी वो मोला बहुत प्रभावित करी से,
1: अच्छा
0: तो वही ढंग से महू अपनाए के चालू करे हूँ।
1: तो के कड़ खेत है आप मन करा?
0: मोर पास वैसे 5 एकड़ खेत है भैया।
1: का का फसल बोथो हमें?
0: अब हमारे यहाँ वाटर लेवल डाउन रहते तो बारिश के फसल ही हो पाते और डबल फसल नहीं हो पाए, रवि फसल के हमन कभी उम्मीदें नहीं कर पान, वाटर लेवल डाउन हो जाते।
1: तो खरीफ मा का का फसल बोथो आप मन?
0: खरीफ में धान के फसल है और धान के फसल के साथ साथ अब मेड़ मन में हमन वही उत्पादन कर लेथन, राहेर बो देथन,
1: अच्छा
0: तो ये दोनों फसल हमन एक साथ मिल जाते।
1: कौन से बीज का उपयोग करता हो?
0: बीज तो ये हमन बहुत कम रखथन घर के बीजला, शासन द्वारा प्रमाणित बीज हमला मंडी सोसाइटी में मिलते ना वही ला खरीद के लाथन, ओमे जिम्मेदारी सरकार के रहते,
1: अच्छा
0: तो वो बीज ला हमन डालथन, अभी तक फैल नहीं खायन, वही बीज ला हमन बोथन, बोए के मानसून के मानसून आते तभी बोथन हमन। मानसून आधारित हरे हमारे छत्तीसगढ़ के खेती बाड़ी है, तो मानसून जैसे आ गए अब हमन जान रहे कि ये 20-25 जून के हमारा धान बोना चाहिए, तो वो हम बोथन तो हमन ट्रैक्टर में हमन दो बार तीन बार जोताई करवा दे रही थन, जब हमन धान बोथन तो मैं डीएपी डाल के बोथा हूँ भैया।
1: अच्छा
0: हाँ डीएपी डालता हूँ, पहली डीएपी डाले से यह होते कि पेड़ मजबूत रही थे और वो में रोग लगे के क्षमता बहुत कम रहते, हाँ
1: मतलब रोग राई कम
0: से
1: लगते।
0: कम रहते, उमे जब पेड़ जागते ना भैया तो उकर पेड़ के मजबूती बहुत अच्छा रहते
1: अच्छा
0: डीएपी डाले से।
1: तो रोपस करता हूँ कि बोता है आप मन के?
0: मैं 2.5 एकड़ रोपा करता हूँ और 2.5 एकड़ बोता करता हूँ, लेकिन उत्पादन मोला रोपा में थोड़ा से ज्यादा दिखते, लेकिन वो समय जब रोपा लगा था ना तब पानी के वाटर लेवल नहीं आ रहा है, तो पानी नहीं पूर पाया था, वो कल अच्छा कम खेती करो बोता में और कम रोपा में, तो दोनों
1: अच्छा
0: भरपूर जते।
1: खातू मल्ला कब कब डालो? घुरवा खातू
0: खातू
1: मल्ला?
0: रोपा में नहीं, खाद ला हमन धान बोए के पहली हमन गर्मी में पाल दे रहन, ओकर बाद फिर हमला वो डबल खातु की जरूरत नहीं पड़े, अब
1: अच्छा
0: जब पड़ते रोपा लगाई में डालता हमन खाद।
1: तो एक बार डीएपी डालता शुरू में, उसके बाद रासायनिक खाद वो कब डाल?
0: रासायनिक खातु ला 25 दिन बाद कम मात्रा में यूरिया डालू, डीएपी फिर मिक्स करके डालथन, मतलब 2-2.5 एकड़ के एरिया घेरा है
1: अच्छा
0: तो ओकर घेरा के अंदर लगा देथन, तो 2.5 एकड़ के मेड़ भी बहुत अकन हो जाते, तो वो हिसाब से बहुत अकन में हो जाते राहेर।
1: तो इधर बीज कहाँ लाता था राहर के?
0: राहेर के बीज हम मार्केट में लेथन,
1: अच्छा तो जो घर में पुराना राहर है वाला नहीं
0: ओला
1: लगा?
0: हम नहीं बोयन राहेर ला,
1: हर साल नवा बीज के उपयोग करता
0: नया
1: हूँ।
0: बीज के उपयोग करते।
1: तो कते कन हो जाते ये राहर?
0: राहेर तो अब अंदाज मन ऐसे बेचथन तो कम से कम 10 क्विंटल हो जाते भैया।
1: बढ़िया अच्छा उपयोग करा था मेड़ के कतार में देखथन खाली रही थे मेड़
0: खाली
1: है, तो आप बने उपयोग करा था, बने लाभ घलो कमावा था। और जो 2.5 एकड़ बताते रहे हो उखर बारे में बताते हो?
0: हाँ, तो 2.5 एकड़ के जो मेड़ है वो में जिमी कांदा के करथन, काबर अभी बारिश में बोबो हमन, बारिश में बोबो और वही बारिश के पहली पहली ओला निकालबो, ओला का है न गरवा खावे न बेंदरा खाए कुछ नहीं खाए, तो वो बाहर के घेरा में बच जाते, घेरा नहीं तो वो बच जाते, और घेरा अंदर हमन राहेर ल बचाल बचाथन तो गरवा नहीं जावे तब बच जाते।
1: हाँ राहर घेरा में राहर लबो था
0: हाँ और बाहर में बिना घेरा में
1: जिमी
0: जिमी
1: का
0: कांदा
1: दाल
0: ला,
1: बो पोथी कहाँ ला था वाला?
0: पोथी ला अपन रखे रही थन वही बोए रही थन तीही में गला,
1: अच्छा
0: छोटे आकार के रही थे ते पोथी ला हमन बचा के रखथन, कर 30-40 किलो कम से कम रखथन।
1: कल लगाए के विधिल बताते हो मेड़ में कतका गड्ढा खन था का
0: मेड़ में
1: खातु वातु?
0: एकर हाँ मेड़ में हमन पेरौसी डालथन, गड्ढा खोदथन पहली, ये 8 इंच
1: अच्छा
0: 8 इंच 10 इंच के गड्ढा रहते, और ओमे पेरौसिल डालथन, गोबर ला डालथन,
1: चाकर कत करे थे वो?
0: और वो है 1 फीट के रिथे,
1: अच्छा
0: 1 फीट के, तो ओमे आसानी से खाद भी डल जाए और ओला पानी वानी डालथन तो जगह थोड़ा ज्यादा गीला भी रहा है ऐसे टाइप के।
1: तो पेरोसी पूरा भर था गड्ढा भर?
0: हाँ गड्ढा भर पेरौसिल भरथन ओमे, हाँ
1: ओकर बाद ओला
0: ओमे
1: खोसो
0: खोसथन ओमे,
1: पोथीला
0: हाँ
1: और कुछ डाले लगते दवाई
0: नहीं कुछ
1: पानी
0: नहीं डाले लगे दवाई ओमे,
1: खरीद
0: ये बिना
1: कत
0: दवाई के फसल हरे है।
1: कत कत दूरिया में?
0: इला हमन 1.5 से 2 फीट में रखथन पेड़ से पेड़ की दूरी,
1: और खनथा कब?
0: वही जुलाई में लगा था ना, और वही जुलाई के पहली पहली 1 साल के अंदर अंदर इला हमन निकाल
1: पानी गिरे
0: देथन,
1: पहले खन
0: पानी
1: जाता
0: गिरे के पहली।
1: पहले? अच्छा
0: हाँ कई बार तो ऐसे जरूरत पड़ते तो लेवाल आ जाते ना, तब तो आठे नौ

0: महीना में कोड़ के ओला बेचथन,
1: तो पोथी के साइज कतका रहत होई जो लगाथो तत्का समय?
0: वो लगाथन तो साइज में तो एकदम छोटे रही थे भैया, होगा
1: 100 ग्राम, 200 ग्राम या 1 पाव?
0: ये नहीं, पर 125 ग्राम मान लो, वो
1: अच्छा अच्छा
0: 125 ग्राम के
1: तो कतेक बढ़ जाते?
0: ओकर कम से कम वो है 1 किलो से 1.5-2 किलो तक मेड़ के हा। नहीं,
1: ये
0: ये
1: भी कहते
0: अच्छा
1: थे।
0: फायदा के कम खर्चा में
1: हाँ
0: अच्छा उत्पादन और अच्छा फायदा है। मैं
1: में पानी वानी पलोन लगते?
0: पानी तो बारिश में हो जाते भैया, ये कंप्लीट
1: ओखर बाद अलग से
0: कुछ
1: पलोन नहीं
0: कुछ
1: लगे
0: नहीं
1: का?
0: लगे, कुछ करे नहीं लगे। अब हम जैसे घर में भी कर बो थन तो घर वाला में ना बोर है बे, तो पाइप लगे है तो थोड़ा थोड़ा डाल देते वो अलग बात है। हाँ तो घर के साइज है ज्यादा रहते, लेकिन घर वाले साइज है
1: तो कते कन मिल जाते हो आप? मान लीजिए कांदा 2.5 एकड़ में?
0: 2.5 एकड़ के। अब जिमी कांदा के अब अंदाज तो ऐसे नहीं लगायन, लेकिन फिर भी अब उसमें 30-40 हजार के हो जाते।
1: तो एकर देसी किस्म हरे कि लेक लाता वेला?
0: नहीं ये देसी हरे, अब घरे में बोई रही थी में
1: अच्छा अच्छा साल के साल वही
0: साल के
1: लगा
0: साल
1: पोथी
0: वही
1: लगा था।
0: लगथन, छोटे आकार के रख के पोथी लगबो थन।
1: अच्छा, और एकर अलावा कोई कोनो फसल के खेती करता हो?
0: हाँ हल्दी हमन बोथन तो कुछ हिस्सा में जैसे 2.5 एकड़ में बेहल बो देन राहेल ला, 2.5 एकड़ के आधा हिस्सा में कोचैल बो देन, तब कुछ मेर ला बचाथन ते में हल्दी।
1: अच्छा
0: हल्दी ऐसे हरे कि हल्दी कोई जानवर खावा ही नहीं, तो ये है शुद्ध आमदनी हरे में, न ये में दवाई भी डाले नहीं लगे न कुछ करे लगे ला।
1: अच्छा
0: हाँ वो हल्दी के हमन कोई है नहीं, हमार वेरायटी हमन जो घर में बोई रही थन वही ला वहां बोथन।
1: तो ये कौन विधि लगा था वो मेड़ में?
0: एकरो विधि हुई है भैया, गड्ढा खोदथन 1 बीता कम से कम, और वही में अब ये में कोई खाद वाद हमन नहीं डालन, गोबर ला डालथन थोड़ा थोड़ा, गोबर ला डाल के ना खोज देथन हमन। हाँ अब वो खोचे के बाद वो पता चल जाते हमन ला, एक बारिश में पानी गिरते नहीं तो बहुत जल्दी एमें अंकुरित आते।
1: अच्छा
0: हाँ दिखते वो बहुत कम, एकर बीज है नुकसान होते।
1: तो कतेक दिन में तैयार हो जाते हल्दी है?
0: अभी अब बेला साले भर, साल भर में तैयार होते कहा जाए, साल भर के फसल ही हुआ।
1: तो वो पानी गिरते ते बखत बोथो
0: हाँ ये अभी बोबो एला मना जुलाई में बोबो एला। हाँ
1: और वही जुलाई के पहली
0: खानना है वाला,
1: खाना? अच्छा
0: कोड़ाई करना है वाला। हाँ तो एकरो भी अच्छा है आमदनी, मार्केट में 100 रुपये किलो से कम बिकना छे।
1: वर्मा जी खेती किसानी अपन करा तो देख आप मन के बने गुजारा हो जाते मिले?
0: हाँ हो जाते, मोर छोटे परिवार है और छोटे परिवार के हिसाब से जितका कन मोर खेत है ते मोर भर काफी है, और उतका के फसल में मोर परिवार है बहुत अच्छा से चल जाते।
1: खेत में मेड़ में फलदार पौधा वगैरह लगा
0: फलदार
1: हो?
0: पौधा वही काजू किशमिश बादाम माला लगाए रहन, एकर सेती कि बैठे बैठे भर छाए कम से कम पर्यावरण प्रदूषण तो बने रहा है करके। अब किसान मन तो लालच में सब पर्यावरण में के भेल काट रही सब पेड़ ला, तब अब लगा रहे भाई कम से कम बाचेत रहा है, कोनो जावत है तेल बैठे बर तो मिले। आज देख ना ककरो खेत में 1 ठन पेड़ नहीं मिले तोला बैठे बर, तो ओबर काजू किशमिश बादाम ला लगा देवे तो बढ़िया छायादार हरे वहा
1: तो अभी फरक चालू हो गए काजू किशमिश से?
0: फरे के। हाँ फर गए बड़े पेड़ मन। हाँ
1: अच्छा, तो किस साल में फरक चालू हुई?
0: ये है तो वहा लंबा समय लेते 8-10 साल के
1: अच्छा।
0: बादे होते तैयार है। हाँ
1: तो आप मन धान के खेती करत हो, हल्दी खेती करत हो, जिमी कांदा खेती करत हो, और तो और कुछ खाद बनाते हो क्या जैविक विधि ले?
0: जैविक खाद में वही भैया गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है और हरी खाद है, यही मन हाँ जैविक खाद है।
1: तो आप मन बनाते हो इला कि लगाते
0: एला
1: हो?
0: हमन हाँ ले लेथन।
1: अच्छा।
0: हाँ बनाए के समय अभाव के कारण नहीं हो पाए, सबो तैयार नहीं हो पाए तेला ले लेथन। वर्मी कंपोस्ट सरकार द्वारा मिला थी से, तो एकर कुछ अब जानकारी हो गए ना तो कुछ ल घर में भी बना लेथन। हाँ
1: और रोग राई लग गए मान लो फसल में, धान में, फर रोकथाम कैसे करता हो?
0: धान में अगर रोग लग गए तो एक रोकथाम के हमर मन कर तरीका है कीटनाशक है जैविक में, नीम पत्ता है, करंज के पत्ता है, गोमूत्र है, यही मन डालथन कीटनाशक के उपयोग बर।
1: तो लेवाल घलो बने आत होई?
0: हाँ आते ना आ जाते।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो हमर जो युवा संगवारी जोन खेती किसानी करना चाहते या जो हमर किसान संगवारी जोन खेती किसानी करे थे, ओखर मन बार आप मन का संदेश देना चाहो?
0: आज खेती है बहुत महंगा हो गया है भैया, तो मैं यहाँ युवा किसान हो चाहे जो भी किसानी करते खेती बाड़ी तेल अतके सलाह देना चाहूँ कि रेडियो और टीवी के माध्यम से कि खेती किसानी के गोठ ल सुने और वैज्ञानिक मन हमर जो जानकारी देते वो खेती ला अपनावे, जैविक खेती ल करे तो कम लागत में अच्छा उत्पादन पा सकत है खेत किसान मन। हाँ बस यही सलाह दूहूं मैं आज के खेती बाड़ी करैया किसान संगवारी मन ला।
1: तो बलकरण वर्मा जी, आप मन आए हो अपन खेती किसानी के बारे में बड़ सुघर जानकारी हमर संगवारी मन तक पहुँचाए हो, एक बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम। जय जोहार।
2: अभी सुनत रहे सफल किसान बलकरण वर्मा ले खेती किसानी ले जुड़ी उनकर अनुभव और गोट पात करत रहे राजेश यादव।
1: पूजा, खेत खार में अभी बढ़िया धान लहलावत है, हरुना धान मन अब छटके चालू हो गए बाल निकले के, और माई धान मन पोटरावत है, खेत खार बढ़िया सुगर हरियाल लगत है, और निंदई कोड़े बेर है अभी, अब पानी बरसते छे तो निंदे के दिन चलत है, तो यही रकम के बढ़िया सुगर गीत सुनथन जलगावत है पंच राम मिर्झा और कुलवंतीन बाई।

चलो नींद ल जाबो, चलो नींद ल जाबो खेत, भोग बोआई बिया से चलो नींद ल

0: अभी सुनन गीत जेला स्वर दे रहीन पंचराम मिर्झा और कुलवेंतिन बाई। और अब एकरे संग बेरा हो गए है कृषक प्रश्न मंच के, एमा हम बताथन आज के प्रश्न और पांचों हफ्ता पूछे गए प्रश्न ओखर उत्तर। संगी हो लिख लो आज के प्रश्न। आज के प्रश्न है खेती में फॉर्म टू फ्यूल के का अर्थ है। प्रश्न एक गांव फिर दोहरावा था, खेती में फॉर्म टू फ्यूल के का अर्थ है। ये तो रही से आज के प्रश्न और अब बेरा है पांचों हफ्ता पूछे गए प्रश्न ओखर सही उत्तर के। पांचों हफ्ता पूछे गए प्रश्न रही से कृषि के क्षेत्र में आगु पढ़ाई करे बर कौन से प्राथमिक परीक्षा देवाए लगते। एक सही उत्तर है पीएटी के परीक्षा देवाए लगते। और भैया सही जवाब भेजिए, हमारे संगी मन के नाम बता दो।
1: हमर संगवारी मन है लक्षणपुर ले जीवन लाल रजक रामजी साहू धामधा सुखरी कलल है अमित जंगेल सकून आरुषि ओसिका अंजलि जंगेल लोरमी चचेड़ील है कमलकांत मरावी परमिला नेहा पुष्पराज मरावी ऋषभ मरावी गर्रा पार बांधा बाजार ले है मानवेंद्र साहू गंगाराम साहू सुलेचना राकेश साहू नवागढ़ कटेल है नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत सीमा दामनी तेंदु भाटा मगर लोड ले है उमन कुमार निषाद देविका पोषण नूतन सुरेंद्र निषाद लक्षणपुर ले जीवन लाल रजक रामजी साहू। सही जवाब भेजिए, हमारे सबो संगवारी मल हमारे डाले गाड़ा गाड़ा बधाई।

संगवारी हो एक ठन सूचना है। अवैया मंगलवार 29 सितंबर 2026 के प्रसारित होवैया हेलो किसानवाणी के ए दरी के विषय होही शीत ऋतु में फूलों के खेती अपनाएं एवं अपनी आमदनी बढ़ाएं। ये विषय में आपन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होही डॉक्टर भारती साव, सहायक प्राध्यापक पुष्प विज्ञान एवं लैंडस्केपिंग, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए पर हमला फोन कर सका था। हमारे फोन नंबर है 400-3482, दूसरा नंबर है 400-3483 और तीसरा नंबर है 400-3484। रायपुर के स्टडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 29 सितंबर 2026 के बिहनिया 11:30 ले 12 बजे तक करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के ही संध्या 7:30 में करे जाही। हमला आप मन के फोन कॉल के अगोरा रही। सूचना ही मेर सिरावत हमारे सफल किसान के गोट सुंदरेन है और संगवारी मन के प्रश्न उत्तरी भलो सुंदरेन और अब सुन धरती मातारी के बखान करते सुघर गीत जला गावत है जनक यादव और संगवारी मन।

0: अभी सुनिन गीत जिला स्वर देरीन जनक यादव ओखर साथी मन हा। ये रही से किसानवाणी जेकर प्रायोजक रहीन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और भैया एकरे संग हो गए हमर जाए के बेरा, तो जाए के पहली बता देथन काली के कार्यक्रम।
1: काली संध्या चौपाल में गुट पात संग सुनू क्रम आज की सलाह, जेमा जानकारी के विषय हो ही औषधि पौधा सतावरी की खेती। जानकारी दी विशेषज्ञ हिमांशु खांडेकर, शोधकर्ता महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग, संगमा कृषक प्रश्न मंच और गीत संगीत होबे करी। ता आज के कार्यक्रम ले देवा विदा सबो संगवारी मल्ला राजेश यादव
0: और पूजा चंद्रवंशी के
1: राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कृषक बंधुओं का प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में आप सुनेंगे भरत कुमार और साथियों के आवाज में भरत कुमार की लिखी हुई ये हनुमान जी का भजन सुरिंदर कोहली के संगीत निर्देशन में। लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे ये संदेश।
1: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
2: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
4: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में लीजिए सुनिए मयंक उपाध्याय और साथियों की आवाज में ये पारंपरिक रचना, मयंक उपाध्याय के संगीत निर्देशन में।

कार्यक्रम गैर फिल्म गीत में आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, राज सचदेव और साथियों के आवाज में। विशेष दत्त की रचना है, संजय राज गौरी नंदन की संगीत निर्देशन में।

यीशुदास के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत अब संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की युगल आवाजों में समीर की लिखी हुई गीत नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है राजा भैया।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं कुमार शानू और साधना सरगम की आवाजों में समीर की लिखी हुई गीत आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी एसआईआर को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: एनसीसीएफ द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
4: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
5: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
6: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
4: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
8: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
9: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
10: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
11: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्कॉश में जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मत

0: विज्ञप्ति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth level officers will visit homes of electors issued notice.
2: आइए सुनते हैं किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है लाल पत्थर, गीतकार देव कोहली, संगीत शंकर जयकिशन का।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने फिल्म लाल पत्थर का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम आन मिलो सजना।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन। एक मशहूर संगीतकार,

0: एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: कार्यक्रम का अगला गीत साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का और फिल्म का नाम गजल।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है सफर, स्वर किशोर कुमार का, गीत रचना इंदिवर की है और धुन कल्याण जी आनंद जी की है।

किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था सफर। आइए सुनते हैं फिल्म महाराजा का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का फिल्म महाराजा के लिए।
1: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए।

0: मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और शत्रुघ्न सिन्हा को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दोस्त। गीत आनंद बख्शी का था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
3: और अब आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलिया, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक।

बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए, किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जन नाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत

पर इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी। सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है कुछ खास गानों में। यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया बजाना न आया,

0: बनाना ना।
1: 26 सितंबर 1989 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्म।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: उसके पश्चात हम सुनवाएंगे विद्वान श्री चिन्न वेंकट सुब्बैया का डोलू वादन। संगीत परंपरा में जन्मे विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन के पिता श्री जाता कृष्णय्य भागवतर पारंपरिक भजन संप्रदाय के गायक थे। उन्होंने अपना प्रारंभिक संगीत प्रशिक्षण अपने दादा जी के रामस्वामी भागवतर से प्राप्त किया। आपने सेलम श्री के कृष्णमाचारी से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आगे विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन पुदुकोटे संगीत परंपरा के कलेमामणि तिरुची श्रीयार तायुमानवन से गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन 1987 में आकाशवाणी तिरुचिरापल्ली में बी हाई ग्रेड कलाकार के रूप में जुड़े। आज आप टॉप ग्रेड कलाकार के रूप में सेवारत हैं। आप बाएं हाथ से मृदंगम बजाने वाले एक अनोखे और विशिष्ट कलाकार हैं।
0: तो महकेगा चंदन की तरह, वरना सारी रात तुम्हारी आंखों में गुजर जाएगी। वो लम्हात ही कुछ ऐसे थे कि कुछ कह न सके हम, तकदीर के हाथों लुटते रहे, अश्क आंखों से ही बस बहते रहे, हम बुनते रहे ख्वाबों को अक्सर, और एक सिरे पे तन्हा रहे हम, वो दूजा सिरा ढूंढ न पाए हम।
2: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बेबी संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं अलग अलग फिल्मों के गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी की लिखी हुई गीत को संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने।
3: कुछ हमको
4: क्या
3: कुछ तुमको
4: हाँ?

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

श्रोताओं, कार्यक्रम बेबी संगीत में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में अमी खान पी का कलाम, उस्ताद अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन के संगीत निर्देशन में। अब लीजिए सुनिए अदनान सामी की आवाज़ में समीर की लिखी हुई गीत, अदनान सामी के संगीत निर्देशन में।

और लीजिए कार्यक्रम भी संगीत के अंत में सुनते हैं मनहर उदास और हेमलता की आवाज़ों में। बोल हैं निदा फाजली के और संगीतकार हैं उषा खन्ना। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे।

मनहर उदास और हेमलता के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम विविध संगीत अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी, उस्ताद बिलायत हुसैन का राग वागेश्वरी बहार में शास्त्रीय गायन।

उस्ताद विलायत हुसैन खां का राग वागीश्वरी बहार में शास्त्रीय गायन के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी अब संपन्न होता है। FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी देर में आप क्रमशः हिंदी व अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है

0: कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the Commission.
4: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
3: The Election Commission today said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision, SIR.